सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में

0: हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

यदि आपको अपने इष्ट पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आपकी रक्षा, सुरक्षा, परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रभु खुद संभालते हैं।

दुनिया के हर रिश्ते निभाने के लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी सबको खुश नहीं रख पाते। एक परमात्मा ही है जिन्हें सच्चे मन से यदि एक क्षण के लिए भी याद किया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं और हमें इस भवसागर से पार लगा देते हैं।

वंदना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास, संध्या मुखर्जी, लक्ष्मी राठौर, दीपा मोहन और अनुराधा पौडवाल की गाई भक्ति रचनाएं। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से प्रस्तुत कार्यक्रम चिंतन बिंदु। इसमें आज आप सुनेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार। आलेख और वाचन है डॉक्टर लीली खन्ना का।
1: गद्य मानव हृदय की भावनाओं की नहीं, मानव मस्तिष्क के विचारों की अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसी प्रतिभा का नाम है जिन्होंने उपन्यास, निबंध, आलोचना और इतिहास लेखन में अभूतपूर्व मौलिकता का परिचय दिया है। आपने रूढ़ मान्यताओं को नवीन दृष्टि से परखा। परंपरा और रूढ़ी के बीच में उन्होंने एक स्पष्ट अंतर अनुभव किया। कई मान्यताएं खंडित हुईं।

0: मान्यताएं खंडित हुईं, कई नई बनी। आपकी मान्यता थी कि परंपरा तब तक जीवित है जब तक समाज के लिए उसकी उपादेयता है। समाज के लिए जब वह भार स्वरूप हो जाती है तब फिर वह परंपरा नहीं रूढ़ी बन जाती है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र उनके साहित्य के पटल पर अंकित है। आपने स्पष्ट लिखा है, साधना अकेले की साधना ही नहीं हो सकती। समस्त जगत के सुख दुख और हास रोदन आपको प्रभावित करेंगे ही। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित ना होता होगा। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरों का अपकार कर रहा है वह भी बुद्धिहीन है। सुख दुख तो मन के विकल्प हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमेशा ही व्यक्ति मनुष्य की अपेक्षा समष्टि मनुष्य को महत्व दिया। आपके साहित्य का लक्ष्य भी मनुष्य ही है। ऐसा मनुष्य जिसके हित समाज के हित से जुड़े हैं, जिसकी पीड़ाएं समाज की पीड़ाएं हैं। प्रकृति से जीवन का पाठ ग्रहण करने की दिशा को द्विवेदी जी ने इस प्रकार बताया है कि केवल अपने लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए भी जीना, आंधियों और लू के बीच पलकर अपनी वीरता का परिचय देना है और सूखी शिलाओं से भी रस प्राप्त करना है और छाया प्रदान करना है, यही लोक सेवा है। सभी परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना यही समत योग है। वही वीर है, वही परोपकारी है, वही योगी है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र द्विवेदी के साहित्य में अंकित है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार। आलेख और वाचन था डॉक्टर लीली खन्ना का।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर है सुरेश वाडेकर का, संगीत है सतीश भाटिया का।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे।

आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था सुरेश वाडेकर का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। विषय होगा धान की प्रजातियां। पुराने फिल्मी गाने आपको सुनवाएंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में 7:00।

सुबह 7 बजे 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला यात्रा ब्रज 84 कोस की। इसके 20वें भाग में आज आप जानेंगे रत्न सिंहासन ग्वाल पोखरा के बारे में। आलेख प्रस्तुति सहयोग रश्मि शर्मा को। हवेली संगीत भी सुनाएंगे इसी कार्यक्रम में आपको। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। 9 बजे सुनिएगा बातचीत जिसका विषय होगा परिवार और समाज का संबल हमारी बेटियां। वार्ता करूंगे रमेश कुमार सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे ओपी।

सिंह। कार्यक्रम आबो हवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा शहरों में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। आलेख और वाचन होगा नीलिमा शर्मा का। सुबह 9:30 पर विशेष बातचीत का विषय होगा सामान्य बीमा की जनोपयोगी योजनाएं। वार्ताकार होंगे श्री शरद श्रीवास्तव, भेंट करेंगे ओपी सिंह।

प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय सुबह 10 बजे, 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। दिन 11 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की। गाने सुहाने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम दिन 11:30 पर। मध्याह्न 12 बजे सुनिएगा गीत बात और SMS। दोपहर 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे जल संरक्षण के प्रभावी तरीके, महिला सशक्तिकरण और साथ ही सुनिएगा आरोग्य वार्ता, सर्वाइकल पेन कारण लक्षण और बचाव। वार्ता कर होंगे देवदत्त शर्मा, भेंट करेंगी उषा पांडे। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत सुनाया जाएगा अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में बात होगी नीलम संजीव रेड्डी जयंती पर और विश्व खेल मेला दिवस तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि इन विषयों पर। साथ ही सुनिएगा विशेष वार्ता भारत की जनगणना। वार्ताकार होंगे राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा और इनसे बातचीत करेंगे OP सिंह।

शाम 6:15 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, ये कार्यक्रम आपको सुनाया जाएगा, जिसमें आज का विषय होगा खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अमर सिंह। शाम 6:15 क्षमा कीजिएगा 6:45 पर संध्या वंदन कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। ब्रज साहित्य कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:05 पर, इसमें आप सुनेंगे भक्त कथा मणिदास माली, कथाकार होंगे रमेश चंद्र। शाम सुहानी ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:31 पर। रात 8:00 आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम। रात 9:15 पर सुहाने तराने, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। रात 10:00 राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, इसमें आज आपको सुनाएंगे वीजी जोग का वायलिन वादन, राग होगा जय जयवंती। साथ ही सुनिएगा मोहित कुमार का गिटार वादन, राग पहाड़ी।

0: ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें कार्यक्रम। विषय है धान की प्रजातियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, आज हम खरीफ की प्रमुख फसल धान के बारे में बात करेंगे।

0: चूँकि अब धान की रोपाई का समय नज़दीक है और किसान भाई मई के अंत से लेकर के जून के प्रथम सप्ताह तक धान की रोपाई शुरू कर देते हैं, धान की रोपाई करने से पूर्व प्रजातियों के चयन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। धान की कई तरह की प्रजातियां हैं। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में गोविंद एक प्रजाति है जो 105 से 110 दिन पकने में लेती है, 40 से 45 क्विंटल तक इससे उपज मिल जाती है और इसका चावल महीन लंबा सफ़ेद होता है। दूसरी शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में अश्वनी है, 96 से 110 दिन लेती है, इसका चावल छोटा मोटा मध्यम आकार का होता है। साकेत चार जो किस्में 110 से 115 दिन लेती है, 40 से 42 क्विंटल उपज मिल जाती है इससे, इसका जो चावल होता है महीन लंबा सफ़ेद होता है। पंत बारह जो किस्म है 115 से 122 दिन लेती है, 50 से 60 क्विंटल तक इससे उपज मिलती है और इसका चावल महीन लंबा सफ़ेद होता है। नरेंद्र 80 जो किस्म है 115 से 120 दिन लेती है, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ली जा सकती है इससे। अब बात करते हैं मध्य देर से पकने वाली प्रजातियाँ जो कि 125 से 135 दिन का समय ये पकने में लेती हैं, जिसमें एक है नरेंद्र 359 जो कि 130 से 135 दिन पकने में लेती है, 60 से 65 क्विंटल तक उपज इससे मिलती है, इसका चावल लंबा मोटा सफ़ेद होता है। पंत 10 जो किस्म है 125 से 130 दिन में पक करके तैयार होती है, 55 से 60 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है इससे, महीन लंबा सफ़ेद इसका चावल होता है। सरजू 52 जो किस्म है पुरानी किस्म है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, 130 से 135 दिन में तैयार होती है, 50 से 60 क्विंटल तक इससे उपज मिलती है, लंबा मध्यम आकार का इसका चावल होता है। और PNR 381 जो किस्म है वो 120 से 130 दिन में तैयार होती है, 50 से 60 क्विंटल तक उपज मिल जाती है इससे। क्रांति जो किस्म है 130 से 135 दिन में 50 से 60 क्विंटल इससे उपज मिलती है। और पंत चार जो किस्म है 125 से 130 दिन में और 50 से 55 दिन में ये तैयार हो जाती है। तो मध्य देर से पकने वाली प्रजातियों की जो नर्सरी डालेंगे और इसकी जो रोपाई करेंगे, रोपाई इसकी जून के तीसरे सप्ताह से लेकर के जुलाई के मध्य तक की जाती है और शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं देर से पकने वाली प्रजातियां जो कि बहुत अधिक समय लेती हैं तैयार होने में, करीब 135 से 155 दिन में ये तैयार हो पाती हैं, जिसमें एक किस्म है T9 135 से 150 दिन ये पकने में लेती है, लेकिन इससे उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही मिल पाती है। और एक किस्म है PR 113, और ये जो PR 113 किस्म है 135 से 140 दिन में तैयार होती है, 30 से 35 क्विंटल तक उपज मिलती है। टाइप 23 जो किस्म है 140 से 150 दिन में तैयार होती है, 30 से 35 क्विंटल तक ही उपज मिल पाती है। क्रॉस 116 जो किस्म है 150 से 155 दिन ले लेती है तैयार होने में, 35 से 40 क्विंटल तक इससे उपज ले सकते हैं। मासूरी जो किस्म है 150 से 155 दिन में तैयार होती है और 35 से 40 क्विंटल तक इससे उपज ली जा सकती है। तो
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो नगरे भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागम अगृह्णात्। शिखर सम्मेलने युवराजः हकोन, नॉर्वे देशस्य प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे इत्येतावपि भागम अगृह्णताम्। शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम् इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। TEPA इत्यस्य अन्तर्गतं 100 बिलियन यूएस डॉलर इत्यस्य निवेशलक्ष्यं साधयितुम् उभयपक्षयोः हितधारकाः प्रयतन्ते इति सः अधोरेखितवान्। परिणामतः भारते 10 लक्षाः उद्योगाः कल्पिताः भवेयुः इत्यपि मन्यते। सः भारतस्य प्रबल

सुजाता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना तलत महमूद की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी एसटी परमन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं देवदास फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने, बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत है एसटी परमन का।

नागिन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, बोल थे राजेंद्र कृष्ण के और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आर पार फिल्म से, गाया है शमशाद बेगम ने, शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत रचना है ओपी नैयर की।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं आन फिल्म का गाया गाना है शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और श्याम का। शकील बदरनी के बोल हैं, नौशाद की धुन है।

आन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और श्याम की आवाज़ों में। इसके साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल

0: नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विकास का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है।

0: मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है।

0: वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है किसान भाइयों, आज

किसान भाइयों, आज मंगलवार दिनांक 19/5/2026 को शाम 6:15 से 6:30, क्षमा कीजिएगा, 6:15 से 30 मिनट की अवधि के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। किसान भाइयों, खरीफ फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे गर्मियों में जुताई, उन्नत किस्मों के बीज, खाद की मात्रा एवं मिट्टी पानी की जांच आदि विषयों पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर अमर सिंह से। कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:15 से 6:45 के बीच। सूचना समाप्त हुई।

यह कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं यात्रा ब्रज 84 कोस की श्रृंखला, या मैं आज आप सुनेंगे 20वीं कड़ी, और जहाँ में आप जानेंगे रत्न सिंहासन ग्वाल पोखरा के बारे में। आलेख प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को।

0: गंगन से मधुर संगीत चल रहे हो। श्री राधा पास ही रत्न सिंहासन पे बैठ गईं। वही समय कुबेर को अनुचर शंखचूड भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझ के परम सुंदरी इन गोप ललनान को हरण करवे की चेष्टा करन लगो। गोपी बलराम और कृष्ण को पुकारती भई आर्तनाद करन लगी। कृष्ण ने बड़े वेग सो दौड़ के शंखचूड को वध कीनो और बिनकी मस्तक की मणि निकाल के श्री बलराम जी को प्रदान कीनी। बलराम जी ने वह मणि को श्री राधा को दे दियो। यह वही स्थान है जहाँ श्री राधा जी बैठी हैं, जाकू आज हम रत्न सिंहासन के नाम से जाने हैं।
1: यह गिरिराज जी की तलहटी है। यहाँ गिरिराज जी अमुक अमुक स्थान पर दिखते हैं, लेकिन यहाँ ग्वाल बालों ने भगवान को रत्नों के सिंहासन पर विराजमान किया है। हे लाला, तू पहले यहाँ पर बैठ, फिर उसके बाद में हम पानी पियेंगे। तो यहाँ गिरिराज जी के अंदर में आज भी ऐसी शिला है कि जहाँ पर भगवान विराजे हैं। आइए अब आपको रतन कुंड के पहले दर्शन कराते हैं। रतन सिंहासन का रतन कुंड है। यहाँ की रमणीकता देखिए, कितना शांत वातावरण है। गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा के अंदर यह स्थान बिल्कुल एकदम कोने में आकर के आता है। यहीं पर भगवान को रत्नों के सिंहासन पर विराजमान किया है। ही रतन सिंहासन है जहां पर प्रभु आकर के विराजमान हुए हैं। और जब प्रभु विराजमान हुए हैं तो ग्वाल वालों ने कहा है, लाला अब तो बहुत जोर की प्यास लगी है, गाय भी रबा रही हैं। तो भगवान ने अपनी बंसी के द्वारा जल का प्रागट्य किया है। यह चारों तरफ देखिए कितना रमणीक स्थान है। यहाँ पर आने के बाद में मन को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सब प्राचीन वृक्ष हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का नवीन वृक्ष का अभी उद्गम नहीं हुआ है। पर परिक्रमा दरमियान श्री ठाकुर जी ने राधिका जी को रत्नों का उपहार दिया है, इसलिए इसको रतन सिंहासन भी बोलते हैं।
0: श्याम कुटीव है। यहाँ श्री श्याम सुंदर ने श्याम रंग की कस्तूरी को अंगन पे अनुलेपन करके श्याम रंग के अलंकार धारण करके श्यामई रंग के वस्त्र धारण करके श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश कीनो तो गोपियों बिन को पहचान न सकी। तत्पश्चात पहचानने पे बिन की बड़ी मनोहारी लीला संपन्न भई। यही के पास में बाजनी शिलाऊ है, जाकु बजायवे से मधुर नाद उत्पन्न हुए है। और अब हम आए पहुँचे हैं ग्वाल पोखरा। श्याम कुटी के पास ही लतांत परिवेष्टित मनोहर लीला स्थली है। गोचारण के समय श्री कृष्ण मध्यान्ह काल में यहाँ विश्राम कीनो करते। बाल सखान के द्वारा कृष्ण की प्रेममयी सख्य रस की सेवा तथा ग्वाल बालन की छीना झपटी आदि मनोहर लीलान के कारण ग्वाल पोखरा अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ को एक प्रसंग यह प्रकार सो है, श्री कृष्ण पुरोहित बालक को वेश धारण करके मधुमंगल के संग सूर्य कुंड में श्री राधा को सूर्य पूजन संपन्न करवाई के यहाँ सखान के संग बैठ गए। मधुमंगल के पास दक्षिण से मिले हुए मनोहर लड्डू और एक स्वर्ण मुद्रिका हती। मधुमंगल ने अपने वस्त्रन में उन्हें विशेष सावधानी से बांध के रखो हो। कौतुकी बलराम ने मधुमंगल से पूछी, भैया मधुमंगल तुम्हारी पोटली में कहाँ है? मधुमंगल ने

जय श्री कृष्णा। यात्रा ब्रज चौरासी कोस के 19वें अंक में हमने कीनी, डील की और अन्य दर्शनीय स्थलन की यात्रा, और आज के 20वें अंक में हमारी यात्रा पहुंच रही है रत्न सिंहासन की ओर।

यह कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है। शिव चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण एवं बलराम गोप रमणीन के संग विचित्र रंगन की पिचकारी परस्पर होरी खेल रहे हैं। मृदंग मंजीरा वीणा वाद्य यंत्र के संग बासंती आदि

0: झिझकते भय उत्तर दीनो कछु न आए। इतने में बलदेव जी ने सखान की माओ इशारों कर दियो। उनमें ते कछु सखान ने मधुमंगल के दोनों हाथों को पकड़ लीनो और एक सखा ने अपनी हथेली ते बिन के नेत्र बंद कर दीने। कछु सुखान ने बलपूर्वक मधुमंगल के हाथन ते वह पोटली छीन लीनी। फिर ठहाके लगाते भय मधुमंगल के सामने लड्डून को परस्पर बांट के खान लगे। छीना झपटी में मधुमंगल को वस्त्रों खुल गयो। वह बड़ी जोर से बिगड़ो और हाथ में यज्ञोपवीत धारण करके बलदाम तथा श्रीदाम आदि सखान को शाप देने के काजे प्रस्तुत है गयो। तब कृष्ण ने काऊ प्रकार से वाकु शांत कीनो। मधुमंगल भी हस्तो भयो उन सखान से लड्डून के कछु अवशिष्ट चूर्ण को मांगन लगो। यह ग्वाल पोखरा इन लीला स्मृतिन को सजोए भये आजो विद्यमान है।
1: आइए अब आपको गिरिराज जी का वह स्थान दिखाते हैं कि जो बिल्कुल एकदम विलुप्त होने के कगार पर है। यह भगवान का धड़ बोला जाता है। यहीं पर भगवान ने गायों को लेकर के ग्वाल वालों के साथ में गोचारण किया है। यही वह बनी है, यही वह गिरिराज जी की तढ़ेटी है जहां पर भगवान ने गायों के साथ में यहां विचरण किया है। आज भी यहां थोड़ा थोड़ा गिरिराज जी का अवशेष दिखता है। यह राधा कुंड की परिक्रमा के अंदर आता है। जब राधा कुंड से कुसुम सरोवर होकर के मानसी गंगा के लिए आते हैं तो दाहिने हाथ पर यह रतन सिंहासन और ग्वाल पोखरा और रतन कुंड आता है। यहाँ इतनी रमणीकता है, ठंड के सीजन में यहाँ इतनी रमणीकता आ जाती है तो मन को एक तरह का ऐसा सुकून मिलता है कि जैसे गिरिराज जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी के चरण एवं गायों की खुरी के दर्शन कराते हैं जो गिरिराज जी की शिला के ऊपर मौजूद है। आइए, यह भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, पूरा चरण है भगवान का। ये श्री राधिका जी के चरण हैं एवं यह सुरभि गाय की खुरी है। यहीं पर भगवान गोचारण करने के लिए आते थे। यही वह प्राचीन स्थान है जब गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए प्रभु यहाँ पधारे हैं तो गायों को यहाँ गिर कंदरा में छोड़ दिया है। जिस समय प्रभु लीला करते थे उस समय गिरिराज जी का जो स्वरूप है वह भी मोम जैसा हो जाता था कि जिससे प्रभु के चरणार बिंदों में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये उसी समय के 5,500 वर्ष प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के चरण के दर्शन है। श्री राधिका जी के चरण विग्रह है। यह सुरभि गाय का खुरी का चिन्ह है। पुनीक स्थल है। यहाँ पर ऐसा आभास होता है कि गिरिराज जी हमारे पास में ही है। यह रतन कुंड और रतन सिंहासन के पास में ही आता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक ऐसी शांति की अनुभूति होगी कि जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है। यहीं भगवान साक्षात अपने भक्तों को दृढ़ता हो तो दर्शन जरूर कराते हैं। ग्वाल पोखरा का मार्ग है। जब गायें प्यासी होती थीं तो भगवान ने यहाँ पर अपनी बंसी के द्वारा गड्ढा करके जल प्रकट किया है और ग्वालों का नाम दे करके इसको ग्वाल पोखरा बोला जाता है। यहीं पर भगवान ने गायों की और ग्वाल वालों की प्यास को बुझाया है। आइए अब आपको लेके चलते हैं ग्वाल पोखरा। जब गायें गिर कंदरा में

0: चरती थीं, उस समय यहाँ ग्वाल बालों को लेकर के भगवान स्वयं विराजमान होते थे और ग्वाल बालों को यहीं पर प्यास बुझाई है। बंसी के द्वारा भगवान ने गड्ढा करके जल को प्रकट किया है और ग्वाल वालों को यहाँ पर जो तृषा है उस तृषा को यहाँ भगवान ने जल पिला करके शांत किया है। आज भी गिरिराज जी की राधा कुंड की जो परिक्रमा बोली जाती है, छोटी परिक्रमा, उस छोटी परिक्रमा के अंदर में यह रतन सिंहासन, रतन कुंड और ग्वाल पोखरा, आज इसी स्थान पर बैठ करके भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में छाक को अरोगा था, जिसको का आज की जनरेशन नाश्ता कहती है। यही भगवान ने सभी ग्वाल वालों को साथ इकट्ठा करके और यहाँ पर बैठ करके और भगवान छाक आरोगते थे। जब छाक आरोग लेते थे उसके बाद में यही अपने अपने लोटा बर्तनों में से जल भर के और सब यहाँ पर बैठ करके जल पीते थे। इसको यहाँ ग्वाल पोखरा कहते हैं। देखिए यहाँ कितना रमणीक वन है, ग्वाल पोखरा श्री गिरिराज जी के अंदर कितना रमणीक स्थान है, कितना शांत वातावरण है। यहाँ पर प्रभु का स्मरण करने से, जो मन से स्मरण किया जाए, तो आज भी यहाँ प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तुरंत प्रकट होते हैं। कितना प्राचीन स्थान है, इतने भी प्राचीन वृक्ष हैं, कोई भी वृक्ष तना हुआ नहीं है, सभी वृक्ष ठाकुर जी को नमन कर रहे हैं। देखिए यहाँ सभी वृक्ष जितने भी प्राचीन हैं, सभी वृक्ष यहाँ ठाकुर जी को नमन करते हुए दिख रहे हैं। आज भी यहाँ ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए विराजमान हैं।
1: यही से कछु दूरी पे है किलोल कुंड, अपने नाम के अनुरूप भाई श्री राधा कृष्ण की जल केली तथा कृष्ण के सखायन को यह जल क्रीड़ा स्थल है। और अब यात्रा आ पहुंची है कुसुम सरोवर।

यह परिक्रमा मार्ग में स्थित है। यहाँ बेला, चमेली, जूही, यूथी, मल्लिका, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्पन की लतान और तरुवन से परिपूर्ण कुसुम वन हो। यहाँ श्री कृष्ण से मिलने के बहाने श्री राधिका सहेलियों के संग पुष्प चयन करने आयो करती तथा उनको रसिक कृष्ण के संग रसपूर्ण केली कले और नोक झोंक वो करती। भरतपुर के महाराज जवाहर सिंह ने सन 1776 ईस्वी में दिल्ली को खजाना लूट के व धन से कुसुम सरोवर में सोपानन सहित पक्के घाट बनवाए दिए। सरोवर के पश्चात में राजा सूरजमल की छत्री तथा बाकी दोनों ओर दोनों रानी की छत्री हैं। पास ही में दाऊजी को मंदिरों है। वृंदावन की अधिशास्त्री देवी वृंदा देवी के मुख से गोपी भाव की महिमा सुन के श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी उज्जवल सेवा प्राप्त करवे के काजे श्री नारद जी के हृदय में तीव्र लालसा उत्पन्न भई। बिनने लोक पिता में ब्रह्मा जी सो गोपाल मंत्र प्राप्त करके या स्थान पे गोपीन के आनुगत्य में होने वाले राग मार्ग सो साधन भजन करनो आरंभ कर दिया।

नो। बहुत युगन तक आराधना के पश्चात योग माया ने नारद जी को कुसुम सरोवर में स्नान करवायो, जासो बिनकु गोपी देह प्राप्त भई। तत्पश्चात बिन ने राग मार्ग की एकादश भाव प्रदान कर युगल सेवा में अधिकार प्रदान कीनो। कुसुम सरोवर के लगभग सामने अवस्थित यह नारद कुंड और नारद जी को मंदिर दर्शनीय है। और अब यात्रा आ पहुंची है पाली।

ऐसा कहमे है कि कबहू यमुना जी यहाँ बहमे ही मिट्टी खोदवे पे अबहू यमुना जी की रेत निकसे है। कृष्ण ने सखान के संग यहाँ गोचारण कीनो तथा सखीन के संग नाना प्रकार के लीला विलास कीने और अब हम पहुँच गए हैं सुरभि कुंड। राघव पंडित की गुफा से आगे चलवे पे परिक्रमा मार्ग में दाहिनी ओर निर्मल और मीठे जल सो भरो भयो सुरभि कुंड स्थल है। गोविंद कुंड पे इंद्र की प्रार्थना से सुरभि गाय ने अपने स्तन के दूध से श्री गोविंद जी को अभिषेक कीनो। तत्पश्चात श्री कृष्ण की गोचारण लीला तथा विशेषतः श्री राधा कृष्ण युगल की निभृत निकुंज लीला को दर्शन करवे के लोभ से सुरभि गाय श्री कृष्ण की ब्रज लीला तथा ब्रज में ही निवास करने लगी। श्री वज्रनाम ने उनकी स्मृति के काजय सुरभि कुंड की स्थापना कीनी। यहाँ स्नान और आचमन करने से अपराध एवं अनर्थ दूर है जामे हैं तथा ब्रज प्रेम प्राप्त हुए हैं। एक बार सुरभि कुंड पे श्री बल्लवाचार्य जी पधारे और रात्रि में यही निवास करने को विचार कर रहे हैं। पुरोहित जी ने कही, महाराज यह स्थान ठीक नहीं है, यहाँ एक प्रेत को निवास है। यह प्रेत यह निवास करवे वाले व्यक्ति की प्राणन को हरण कर लिए है। यह सुनके आचार्य प्रभु चुप ही रहे। भोर में एक भक्त आपके वस्त्र प्रक्षालन के काजे जैसे ही कुंड पे गयो वहां प्रेत देखो। वह चिल्लायो, महाप्रभु जी ने वाके पूर्व जन को वृतांत कहो। यह ब्राह्मण ब्रज में ऐश्वर्य सुई रहतो और बाने अपने द्वारा दान की भाई भूमि को पुनः वापस लौटा लियो या दुष्ट कृत्य के कारण यह ब्राह्मण प्रेत की देह को प्राप्त भयो। या के पश्चात वह ब्राह्मण महाप्रभु जी की कृपा से मुक्त है गयो। यहाँ स्नान करने से सबकी मनोकामना पूर्ण है जाए हैं।

0: तो श्रोताओ आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हमारी यात्रा पहुंचेगी ब्रज के अन्य दर्शनीय स्थलों पे, जैसे कि जयश्री, खोह आदि, बद्री श्री केदारनाथ धाम को। आज के अंक को यहीं विराम देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
1: अभय आपने सुनी यात्रा ब्रज 84 कोस की। यम आपने सुनो रत्न सिंहासन ग्वाल पोखरा।

राग गुड़करी पर आधारित सूरदास को युपद अभी आपने सुनो संवेद स्वरन में। यह के साथ ही संपन्न हुए है आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल

0: ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के

0: लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
4: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट

0: में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: ये बसंती फिल्म का ये गीत। आवाजें थी एआर रहमान और नरेश अय्यर की, शब्द रचना थी प्रसून जोशी की, संगीत था एआर रहमान का।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अग्निपथ फिल्म से, आवाज है सोनू निगम की। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, धुन बनाई है अजय अतुल ने।

रावण फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना नंदिनी शिखर की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राजनीत फिल्म से, गाया है आदेश श्रीवास्तव ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है किसान भाइयों, इस मंगलवार यानी आज 19/5/2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में इस बार का विषय खरीफ फसलों के आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। किसान भाइयों, खरीफ फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे गर्मियों में जुताई, उन्नत किस्मों के बीज, खाद की मात्रा एवं मिट्टी पानी की जांच आदि विषयों पर जानकारी हेतु आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर अमर सिंह से। कार्यक्रम का समय होगा आज शाम 6:15 से 6:45 के मध्य। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं बातचीत। विषय है परिवार और समाज का संबल हमारी बेटियां। वार्ताकार हैं रमेश कुमार सक्सेना, इनसे बातचीत कर रहे हैं OP सिंह।

0: भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नारी का स्थान हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय समय पर स्त्री वर्ग ने, नारी जाति ने अपने वजूद की रक्षा के लिए, अपने स्थान की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ किया, वो सब कुछ पैदा किया जिससे उसका स्थान सुरक्षित हो पाया। एक समय था, ये भी कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता निवास करते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन समय की विडंबना कहिए, उतार चढ़ाव कहिए, विचारों का उतल फुतल कहिए, आज समाज में जब हम देखते हैं तो नारी को वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार है, जिसकी वो लायक है। तो समाज में बेटियाँ, जैसा आज सरकार भी एक नारा दे रही है कि इनको बचाइए और इनको पढ़ाइए, तो संवेदनशीलता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो परिवारों के बीच की जो धुरी है, जो संबल
1: बिल्कुल
0: है, वो हमारी
1: जी।

0: बेटियां हो सकती हैं और है भी। क्या कुछ इस संदर्भ में हमारा वर्ग सोचता है, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। हमारे साथ हैं श्री रमेश कुमार सक्सेना जी, जो थोड़ा सा साहित्य से सरोकार रखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, पढ़ते हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं यही चाहूँगा कि आप अपने काव्य के माध्यम से जो बेटियों का स्थान दो परिवारों के बीच में एक धुरी हो सके, क्योंकि हम उसको पालते हैं, पोसते हैं। एक समय ऐसा भी आया कि उसको हम पराया धन भी मानते थे, लेकिन जब तक वो पुल तैयार नहीं होता, जब तक वो ब्रिज तैयार नहीं होता दो परिवारों के
1: जी
0: बीच में, तब तक एक संवाद भी नहीं होता है। तो दो परिवारों के बीच की जो धुरी है, एक बालिका है, उसको आप अपने शब्दों में किस प्रकार रखेंगे?
1: पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी तो ना कल कमज़ोर थी, ना
0: जी
1: आज कमज़ोर है, और ना कभी कमज़ोर होगी। जब तक सृष्टि है तब तक उसका वर्चस्व बना रहेगा। हमारी जो मनोदशा, जो दृष्टि है, उसने थोड़ा उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने पर मजबूर किया है, जबकि वो कमज़ोर है नहीं। जब वो जन्म लेती है तो एक पिता के परिवार का हिस्सा होती संभालती है।
0: जी
1: जब बड़ी होती है, जब वो जाती है शादी होने के पश्चात, तो वहाँ जो संस्कार लेके जाती है, एक नई चीज़ होती है वहाँ, तो वहाँ संभालती है। तो दो कुल की जो लाज है, जो परिवार की जो जोड़ने की जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो बेटी है। और यही कर सकती है, और कोई कर भी नहीं सकता है। ये बहुत सशक्त है, ये कमज़ोर
0: जी
1: नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो मैं
0: बिल्कुल
1: चाहूँगा कि दो शब्दों के माध्यम से, एक
0: बिल्कुल
1: छोटी पंक्ति के
0: स्वागत है
1: माध्यम से
0: आपका,
1: आपको
0: स्वागत है जी।
1: कहता हूँ। दो कुल की देखो लाज निभाती हैं बेटियाँ,
0: क्या बात।
1: दो कुल की देखो लाज निभाती हैं बेटियाँ, कर सकती हैं बस यही बतलाती हैं बेटियाँ। सहती हैं सब कुछ, कुछ भी कहती नहीं। सहती हैं सब कुछ, कुछ भी कहती नहीं, सच कहूँ तो घर को स्वर्ग बनाती हैं बेटियाँ।
0: क्या बात।
1: है इनके बिना सूना सूना घर और संसार, है इनके बिना सूना सूना घर और संसार, कदम कदम पर ये एहसास कराती हैं बेटियाँ। दो कुल की देखो लाज निभाती हैं
0: निभाते
1: बेटियाँ।
0: बेटियां।
1: होता नहीं है हर किसी के भाग्य में ऐसा पुण्यकार, होता नहीं है हर किसी के भाग्य में ऐसा पुण्य कार्य, कन्यादान जैसे महादान का सौभाग्य दिलाती हैं बेटियां। दो कुल की देखो लाज निभाती हैं
0: क्या बात
1: बेटियां,
0: है।
1: कर सकती हैं बस यही बतलाती हैं बेटियां। करते हैं हाथ जोड़कर कुमार इनको प्रणाम, करते हैं हाथ जोड़कर कुमार इनको प्रणाम, है वजूद हमारा इन्हीं से ये एहसास कराती हैं बेटियां।
0: क्या बात
1: दो
0: है।
1: कुल की देखो लाज निभाती हैं बेटियां।
0: तो सक्सेना जी, जो हमारा वजूद है, जो
1: जी
0: हमको मान सम्मान दिलाती है, जो हमको सौभाग्य दिलाती है,
1: जी
0: ऐसा क्या समाज में, ऐसी क्या विडंबना रही, कैसी परिस्थितियां रही कि आज हम उनको बोझ समझने लगे? आने से पहले इस संसार में उनको हम रोक देना चाहते हैं, उनके हक को छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि जन्म लेना हर आत्मा का और
1: जी
0: उसका अधिकार
1: जी
0: है, लेकिन हम अपनी स्वार्थवश कहें, अपनी मानसिकता का शिकार कहें कि हम उसको आने से पहले ही इस दुनिया से रोक देना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा, उतार चढ़ाव, जिसकी वजह से ऐसी
1: जी
0: परिस्थितियां पैदा हुई।
1: उसके लिए भी सबसे बड़ा जो बड़ा एक जो रीजन है, जो कारण है, तो वो हमारा एक स्वार्थ है सर।
0: जी
1: हमारा क्या स्वार्थ होता है कि बेटियों को सबसे पहले हमने एक थोड़ा सा लेबल लगाया कि जो पराया धन है, जब जो पराया धन है तो उससे मुंह क्या करना, उस पर पैसा क्या खर्च करना। जैसे कि बेटे को हम लेके चलते हैं कि बेटा पढ़ेगा, रोशन करेगा, घर का नाम रोशन करेगा,
0: मतलब जिससे हमारा संतति चलेगी, परिवार
1: जी जी
0: चलेगी,
1: जी जी
0: बच्ची
1: जी जी
0: उसमें।
1: तो बिटिया के पीछे सबसे बड़े रीजन एक बहुत बड़ा है कि पैसे पढ़ाई पर खर्च करना, वो पढ़ाई चली जाएगी। आज उसको हम पढ़ाते लिखाते, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? जो मिलेगा तो ससुराल वालों को मिलेगा।
0: जी। लेकिन वो अस्तित्व तो है, एक माँ बाप का, एक परिवार का अस्तित्व है, तो उसको हम ऐसे कैसे नकार सकते हैं? एक साहित्यकार के तौर पे आप कैसे उस बात को?
1: हाँ, मैं पहले इसको बेटियों के सम्मान के तौर पे छोटा
0: जी
1: सा कहना चाहता हूँ दो शब्द,
0: जी
1: कि माँ का आंचल पिता का प्यार तो है।
0: क्या बात है।
1: संस्कार माँ देती है और
0: हाँ
1: तो पिता प्यार देता है, कि माँ का आंचल पिता का प्यार तो है, मेरी बेटी भी तो है और मेरा बेटा भी तो है।
0: क्या बात।
1: जब तू दुनिया में आई थी तो सारी कायनात मुस्कुराई थी, मतलब कोई दुखी नहीं था। जब तू दुनिया में आई थी तो सारी कायनात मुस्कुराई थी, दो किनारों के बीच बहती गंगा भी तो है, जमुना भी तो है। माँ का आंचल पिता का प्यार तो है, मेरी बेटी भी तो है और मेरा बेटा भी तो है। अब ना समझे कोई अबला तुझे इस जमाने में, अब ना समझे कोई अबला तुझे ऐसे जमाने

0: संहार करने को काली भी तू है, दुर्गा भी तू है, माँ का आंचल पिता का प्यार तू है, मेरी बेटी भी तू है, मेरा बेटा भी तू है। बहा दे प्रेम की गंगा, बहा दे प्रेम की गंगा तो गंगा भी छोटी हो जाए। इसके आगे गंगा भी छोटी हो जाएगी, बहा दे प्रेम की गंगा तो गंगा भी छोटी हो जाए, भगवान राम और कृष्ण को तारने वाली माँ यशोदा भी तू है, माँ कौशल्या भी तू है, माँ का आंचल पिता का प्यार तू है, मेरी बेटी भी तू है और मेरा बेटा भी तू है। जो दो लाइन उनके लिए समर्पित बेटी का क्या चीज है वो।
1: जी जी जी जी जी जी। लेकिन अब देखते हैं कि जब से शिक्षा का प्रसार हुआ है, समाज में परिस्थितियां बदली हैं, कहीं ना कहीं ये जो बेटा बेटी का जो फर्क था
0: जी,
1: अब वो कहीं कम तो हुआ है। देखने में ऐसा आ रहा है कि आज जो सजग माँ बाप है वो बेटी को भी वही मान सम्मान दे रहे हैं, वो स्थान दे रहे हैं, वो उसका जो जायज हक है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अब बेटों की इतनी चाहत नहीं रही, दो बेटियां हैं तो वो भी परिवार का हिस्सा होकर वहीं लोग परिवार नियोजन भी कर रहे हैं। तो एक समानता का एक सोच तो समाज में विकसित हुई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी
0: जो पहले बेटियों को हम काफी पीछे देखा करते थे, तो वो चीजों पर काफी अब अंतर आया है, अब बेटियों के समानता की दृष्टि आई है, जिसको मैं आपके थोड़ा एक काव्य के माध्यम से चाहता हूँ मैं।
1: जी जी।
0: कि ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा और ना कोई बलवान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई बलवान है, सच कहूं तो बेटा बेटी दोनों एक समान है। यदि पुत्र वंश बढ़ाता है, हम कहते हैं पुत्र वंश बढ़ाता
1: जी
0: है,
1: जी।
0: तो वो यहाँ पर थोड़ा सा एक आगे हो जाता है कि यदि पुत्र वंश बढ़ाता है तो पुत्री भी दो कुल की लाज जमाती है। ये बात हमको नहीं भूलना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी जी
0: यदि पुत्र वंश बढ़ाता है तो पुत्री भी दो कुल की लाज जमाती है, कुदरत ने दिया हमको सबसे बड़ा वरदान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई बलवान है, सच कहूं तो बेटा बेटी दोनों एक समान है। अगर ना होती बेटियां तो क्या होता, अगर ना होती बेटियां तो क्या होता, रह जाती कलाइयां सूनी भाइयों की, कौन राखी बांधता है। अगर ना होती बेटियां तो क्या होता, रह जाती कलाइयां सूनी भाइयों की, रक्षाबंधन हरियाली तीज त्योहारों की इन्हीं से पहचान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई बलवान है, सच कहूं तो बेटा बेटी दोनों एक समान है। अब ना करें तुलना एक दूसरे की एक दूसरे से, अब ना करें तुलना एक दूसरे की एक दूसरे से कभी, कहते हैं कुमार देना दोनों को बराबर का सम्मान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई बलवान है,
1: जी
0: सच कहूं तो बेटा बेटी दोनों एक समान है।
1: चलिए वो स्थान मिले, लेकिन अभी भी क्या लगता है कि समाज में बहुत कुछ ऐसा है जो किया जाना बाकी है इस बराबर की लड़ाई के लिए, बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए, उनकी जायज हक दिलाने के लिए? क्या लगता है कि अभी समाज में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि काम तो अभी बनता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: सिर्फ
0: जी
1: कहने से और उससे बात नहीं है?
0: कथनी और करनी में अंतर हो जाता
1: हाँ,
0: है, उनको ये
1: तो
0: करना पड़ेगा
1: वास्तविक
0: जी।
1: स्थिति में अभी
0: हाँ।
1: कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हर व्यक्ति को करना चाहिए उसमें?
0: बिल्कुल करना चाहिए सर।
1: जी
0: मैं चाहता हूँ कि बेटियों को भी सम्मान बराबर के होना चाहिए, जैसे बेटा को सम्मान है तो उतने सम्मान बेटियों का भी होना चाहिए, और जो कुछ कमियां हैं तो भी इसके माध्यम से, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ
1: जी। स्वागत है
0: कि हो गई अब बड़ी बड़ी बात, हम बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, मैं देखता हूँ हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलता है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, कोई पहल नहीं करता है। तो मैं ये समर्पित कर रहा हूँ कि हो गई अब बड़ी बड़ी बातें, कुछ काम होना चाहिए। हो गई अब बड़ी बड़ी बातें, कुछ काम होना चाहिए, मेरे देश में भी बेटियों का सम्मान होना
1: सम्मान
0: चाहिए।
1: होना चाहिए।
0: अब हो गई बड़ी बड़ी बातें, कुछ काम होना चाहिए, मेरे देश में भी बेटियों का सम्मान होना चाहिए। अब ना हो इनका अस्तित्व खत्म समय से पहले, जैसा कि हम सुनते हैं सर कि भ्रूण हत्या हो रही है, ये हो जाता है इनका,
1: जी
0: तो ये दो लाइन वहां समर्पित कर रहा हूँ कि अब ना हो इनका अस्तित्व खत्म समय से पहले, इनका भी जमुना और कुआ पूजन होना चाहिए। हो गई अब बड़ी बड़ी बातें, कुछ काम होना
1: काम होना
0: चाहिए,
1: चाहिए,
0: मेरे देश में ही बेटियों का सम्मान होना चाहिएगा। अब हमको दो बात जी मैं समर्पित करना चाहूंगा, खासकर हम लोगों के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि है वजूद हमारा इन्हीं से, आज हमारी जो माँ है वो कभी ना कभी बेटी रही होगी,
1: बिल्कुल निश्चित तौर पे।
0: तो हमारा अस्तित्व है वजूद हमारा इन्हीं से, है वजूद हमारा इन्हीं से, ये हम सबको एहसास होना चाहिए। हो गई अब बड़ी बड़ी बातें, कुछ काम होना चाहिए, मेरे देश में ही बेटियों का सम्मान होना चाहिए। अब ना चढ़ाई जाए दहेज की बलि भेदी पर, शादी के बाद सुनते हैं सर कि दहेज की खातिर मार दिया, अखबारों में पढ़ते हैं कि अब ना चढ़ाई जाए दहेज की बलि भेदी पर, ऐसा करने

0: वालों पर सख्त लगाम होनी चाहिए। हो गई अब बड़ी बड़ी बातें, कुछ काम होना चाहिए। मेरे देश में भी बेटियों का सम्मान होना चाहिए। अब दो लाइन और समर्पित करता हूँ बिल्कुल एक
1: जी।
0: सम्मान के लिए। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा कि कहते हैं कुमार जिस दिन तेरे दिल से, कहते हैं कुमार जिस दिन तेरे दिल से पुत्र की चाह घट जाएगी। कहते हैं कुमार जिस दिन तेरे दिल से पुत्र की चाह घट जाएगी, ना करना कुछ भी, बेटी अपने आप बच जाएगी और बेटी
1: जी
0: अपने आप बच जाएगी।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात है कि जो बेटियां हैं हमारी, निश्चित तौर पे समाज में, हमारी सभ्यता में, हमारी
0: जी
1: संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान रखती हैं। दो परिवारों, दो संस्कृतियों के मिलन की बात होती है। तो चलते चलते कुछ एक नमन के तौर पर उनके बारे में और
0: जी
1: कहना
0: जी
1: चाहें
0: सबसे
1: आप।
0: पहले तो मैं उस परमात्मा को मैं नमन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने
1: जी
0: इनकी रचना की है। मैंने पिता को इसमें शामिल नहीं किया है,
1: जी
0: क्योंकि पिता जन्म देता है लेकिन आगे की रूपरेखा, भूमि का भाग्य सब कुछ वो ईश्वर लिखता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उसको नमन करना चाहता हूँ जिसको परमात्मा कहते हैं। तो चाहता हूँ, हे नमन उनको बनाया है जिसने इनको, हे नमन उनको

0: इस धरा पर नीले नीले आसमां सी है नमन उनको बनाया है जिसने इनको, है अदम साहस चट्टानों सा है ऊंचाई पर्वतों सी, है अदम साहस चट्टानों सा है ऊंचाई पर्वतों सी है नमन उनको बना।
1: अभी आप सुन रहे थे परिवार और समाज का संबल हमारी बेटियां, इस विषय पर बातचीत। वार्ताकार थे रमेश कुमार सक्सेना और बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
1: बस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। जिले में गौशाला के रखरखाव और गर्मी में गौवंश की सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में हर गौशाला के लिए नोडल अधिकारी तय किए गए। बस्ती में गौशालाओं की बदतर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने विभागीय अधिकारियों और सभी शासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया,
2: हमने सभी गौशालाओं को लेकर के एक विस्तृत बैठक की। इसमें हमने कुछ नए नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। मीटिंग में हमने सबसे पहले तो जितने भी जीओ हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया। इनको ये भी बताया कि जब ये निरीक्षण करने जाएं तो किस प्रारूप पे इनको निरीक्षण करना है, एज वेल एज गौशाला में इनको क्या देखना है। उसी के साथ गर्मी से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
1: राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा में मेधावी छात्रों को प्रशस्त पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को मूर्त रूप अजय प्रकाश लाल व अमित यादव द्वारा दिया गया। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा खाड़ी देशों में मौजूद हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की बचत की गई अपील पर मंडल के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से देश हित में एवं मौजूदा हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की हर एक बूंद की बचत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इसको लेकर अपने निजी वाहनों को छोड़ बस टैक्सी व साइकिल से ऑफिस आने की सलाह दी गई। जिसके क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस निमित्त शासकीय वाहन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा अपने आवास से साइकिल द्वारा कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों का संपादन किया गया एवं ईंधन की बचत के लिए मंडल के ग्राम विकास विभाग से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे देश हित में कम

0: से कम वाहनों का प्रयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बस्ती जिले में तहसील जूसो में फरियादियों की लगी भीड़, सदर तहसील में 90 शिकायतों में 6 का निस्तारण मौके पर कराया गया। बस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ शनिवार को विक्रम ज्योत में हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पहले दिन 7 तथा दूसरे दिन 4 सत्र सम्पन्न होंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रदेश के सम्मुख चुनौतियों एवं निदान के हमारे प्रयास विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती शक्ति से घबराई देश विरोधी ताकतें सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दूसरे सत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी वैचारिक अधिष्ठान विषय पर अपने विचार रखे। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि गौ आश्रय को अब 5 से 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है, लोगों को पशु पालने के लिए निराश्रित पशुओं के देखभाल के लिए जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार गौ सेवा को केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं एक पवित्र के रूप में स्वीकार करते हुए सतत कार्य कर रही है। बस्ती जिले के सलटौआ विकास खंड में गरीबों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली, अब महंगे मैरिज हॉल की टेंशन खत्म होगी। यहां वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ मीटिंग और सरकारी आयोजन भी हो सकेंगे। ये बहुउद्देशी भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब परिवारों के आत्मसम्मान की नई नींव है। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने बताया।
1: मुझे लगता है जनपद ही नहीं प्रदेश का पहला ऐसा विकास खंड होगा जहां ऐसा भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जहां गरीब परिवार सिर्फ इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट देकर अपने बेटियों की शादी यहां पर ऑर्गेनाइज करा सकते।
0: बस्ती जिले की जिलाधिकारी कृतिका जोशना द्वारा जनपद में विभिन्न विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ सफाई, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा मिड डे मील की गुणवत्ता का गहनता से परीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत विकास खंड बनकटी स्थित पीएम श्री विद्यालय द्योमी से हुई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी कंपोजिट विद्यालय डाडीडीहा पहुंची, जहां कक्षाएं संचालित होती पाई गयी। जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर प्रतीक्षा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। बच्चों को परोसी गई रोटियां मोटी एवं जली हुई पाई गई। भोजन की खराब गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापिका अनीता द्विवेदी और रसोईया के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। बस्ती जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर फीटा काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जेल में महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की न्यायमूर्ति ने सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौता पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। बस्ती जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी का बुरा हश्र होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन की समाप्ति का जनादेश है। बंगाल में गुंडागर्दी, बंगाल में हिंसा का रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो बड़ी मात्रा में इसी बंगाल के रास्ते से देश में हमारी संपत्तियों पर जिसका अधिकार भारत के नागरिकों का था उस पर आज बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ केवल हमारे देश के लोगों का कब्जा होगा।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का।
3: सोनभद्र में विगत दिनों आंधी तूफान से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई है। आंधी और तूफान के नुकसान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत आंधी तूफान में हो गई, जबकि दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हुए। आंधी तूफान के चलते अभी भी कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप ही पड़ी है। जगह जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं, जिसे लगातार सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आम के फल से लदे वृक्षों के फल बड़े पैमाने पर गिर गए हैं। जिलाधिकारी ने आंधी तूफान में मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सोनभद्र में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुलाब जामुन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अब तक ऊर्जा के क्षेत्र में पहचान रखने वाले सोनभद्र को अब गुलाब जामुन मिष्ठान के रूप में भी जाना जाएगा। परंपरागत कारीगरों को प्रोफेशनल कारीगर बनाने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार लोन भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके हुनर को बढ़ावा मिल सके। जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में नई उड़ान मिल रही है। जनपद के करीब 2000 युवाओं को ब्याज मुक्त 100% धनराशि दी गई है। सोनभद्र में 5 दिवसीय अंश निर्धारण का विशेष अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में जनपद की चारों तहसीलों को मिलाकर लगभग 20,000 से ज्यादा खाता धारकों के अंश का निर्धारण किया गया। जनपद सोनभद्र जो पूरे देश को विद्युत आपूर्ति करता है, यहाँ की बिजली उत्पादन से देश

0: राजधानी दिल्ली को रोशनी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य की जनपद के ही 834 मजरों को आज तक आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकी है। नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस तरफ विशेष अभियान के तहत हर हाल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के विशेष निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य की प्रत्येक सप्ताह में खुद मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश से बिजली विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन मजरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है वो अति दूर क्षेत्र है। ऐसे में इस अभियान को अमली जामा पहनाना काफी परेशानियों भरा है। सोनभद्र में विगत माह भर के अंदर में 2 दर्जन से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो गई हैं। आए दिन ओवरलोड ट्रकों के संचालन से दुर्घटनाओं का घटित होना जनपद के लिए अब आम बात हो गई है। परिवहन विभाग के साथ साथ खनन विभाग हर हाल में ओवरलोड वाहनों के संचालन को चालू रखना चाहता है। इसके लिए बाकायदा खनन और परिवहन विभाग अंदर खाने से अवैध वसूली करते हैं। जनपद सोनभद्र में प्रारंभ हुए जनगणना के कार्य में सरकारी अमला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। 7 मई से प्रारंभ हुई जनगणना के प्रथम दिवस पर ही कुल 19,984 लोगों ने स्वगणना कर पूरे प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक गणना कर प्रदेश का प्रथम जिला बनने का गौरव हासिल किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के कठिन प्रयास से इस अभियान को अमली जमा पहनाया जा सका है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जनगणना उस देश की आगामी विकास की धुरी होती है। जनगणना के आधार पर ही विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है। जनपद में हाल के दिनों में तेज धूप और लू से आम जन जीवन प्रभावित है। तेज धूप का आलम यह है कि सुबह 9 बजे के बाद से लोग घर में सिमट जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है, जो देर शाम होने के बाद ही सड़कों पर रौनक नजर आ रही है। सर्वाधिक परेशानी जानवरों पंछियों को देखने में मिल रही है। हालांकि गौशालाओं में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं, जबकि नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर पेयजल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह शरबत के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई।
3: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है शहरों में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। आलेख और वाचन है नीलिमा शर्मा का।
4: पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और इसका महत्व आज सभी के लिए समान रूप से है, क्योंकि विश्व के सभी देश और उनके सभी शहर किसी न किसी प्रकार के पर्यावरणीय संकट से ग्रस्त हैं। प्राकृतिक संसाधनों का जिस दुर्दांत रूप में शोषण हुआ है और उससे प्रकृति के संचित कोष खाली हो रहे हैं, उसे वापस पूरा नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक कि लोगों के अदूरदर्शितापूर्ण कार्य व्यवहार से जो जल, वायु, भूमि या अन्य प्रदूषण हुआ है, उसे निरापदता में नहीं बदला जा सकता। हाँ, यह संभव है कि यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य यह समझने लगें कि उनके कृत्यों से ही स्वर्ग और नर्क बन रहा है, तो विशाल प्राकृतिक निधियों जैसे जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, वनस्पति के भंडार वाली धरती रीति हो चली है। भविष्य की तो छोड़ें, वर्तमान पीढ़ी का जीवन जीना भी दूभर हो गया है, तो संभव है कि इस एक तरफा नष्ट हो रही स्थिति पर कुछ काबू पाया जा सके, आगे इसे और विनाश से बचाया जा सके। लेकिन इसके लिए यहाँ के लोगों को समझना होगा कि पर्यावरण को संतुलित रखना आज की सबसे महती आवश्यकता है और उसे हमें पूरा करना है। पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में संभवतः यही सोच बनानी होगी। इसमें कोई संकोच नहीं है कि पर्यावरण की गुणवत्ता के बारे में चिंतन सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने ही किया था, फिर धीरे धीरे समाज के सभी वर्गों में इसने स्थान पाया और व्यापक रूप से सोचने और विचार विमर्श का विषय यह बन गया। पिछले कुछ वर्षों से आम जनता ने भी इसमें भागीदारी निभाई और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के हल खोजने में अपनी रुचि दिखाई। यद्यपि यह रुचि एक आवश्यकता तो थी, लेकिन पर्यावरण गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए यह काफी नहीं थी। अतः कुछ प्रबुद्ध लोगों ने पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए इसमें अपने आप को वास्तव में शामिल करने का सुझाव रखा। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के आधार पर पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा को यद्यपि एक नई दिशा मिली और इसकी सीमाओं को भी काफी सीमित कर दिया गया, लेकिन जैसे पर्यावरण क्षेत्र का विकास

पास विस्तार विचारकों की दृष्टि में आ रहा है, वह जीवन पद्धति के हर पहलू को मानव से करीब से जोड़ने लगे हैं। चूंकि पर्यावरण शिक्षा, जिसकी कि आज शहरों में बहुत अधिक आवश्यकता हो गई है, यहाँ लोगों के इस्तेमाल की ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे डिस्पोजल आइटम, प्लास्टिक की बोतलें, कंप्यूटर, मोबाइल आदि की खराब सामान, ये सब अपने आप तो खत्म होते नहीं और इनका प्रयोग कम करके और इन्हें इस्तेमाल के बाद सही तरीके से समाप्त करने की सोच ही पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हमें देनी पड़ेगी। आज शहरवासी दिखावे व सुविधा की होड़ा होड़ में पर्यावरण को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, चूंकि प्राकृतिक पदार्थों की खपत तो ज्यादा हो रही है और वो इतने हैं नहीं, तो हमें इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतने की शिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति के भंडार खाली हो जाएंगे और हम यूं ही जो आज इतने ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो अपने जीवन को भी चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा, जो कि दायित्वों को जानने तथा विचारों को स्पष्ट करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपनी संस्कृति और जैव भौतिक परिवेश के माध्यम से अपने आप की संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर सकता है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नागरिकों के अपने उत्तरदायित्वों में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंधन के बारे में जागृति पैदा करना और उसे बढ़ाना है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था शहरों में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। आलेख और वाचन था नीलिमा शर्मा का।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है विशेष बातचीत, विषय है सामान्य बीमा की जनोपयोगी योजनाएं। वार्ताकार हैं श्री शरद श्रीवास्तव, भेंट कर रहे हैं OP सिंह।
1: श्रोताओं, जीवन सुरक्षित हो ये हम सब सोचते हैं, और जीवन को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी एहतियात भी बरतते हैं, उसमें एक बीमा भी उपयोगी साधन है। लेकिन जीवन अपने को सुरक्षित करना एक अच्छी बात है, लेकिन अन्य चीज़ें भी हैं जिनको हम बीमा कराते हैं, जैसे वाहन का बीमा हुआ, अन्य उपयोगी चीज़ें जीवन की, मकान का बीमा हुआ। लेकिन बहुत सारी बीमा पॉलिसियाँ और योजनाएँ ऐसी भी हैं सामान्य बीमा की, जो जन सामान्य से जुड़ी हुई हैं, उपयोगी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, जानकारी का अभाव है, तो उसकी वजह से हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ रहेंगे श्री शरद श्रीवास्तव जी। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ शाखा प्रबंधक रहे न्यू इंडिया इंश्योरेंस में, और कई बार आपकी बातचीत हमने आपसे करवाई है। आज के इस संदर्भ में वो हमसे क्या बात करते हैं। शरद जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार सिंह साहब जी, और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो सामान्य बीमा में थोड़ा सा बताएं कि ये तो सब जानते हैं कि भाई मोटर का बीमा कराना है, कार का कराना है, स्कूटर का कराना है, अपने मकान का भी कराना है, दुकान का कराना है, प्रतिष्ठान का कराना है, तो ये तो बीमा है जिनको आदमी जानता है कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ ये भी बीमा होते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो गवर्नमेंट व्यक्ति तक लेके जा रही है, शायद उसका जानकारी का अभाव रहता है, तो बताइए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं।
2: सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी, मैं सामान्य सी जानकारी इसके बीमा क्षेत्र के बारे में देना चाहूंगा श्रोताओं को, कि बीमा क्षेत्र को अगर मोटे तौर पे देखें तो दो भागों में देखा जा सकता है, एक जीवन बीमा और एक गैर जीवन बीमा, जिसको सामान्य बीमा का नाम दिया गया है। तो जीवन बीमा तो नाम से स्पष्ट है कि जीवन बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस है, और जो गैर जीवन बीमा है उसमें हमारी संपत्तियां आती हैं, यानी कि जीवन के अलावा, जीवन बीमा तो जीवन बीमा कंपनियां कर रही हैं, उसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी में हमारा मकान हो सकता है, हमारी फैक्ट्रियां हो सकती हैं, हमारे और एसेट्स हो सकते हैं जो हमने अपने सुख सुविधा के संसाधन जुटाए हैं, जैसे कि हमारी घर की कार हो सकती है।

0: स्कूटर हो सकता है। और इसके अलावा फिर जो बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र, उसकी सुरक्षा के लिए फिर अग्नि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत बड़े स्तर पे अग्नि लगने की घटनाएं हो जाती हैं, तो उस समय बीमा पॉलिसी बहुत जरूरी है और बहुत काम आती है। चिकित्सा बीमा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और पब्लिक में अब इसके बारे में जागरूकता भी आई है, तो

0: ने पैमाना बना रखा है उसके हिसाब से उनको दावा मिल जाता है। तो ये तो सिंह साहब हुआ एक मोटा वर्गीकरण जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा ने सामान्य बीमा
1: जिनसे मतलब लोग परिचित हैं
0: जिनसे लोग परिचित हैं मतलब ये तो सामान्य बीमा का रूप जो है सामान्य आदमी जानता है जो भी एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे मालूम है कि सामान्य बीमा के अंतर्गत ये पॉलिसियां हैं। तो लेकिन जो आज मैं जब मौका मिला है मुझे आपने ये सुअवसर दिया है तो मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि सामान्य बीमे से जुड़े कई इस तरह के प्लान हैं कई इस तरह की योजनाएं हैं जो कि आम जन के कहीं ज्यादा हित में है लेकिन बस एक दुख की बात यह है कि ज्यादा उनका प्रचार नहीं हो पा रहा उन योजनाओं का
1: मतलब व्यक्ति तक जानकारी उसकी पहुंच नहीं पा रही और उपयोगी होते हुए लाभकारी होते हुए भी उनका लाभ व्यक्ति उठा नहीं पा रहा
0: क्योंकि उसके बारे में प्रचार नहीं हो पा रहा है इसलिए जागरूकता नहीं आ पा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर व्यक्ति उसका मतलब लाभ भी नहीं ले पा रहा।
1: जी जी तो एक बार थोड़ा सा बताएं कि वो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं जिनको व्यक्ति कम से कम सुनेगा आपकी इस बात को उसे लगेगा कि ये तो मेरे काम की चीज है तो मेरे हित की चीज है और इसमें तो थोड़ा सा प्रयास करके अगर मैं जुड़ जाता हूं तो शायद बहुत सारी मेरी जीवन की समस्याओं का समाधान भी हो सकता है।
0: हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से
1: जी।
0: तो मैं कुछ इस तरह की सामान्य बीमा की योजनाओं के बारे में बताता हूं आपको कुछ पॉलिसीज के बारे में। जैसे डॉक्टर साहब सबसे पहला जो एक मेडिकल बीमा जो है मेडिक्लेम ये आजकल एक परिचित टर्म हो गया है मतलब हर आदमी को पता है कि एक चिकित्सा बीमा होता है लेकिन जो आज का जीवन है कि हर आदमी चाहे वो आजीविका के लिए या फिर बच्चे पढ़ाई के लिए तो हर आदमी जो है इस समय कहीं ना कहीं मूवमेंट पे रहता है
1: घर से बाहर निकल
0: घर से बाहर निकल रहा है सफर पर है और अगर सफर पे दूसरे शहर नहीं भी जा रहा तो अपने शहर के अंदर ही बच्चे बाइक पे ट्यूशन जाना है उनको व्यक्ति जो आम व्यक्ति है या घर की महिलाएं हैं उनको अपनी नौकरी पे जाना है या फिर और घरेलू कामकाज से जाना है तो इससे संबंधित एक प्लान है एक योजना है व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जो कि बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सस्ती बीमा पॉलिसी है लेकिन इसके बारे में दुख की बात यह है कि आम जनता को ज्यादा जानकारी नहीं है और हालांकि हम लोगों ने अपने कार्यालय में जो आम व्यक्ति आते थे तो हमेशा कोशिश करी कि उनको इस बारे में जागरूक करें। और
1: तो इसमें ये क्या जैसे इसमें लग रहा है कि दुर्घटना सब जुड़ा हुआ तो ये ऐसा कि व्यक्ति मूवमेंट में है किसी चीज़ से उसको हिट हो जाता है परेशानी हो जाती है अक्षमता हो जाती है तो उस कंडीशन में ये काम करेगी उसमें
0: सर ये हाँ दुर्घटना पॉलिसी ही है सिंह साहब
1: जी।
0: और इसका सबसे बड़ा क्या है कि जो इसका आवरण है जो कवरेज इसमें मिलता है पॉलिसी में वो ये है कि किसी भी तरह की अगर अनपेक्षित घटना आपके साथ हो गई इसमें दुर्घटना का मतलब रोड एक्सीडेंट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रोड एक्सीडेंट तक सीमित है
1: जी, जी,
0: कोई
1: जी।
0: भी ऐसी चीज जो कि जिसका पता नहीं था और अचानक घट गई जिसमें कि आप घर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उसमें आपका पैर मान लीजिए स्लिप हो जाता है और फ्रैक्चर हो गया शरीर में या फिर ये कि जा रहे हैं आजकल जैसे छोटे शहरों में बंदरों का आतंक बहुत है कई जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह में जो जंगली इलाके हैं वहां पे सांपों का आतंक बहुत है
1: जी।
0: तो इवन सांप के काटने का बंदर के काटने का यानी कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड कोई भी घटना हमारे साथ होती है तो उसको दुर्घटना मान के वो ये पॉलिसी कवर करती है
1: जी।
0: और इसका जो सबसे इसकी खास बात है एक मैं थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा
1: जी, जी।
0: कि जो हमारी मेडिकल पॉलिसी है और ये व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी है इसमें क्या है
1: अंतर क्या है
0: जी। और बल्कि मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी शामिल करना चाहूंगा
1: जी।
0: कि हमारी कोई भी पॉलिसी चाहे वो जीवन बीमा की पॉलिसी हो चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो वो आपके एक जीवन बीमा में मृत्यु पे आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी
1: जी जी।
0: मेडिक्लेम इंश्योरेंस में अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हैं और इलाज होता है तो उसमें क्षतिपूर्ति मिलती है
1: जी जी।
0: इनमें कोई भी पॉलिसी इस तरह की नहीं है कि अगर किसी दुर्घटना में व्यक्ति पूरी तरह से अक्षम हो जाए और कई बार जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि जैसे कोई दुर्घटना हुई और दिमाग पे चोट आ गई या फिर ये कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और उसके हाथ पैर पूरी तरह से अक्षम हो गए दुर्घटना के बाद
1: जी जी।
0: तो कोई भी पॉलिसी दूसरी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो उस स्थिति में उसको कोई सुरक्षा प्रदान
1: कवरेज दे जी।
0: लेकिन ये व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी अकेली ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि जितना पॉलिसी आपकी राशि है अगर पहली बात तो मृत्यु की स्थिति में उसको पूरा राशि प्राप्त होगी और अगर मृत्यु नहीं भी होती है किसी दुर्घटना में और दुर्गा

0: घटना की परिभाषा मैंने पहले बता दी, वो बहुत ही वृहद है, उसमें सिर्फ सड़क दुर्घटना नहीं, हर तरह की दुर्घटना शामिल है। तो किसी दुर्घटना की वजह से अगर पूरी व्यक्ति पूरी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, या फिर उसके हाथ पैर और आंखों को कोई क्षति पहुंचती है, तो भी उसको जो पूरा पॉलिसी अमाउंट है उसका, पूरी पॉलिसी की राशि है, वो बीमा कंपनी पे करती है डॉक्टरी सर्टिफिकेट के आधार पर। और इसके बाद इसका एक और जो बहुत ही मतलब यूनिक कहना चाहिए, बहुत ही विलक्षण जो एक कवरेज है इसके अंदर, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई और एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर हो गया, और नौकरी पेशा आदमी को 1.5 महीने 2 महीने के लिए अपने कार्यालय से छुट्टी लेकर घर पे रहना पड़ा।
1: जी जी।
0: तो उस बीच में जो लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं या जो रोजमदारी वाला काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि उनकी इनकम बंद हो जाती है, दाल रोटी का संकट है। तो इस पॉलिसी में ये कवरेज भी है कि अगर किसी दुर्घटना की वजह से अस्थाई रूप से यानी टेम्परेरी अक्षमता आपको आई है, तो जब तक आप फिट होके और काम पे जाने लायक नहीं हो जाएंगे, तो उस अवधि में ये आपको प्रति सप्ताह जितनी आपके पॉलिसी राशि है उसका 1% का भुगतान करती रहेगी।
1: जी जी जी।
0: तो ये इतना
1: इतना काम की चीज है।
0: हाँ, इतने काम की चीज है। और इसका डॉक्टर साहब सरकार ने जो प्रीमियम रखा है वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए सामान्य नॉमिनल, जैसे कहना है नाममात्र का प्रीमियम।
1: जी जी।
0: यानी कि एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर 5 लाख का बीमा कोई व्यक्ति कराना चाहे तो सिर्फ 1,000 रुपए उसे प्रीमियम देना होगा पूरे वर्ष का।
1: जी जी।
0: तो जिसमें कि उसका जो कवरेज मैंने बताया कि मृत्यु, पूरी अक्षमता, और साथ में अगर कोई आंशिक अक्षमता भी होती है
1: जी जी,
0: तो वो सारा कवरेज
1: छोटे समय के लिए, ऐसा जब आपकी आय बंद हो जाती है तब।
0: हाँ,
1: भी आप
0: वही हमने कहा कि अगर कोई टेम्परेरी भी उसे डिसेबिलिटी हुई किसी तरह की, तो उस बीच में उसको वो कॉम्पेंसेशन मिलता है।
1: जी जी। और सिर्फ इतने कम प्रीमियम पे 1,000 रुपए में 5 लाख तक का बीमा,
0: 5 लाख का बीमा
1: मिल रहा है उसमें। इसके अलावा जो अन्य जो पॉलिसियां उस पर भी थोड़ा सा।
0: हाँ, कुछ पॉलिसियों का मैं और जिक्र करना चाहूंगा सिंह साहब। जैसे कि अभी हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पे बात करी, मेडिक्लेम पर, तो मेडिक्लेम पॉलिसियों में ज्यादातर सामान्य पॉलिसियां होती हैं कि व्यक्तिगत रूप से आदमी ले सकता है व्यक्ति, या फिर अपने परिवार के लिए ले सकता है। तो एक न्यू इंडिया एश्योरेंस का एक प्लान है जिसकी अब और कंपनियों ने भी अलग अलग नाम से उसे निकाला है, तो उसका आशा किरण पॉलिसी नाम से। ये एक्चुअल में चिकित्सा बीमा का ही प्लान है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये जिन पेरेंट्स के, जिन दंपतियों के गर्ल चाइल्ड हैं सिर्फ, यानी कन्याएं हैं सिर्फ, एक या दो कन्याएं, तो वो इस प्लान का फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें जो चिकित्सा बीमा पूरा कवर है, उसके अलावा जो अतिरिक्त लाभ मिलता है कि जो माता पिता हैं उसके, उसी पैसे में, उसी प्रीमियम में उनका व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी उतनी ही राशि के लिए हो जाता है जितनी राशि की उनकी मेडिकल पॉलिसी है। तो और इसका प्रीमियम भी जो है, जो सामान्य चिकित्सा बीमा है, उससे कम रखा गया।
1: जी जी, जी। मतलब थोड़ा सा इसमें रिबेट
0: दिया गया
1: मिली
0: है। ये सिर्फ उन पेरेंट्स को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए जिनके सिर्फ बच्चियां हैं।
1: जी। इसमें सर जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आजकल जिसका नाम सुनते ही हमें भी परेशानी होती है, उसमें अगर हम कैंसर की बात करें, या हाईली बहुत सारे डायबिटिक लोग हो गए, या किडनी की डायलिसिस वाली समस्याएं, मतलब कुछ बीमारियां जब होती हैं तो पूरे परिवार की जो परेशानी बढ़ जाती है और बहुत पैसा लगता है, बहुत लंबे समय तक इलाज लगता है। तो कुछ ऐसी स्पेशल हेल्थ के लिए और चीज़ें, या कुछ आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें और जो
0: कुछ प्लान और हैं सिंह साहब। ये आपकी बात मुझे बहुत ही अपील करी और बिल्कुल ये सच्चाई है कि कुछ बीमारियां इस तरह की हैं कि अगर उनमें मतलब परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी हो गई तो पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। और कई बीमारियां तो फिर ऐसी होती हैं जैसे कि कैंसर है कि जिसमें कि पूरा पैसा लगाने के बाद भी ये उम्मीद नहीं होती, पूरी तरह से नहीं पता होता कि किस हद तक उसको लाभ हो पाएगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो कुछ इससे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े भी कुछ ऐसे प्लान हैं जिनके बारे में शायद आम जनता को उतनी जानकारी नहीं होगी। तो इस बारे में एक तो मैं कैंसर गार्ड पॉलिसी के बारे में बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति जैसे किसी ने नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसमें उस व्यक्ति को अगर खराब किस्मत से किस कैंसर की बीमारी डिटेक्ट होती है तो कवरेज उसमें भी है, सामान्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवरेज है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर

0: होता है उसमें एक ऐसी शर्त है कि आपको 24 घंटे एडमिट रहना है
1: हाँ
0: हॉस्पिटल में,
1: दे
0: उसके बाद फिर आपको पेमेंट होता है। और कैंसर की बीमारी में यह है कि जिस समय मेन उसका अस्पतालीकरण होगा तो उस समय तो ठीक है, मतलब 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जितने दिन उसका इलाज चला या ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो इसमें केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वाली प्रक्रिया है
1: जी, जो
0: उस
1: लगातार और बार बार होती
0: वो
1: है।
0: जो कि बार बार होती है और कई कई राउंड में करानी पड़ती है, वो सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे की प्रोसेस होती है। उसके लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती रहने की जरूरत नहीं होती। तो कई बीमा कंपनियां कई बार उसको रिजेक्ट कर देती हैं उन क्लेमों को,
1: जी
0: क्योंकि
1: कि
0: आपका 24 घंटे वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई
1: लागू नहीं हो
0: तो
1: रही इस पर।
0: इसलिए उसको नहीं उसमें दे सकते। तो ये जो कैंसर गार्ड पॉलिसी का जो मैंने जिक्र किया, इस पॉलिसी की सबसे खास बात क्या है कि कैंसर का जो ये एज ओपीडी भी जो इलाज बाद में होता है, यानी कि रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के जो राउंड्स पेशेंट को लेने पड़ते हैं, तो वो भी इस पॉलिसी में कवर है और उसको जो है अस्पतालीकरण मान के ही उसका भुगतान किया जाता
1: भुगतान
0: है।
1: कर दिया जाता है। जी,
0: और इसकी एक बहुत ही विशिष्ट खासियत है जो इस पॉलिसी की, वो ये है कि पहली बात तो जिस समय आदमी लेगा तो उस समय हेल्थ चेकअप करा के उसे प्रमाणित करना होता है कि भाई उस समय कैंसर नहीं है उसे, यानी
1: जी,
0: कि पीड़ित व्यक्ति नहीं ले सकता ये
1: हाँ हाँ
0: पॉलिसी।
1: हम
0: तो उस समय अगर वो फिट है और उसे कैंसर के कोई लक्षण नहीं है तो पॉलिसी और सारी पॉलिसियां सामान्य बीमा की, सिंह साहब एक बात और मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे सब जो है वार्षिक योजनाएं होती हैं, हर पॉलिसी जो है 1 साल के लिए होती है और 1 साल बाद फिर उसका नवीनीकरण कराना होता है प्रीमियम
1: बिल्कुल।
0: दे के। तो कैंसर कार्ड पॉलिसी का जो जिक्र कर रहा था, तो इसमें से एक बार व्यक्ति ने पॉलिसी ले ली और उसको फिर टाइम से रिन्यू कराता जा रहा है, फिर 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद अगर किसी समय कैंसर डिटेक्ट होता है उसको और स्टेज 3 या स्टेज 4 का कैंसर डिटेक्ट होता है, तो फिर जितना उसका पॉलिसी राशि है उसकी 50% राशि उसको कंपनी अलग से भुगतान करती है, जिसके लिए उसको कोई बिल पर्चे नहीं देने। और ये जैसे किसी के उदाहरण के लिए 10 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख का भुगतान उसको अलग
1: बिना
0: से
1: किसी उस
0: होगा
1: जी
0: बिना किसी कागज के, अगर फर्स्ट टाइम उसको वो डिटेक्ट हुआ है, मतलब इसके तीसरे या चौथे स्तर का कैंसर। और तो इसको जो है उसमें क्लेम में नहीं माना जाता, ये क्लेम के अलावा पेमेंट है, तो ये
1: जी
0: इसका बहुत बड़ा फायदा है। और
1: एड्स और एचआईवी जैसे रोगों की भी कुछ व्यक्ति की सुरक्षा, क्योंकि ये भी लंबे हैं, ये भी
0: हाँ
1: परेशान
0: हाँ
1: करने
0: हाँ हाँ
1: वाले
0: ये भी सिंह
1: हैं।
0: साहब, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। एड्स और एचआईवी ही नहीं, मतलब मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब एक व्यक्ति बीमा कंपनी के कार्यालय में जाता है और मान लीजिए कि उसका कोई एक्सीडेंट हो रखा है, एक पैर से नहीं चल पा रहा वो या एक पैर उसका नहीं है, तो बीमा कंपनी उसको देखते ही पॉलिसी देने से मना कर देगी, कम से कम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी तो नहीं देगी उसको, है ना, क्योंकि उसके लिए वो कहते हैं कि भाई पूरा फिट होना
1: फिट
0: चाहिए
1: होना
0: आपको,
1: चाहिए।
0: है ना।
1: जी।
0: और मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है या विकलांग है तो उसको पॉलिसी नहीं मिलेगी, सामान्य बीमा प्लान वो नहीं ले सकता हेल्थ इंश्योरेंस वाले। लेकिन इसके लिए फिर एक केंद्र सरकार की पहल पर एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, जो कि सिर्फ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या फिर जो एड्स या एचआईवी पीड़ित लोग हैं सिर्फ उनके लिए वो प्लान है, जिसमें कि 4 लाख या 5 लाख रुपए का बीमा वो व्यक्ति करा सकता है। और उसमें उसको प्रपोजल फॉर्म जो है हमारा प्रस्ताव पत्र होता है बीमा लेते समय, उसमें उसे खोल के लिख देना है कि क्या परेशानी है, तो वो जो उसकी अक्षमता है वो बीमा लेने के मामले में मतलब कोई निगेटिव पॉइंट नहीं माना जाएगा और उसको वो ये पूरे स्वास्थ्य बीमा के पूरे लाभ
1: मतलब
0: मिलेंगे उसमें।
1: एक ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान मिलेगा और उसकी जरूरत की भी पूर्ति की जाएगी, ऐसा सरकार ने
0: हाँ
1: प्रावधान
0: मतलब
1: किया है।
0: जो लोग विकलांग हैं या फिर जो एचआईवी पीड़ित हैं, एचआईवी होने के बाद ज्यादातर बीमा कंपनियां उनको नॉर्मल पॉलिसी देने से मना कर देती
1: मना
0: हैं,
1: कर
0: तो ये
1: देती
0: आत्मनिर्भर स्वास्थ्य बीमा इसीलिए है कि वो व्यक्ति भी आत्मनिर्भर रूप से जीवन बिता सके
1: है।
0: और
1: जी
0: दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े उसे।
1: जी आजकल देखा होगा शरद जी की ब्याह शादियों में बहुत सारे हम फोटोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ते हुए देखते हैं,
0: ड्रोन, जी,
1: और
0: ड्रोन
1: आज
0: कैमराज
1: तो
0: में,
1: टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि बड़ी बड़ी कुरियर कंपनियां इसको इस्तेमाल कर रही है एक शहर से
0: हाँ
1: दूसरे।
0: सामान भेजने
1: हाँ,
0: के लिए भी
1: और
0: हो
1: अब तो
0: रहा
1: युद्ध भी ड्रोन से लड़े जा रहे
0: है।
1: हैं। तो क्या इस तरह की जो नई चीजें आ रही हैं, नए रिस्क पैदा हो रहे हैं, नई फील्ड तैयार हो रही है, वहां भी कुछ बीमा कंपनियों ने सोचा है क्या? वहां तक निगाह जा रही है।
0: हाँ सिंह साहब, ये भी बहुत आपका सामयिक सवाल है। हाँ। क्योंकि सामान्य बीमा की जब बात होती है तो जो बीमा कंपनियों के जो दिग्गज हैं, तो

0: एक टैगलाइन ये उपयोग करी जाती थी न्यू इंडिया एश्योरेंस में, तो जहां से कि मतलब मैं रिटायर हुआ हूँ, अभी अवकाश लिया है, उसका तो विज्ञापन हुआ करता था कि हम सुई से लेके और सैटेलाइट तक हर चीज का बीमा करते हैं।
1: हाँ,
0: तो ये तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मतलब उनकी जानकारी में होगा कि भाई सैटेलाइट का या हवाई जहाजों का या पानी के जहाजों का, बड़ी चीजों का बीमा होता है। लेकिन जो ड्रोन वाला जो अवधारणा है, जो ये कॉन्सेप्ट है ड्रोन का, ये तो बहुत अभी कुछ सालों के अंदर ही एकदम परिपाटी चालू हुई है। और शादी ब्याह में या बड़े फंक्शनों में कई बार सुरक्षा के लिहाज से भी ड्रोन से निगरानी करी जाती है, जब बड़े नेताओं की सभाएं होती हैं या कोई और जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। और इसके अलावा जैसे शादी में आपने कहा बिल्कुल सही कि फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है कैमरे की तरह। और अब इसका व्यावसायिक उपयोग बहुत होने लगा है कि युद्ध वाली बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही, युद्धों में भी यूज होने लगा है। और व्यावसायिक उपयोग इस तरह से होने लगा है कि बड़े शहरों में, शहर के अंदर कुरियर डिलीवरी भी हो रही है अब इससे, ड्रोन के माध्यम
1: ड्रोन
0: से।
1: के माध्यम से
0: और ड्रोन आम आदमी जैसे समझेगा कि ड्रोन का साइज वो वही मानेगा जो कि शादी ब्याह में छोटे कैमरे चलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच है। और अब बहुत बड़े आकार के और बहुत बड़ी क्षमता वाले ड्रोन भी ऑपरेशन में है इस समय। तो जब कोई चीज संपत्ति बीमा के क्षेत्र में पैर रखती है तो उसकी सुरक्षा के भी रास्ते निकाले जाते हैं। तो ड्रोन बीमा आ चुका है सिंह साहब, और पॉलिसियाँ उसकी व्यापक पॉलिसी है। और एक जनता की जानकारी के लिए मैं ये और बताना चाहूँगा, आम जनता ही नहीं बल्कि हमारा कार्यक्रम कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो कि शायद ड्रोन व्यवसाय से ही जुड़े हों, कि शादी में फोटोग्राफी करते हों या फिर ड्रोन का उपयोग करते हों। तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ड्रोन के लिए जो बीमा पॉलिसी है उसमें अब आपको थर्ड पार्टी का बीमा लेना अनिवार्य हो गया है। ये सरकार की तरफ से अनिवार्य है, क्योंकि जब ड्रोन आप यूज करते हैं तो वो कभी मिसहैंडलिंग की वजह से गिर सकता है या कुछ और नुकसान कर सकता है। तो बिल्कुल इसको उस तरह समझें जैसे कि हमारी प्राइवेट कार पॉलिसी होती है, कि उसमें पॉलिसी में दो सेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा ओन डैमेज सेक्शन, यानी कि हमारी कार को जो नुकसान होगा दुर्घटना में। दूसरा होता है थर्ड पार्टी सेक्शन, जिसमें कि हम जो कार सड़क पे चला रहे हैं उससे सड़क चलते किसी व्यक्ति को अगर कोई नुकसान हुआ तो उसको भी पॉलिसी कवर करती है। तो इसी तरह ये ड्रोन बीमा जो है, ये पॉलिसी भी, इसके दो सेक्शन है। एक तो ड्रोन को अगर कोई नुकसान होता है किसी वजह से तो उसको भी ये कवर करती है, और साथ में अगर ड्रोन के यूज की वजह से, उसके
1: किसी
0: उपयोग की
1: अन्य
0: वजह
1: का
0: से किसी थर्ड पार्टी का कोई शारीरिक क्षति हो या उसके सामान का नुकसान हो तो वो भी इसमें कवर
1: किया जा सकता है
0: जी
1: इसमें,
0: किया जा
1: और
0: सकता
1: इसको
0: है।
1: अब कराना मतलब जरूरी है, जो लोग इस व्यवसाय से
0: जो
1: जुड़े
0: जो
1: हुए
0: ड्रोन
1: हैं।
0: व्यवसाय में, उनके लिए कंपलसरी हो गया,
1: जी
0: अनिवार्य कर
1: जी
0: दिया सरकार
1: जी
0: ने।
1: जी जी जी चलते चलते बहुत सारी नई चीज़ें आपने, जैसे ड्रोन वाली बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियों की बात की, कुछ दुर्घटना उसकी बात की, एक अच्छी जो दो कन्याओं के माँ बाप हैं उनके लिए आशा किरण
0: जी
1: की
0: जी
1: बात
0: आशा
1: की।
0: आशा किरण
1: तो कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें कि जो कम जानकारी है लोगों
0: जी
1: को,
0: जी
1: हम ये
0: जी
1: नहीं कहते कि बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जिन चीज़ों की जानकारी कम है और जो लाभकारी है उन पर भी प्रकाश डालना चाहें अगर आप।
0: जैसे आजकल मोटर पॉलिसी हर परिवार में है, क्योंकि हर परिवार के पास वाहन है, और सामान्यतः अब एक वाहन नहीं, हर परिवार में कम से कम दो या तीन वाहन
1: कई
0: होते
1: कई
0: हैं,
1: वाहन हो रहे
0: है
1: हैं।
0: ना। कि अगर एक कार है तो बच्चे हैं तो दो स्कूटियां होंगी घर में, कहीं पे अगर बड़े लड़के हैं दोनों नौकरी कर रहे हैं तो दो कारें भी हो
1: दो
0: सकती हैं या तीन
1: कारें।
0: कारें भी हो सकती हैं। तो जो कार पॉलिसी होती है या मोटर पॉलिसी होती है उसमें एक सरकार ने एक अनिवार्यता बनाई ड्राइवर ओनर कवर की, यानी कि आप अगर पॉलिसी लेंगे और आपके नाम ही वो गाड़ी रजिस्टर्ड है तो आपको ड्राइवर ओनर कवर भी लेना पड़ेगा। ओनर ड्राइवर कवर मतलब कि गाड़ी का जो मालिक है वो खुद ही ड्राइवर भी है, यानी अगर अपनी गाड़ी आप खुद चला रहे हैं। तो उसमें प्राइवेट कार के मामले में बताऊं, ₹270 प्रीमियम और उसके ऊपर उसका जीएसटी, जो भी लागू जीएसटी है ये जाता है, और उसमें ₹15 लाख का उस व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर हो जाता है।
1: तो ये
0: तो
1: तो सामान्यतः कम लोगों को पता है कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा
0: नहीं
1: हूं तो
0: नहीं ये
1: वो। जी
0: एक्चुअल में मोटर पॉलिसी अगर आपने ली है तो
1: हाँ
0: ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि
1: हाँ
0: उसको, क्योंकि वो अनिवार्यता है, ऑप्शनल नहीं है, आपसे बस आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लेंगे वो, और उस आपकी पॉलिसी में वो ₹270 ऐड करके ये बीमा आपका करके देंगे।
1: अच्छा,
0: तो
1: वो रहता है
0: हाँ
1: व्यक्ति को पता हो या ना हो, लेकिन उसमें रहता
0: वो
1: है वो।
0: करेंगे अगर मतलब बीमा अगर वो ठीक से जारी हुआ है, और
1: हाँ
0: बल्कि इतना जागरूक
1: अच्छा, इसमें
0: मेरे
1: जैसे
0: सबसे
1: मान लो मैंने कार ली, अब ये भी कार का बीमा भी मैं हर साल रिन्यू कराता।

0: जी
1: अगर पहली साल वो छूट गया किसी कारण से
0: अगले साल हो सकता है
1: तो
0: कवर।
1: उसको जोड़ सकते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: ना।
0: जी
1: तो ये एक व्यक्ति जब अपनी कार का वाहन का वो करा रहा है
0: जी
1: तो इस चीज को ध्यान रख ले कि बहुत कम प्रीमियम पे, और 15 लाख रुपए तो बहुत होते
0: हाँ,
1: हैं।
0: 15 लाख रुपए बहुत होते हैं, और दुर्घटना का कुछ भी पता नहीं होता
1: जी
0: जीवन
1: जी
0: में,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि जीवन तेज हो गया है
1: हाँ
0: और जीवन में आपाधापी भी बहुत है। तो लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा था सिंह साहब, वो इससे आगे की बात है कि ये ओनर ड्राइवर कवर हर मोटर पॉलिसी में देना अनिवार्य है। तो अब ये एक तो आज की बात था, हम लोगों की सुनने के बाद शायद हमारे श्रोता भी जागरूक होंगे
1: जी जी
0: और अपनी बीमा पॉलिसी को चेक करेंगे कि क्या ये कवर उन्होंने ले रखा है। लेकिन मैं एक आपको दूसरी पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि CPA पॉलिसी कहलाती है, वाहन मालिक बीमा कहलाता है। तो अब क्या है, जैसे आपके घर में 4 गाड़ियां हैं और आपके नाम ही, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, मान लीजिए आपके नाम ही रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें आप जब 4 बार पॉलिसी, मतलब चारों की पॉलिसियां कराएंगे, तो अगर बीमा कंपनी उस अनिवार्यता पे जाएगी तो वो चारों में आपका ओनर ड्राइवर कवर करेगी। तो वो ओनर ड्राइवर कवर आपका 270 270 रुपये, यानी कि आपको 4 बार पे करने हैं 4 पॉलिसियों में।
1: चार पॉइंट जी
0: लेकिन अगर उसमें क्लेम होगा तो क्लेम 15 लाख रुपए का मिलेगा,
1: एक ही
0: क्योंकि एक
1: मिलेगा
0: क्लेम
1: आपको
0: मिलेगा,
1: और आपका प्रीमियम
0: तो
1: 4 बार कट गया।
0: प्रीमियम 4 बार कट गया। तो
1: हाँ
0: उसके लिए फिर एक पॉलिसी, विशेष पॉलिसी निकाली गई है, वाहन मालिक बीमा पॉलिसी। इसमें क्या है कि आपको ये पॉलिसी सिर्फ 270 रुपए में ही होती है, और उसमें आपको अपनी जितने आपके नाम वाहन हैं, मान लीजिए आपके नाम 3 गाड़ियां हैं, तो तीनों की बस अपना
1: सब
0: जो
1: जी
0: पंजीकरण सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी वहां पे बीमा कंपनी में देनी है, तो उसमें आपको वो पॉलिसी होके मिल जाएगी। तो फिर जब आप अपनी मोटर की पॉलिसी कराएंगे तो वहां पे सिर्फ उस पॉलिसी की कॉपी दिखा के
1: हाँ
0: उधर आपका प्रीमियम नहीं जाएगा,
1: जी
0: और
1: जी
0: आप
1: जी
0: अपनी अपने लाइसेंस से आप जो भी गाड़ी चला रहे हैं अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें फिर क्षतिपूर्ति मिलेगी
1: जी
0: आपको।
1: जी तो ये
0: तो
1: एक काम की बात है कि
0: हाँ, ये
1: भाई
0: काम की
1: हम
0: बात
1: एक
0: है।
1: ही काम के लिए बार बार प्रीमियम क्यों दें,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: थोड़ी
0: जी
1: सी जागरूकता से। और ये मैं समझता हूँ आप वाली बात सही है कि हर व्यक्ति के नाम एक घर में दो तीन छोटे बड़े वाहन हैं
0: आजकल
1: ही,
0: सामान्य बात है।
1: तो
0: जी
1: ये
0: हाँ
1: जो है वाहन मालिक बीमा
0: जी
1: आपको करा लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी जी
1: चलते चलते कुछ और कहना चाहें इसमें।
0: एक डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं से एक मैं छोटा सा और उन्हें सलाह भी देना चाहूँगा, और थोड़ा सा मतलब उनकी जागरूकता और ज्ञान जानकारी बढ़ाने के लिए, कि सामान्य बीमा की एक पॉलिसी है हाउस होल्डर पॉलिसी, जिसे गृह पॉलिसी कहते हैं सामान्य भाषा में। इसमें आप अपने घर का, घरेलू सामान का, अपने कपड़ों का बीमा करा सकते हैं अग्नि से, चोरी से। और इसका जो सबसे उपयोगी पहलू है कि घर के अंदर, देखिए सिंह साहब, एयर कंडीशनर होते हैं, फ्रिज होते हैं, वॉशिंग मशीन होती हैं, यानी विद्युत उपकरण बहुत सारे होते हैं। और नॉर्मली क्या होता है सामान्य रूप से कि आए दिन कोई ना कोई उपकरण खराब होता रहता है उसमें।
1: बिल्कुल सही कह
0: तो
1: रहे
0: ये
1: हैं।
0: जो हमारी गृह पॉलिसी है, ये सारे जो इस तरह के विद्युत उपकरण हैं इनके ब्रेकडाउन को भी कवर करती है।
1: अच्छा,
0: हाँ, कि जैसे अगर ये
1: मतलब
0: पॉलिसी,
1: वोल्टेज फ्लक्चुएशन से
0: हाँ
1: या
0: हाँ
1: उससे
0: वोल्टेज
1: कुछ चीज।
0: फ्लक्चुएशन की वजह से, या फिर उसमें इंटरनल ब्रेकडाउन हुआ, मोटर उसके किसी ने काम करना बंद
1: या
0: कर
1: जैसे
0: दिया।
1: कई बार आकाशीय बिजली से भी
0: हाँ
1: परेशानी
0: हाँ
1: हो जाती
0: आकाशीय
1: है।
0: बिजली से, वो तो फायर इंश्योरेंस में कवर है ही। तो ये जो हाउस होल्डर पॉलिसी है, तो ये एक तरह से पैकेज है जिसमें कि कई तरह के जोखिम एक ही पॉलिसी में शामिल किए जाते हैं। इसका प्रीमियम
1: मतलब
0: भी बहुत ही नाममात्र का
1: नॉमिनल
0: है। ये
1: जी।
0: जिन पॉलिसियों की हम लोगों ने चर्चा करी है, ये सारी पॉलिसियां ऐसी हैं कि सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से
1: हाँ, एक
0: शायद आम आदमी इनका लाभ नहीं उठा पाता।
1: नॉमिनल चार्जेस पे
0: बहुत ही
1: जो है।
0: नाममात्र के प्रीमियम पे। अब जैसे हाउस होल्डर बीमे की मैं बात करूं, गृह बीमे की, तो अगर एक उदाहरण के रूप में हम ये माने कि घर के अंदर 10 लाख रुपए का सामान है, तो उसका प्रीमियम कुल मिला के 1200 1250 रुपए GST के साथ पड़ेगा
1: एक साल का
0: एक साल का, जिसमें
1: जी।
0: कि आपके घर के सारे उपकरण, आपके जो घर के कपड़े हैं कि कभी घर में आग वगैरह लग जाए या चोरी हो जाए, तो उनका घर का और सामान है, फर्नीचर है, सोफा सेट है, घर।
1: मतलब सरकार ये चाह रही है कि आप तनाव रहित रहिए, ठीक से रहिए, सुरक्षित रहिए,
0: हाँ, ये
1: और कुछ
0: उसके ही।
1: नुकसान अगर किसी कारण से हो रहा है
0: हाँ
1: तो वो भी आपका कवर है। बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत
0: जी
1: है,
0: जी
1: जो हमारे
0: और
1: बहुत कहें कि एक जोड़ी पेंट शर्ट में भी से भी कम में आ
0: हाँ, इन्वेस्टमेंट भी
1: जाएगा
0: कुछ नहीं है, क्योंकि
1: जी
0: मानसिक शांति से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है।
1: सही बात
0: और
1: कह रहे
0: अगर
1: हैं।
0: मान लीजिए 1000 2000 या 3000 रुपए खर्च करके मानसिक शांति मिल सके, सकते हैं आपको, तो मेरे हिसाब से इसका कोई विकल्प नहीं है जीवन
1: जी
0: में।
1: जी तो करा लेना चाहिए। तो ये इस तरह के चाहे नाम कुछ अलग हो, आपने कुछ नाम मेरे को लगाए जो हमारी जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनी आए, सब में सब तरह की ये पॉलिसियां
0: ज्यादातर कंपनियों के पास ये प्लान है। ये हो सकता है कि किसी

0: मैं प्लान का नाम कुछ और अलग रखा हो, किसी ने अलग नाम से योजना चलाई हो। बाकी कैंसर गार्ड पॉलिसी तो चूंकि सरकार की पहल पे लागू करी गई, इसलिए ये तो कैंसर गार्ड नाम से ही है सबके सारी कंपनियों पे, लेकिन व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट भी, वो भी सारी कंपनियों में है, तो सामान्य बीमा की पॉलिसी है ये सब।
1: इनको कराना चाहिए। तो श्रोता बंधुओं, ये कुछ ऐसी पॉलिसियां जो लाइफ इंश्योरेंस से, सामान्य बीमा से हटकर के हैं और हमारे काम की हैं, बहुत कम प्रीमियम पे हैं लेकिन उपयोगी बहुत हैं, वो आज हमने चर्चा की। और चर्चा की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री शरद श्रीवास्तव साहब। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में। शरद जी, आप आए, जानकारी दी हमारे श्रोताओं से, इतनी उपयोगी जानकारी और इतने कम खर्चे पे इतनी लाभकारी जानकारी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सिंह साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद और सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष बातचीत, विषय था सामान्य बीमा की जनोपयोगी योजनाएं। वार्ताकार थे श्री शरद श्रीवास्तव, इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है।

0: विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए, तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
1: जी,
0: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
1: जी, एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी,
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था।

0: वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
6: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की

0: पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
7: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
8: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
8: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।

0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हम सब तैयार हैं।
5: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
4: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान,
4: जिंदा रहने के आधार।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे क्या कर रहे हो?
7: मेरा मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
6: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चिपक जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी

0: मेरी जरूरतों को पूरा किया। उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
1: सुनो, आगे बढ़ो।
2: अरे कहाँ से
1: दो मिनट की बात में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
2: काटो पे। पैरों से चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हम।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
3: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
1: तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
1: ठीक है, तो चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 पर होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा। पिन कोड है 281003। सूचना समाप्त हुई। सुबह के 10:30 हो चुके हैं श्रोताओं, और आइए अब आपको फिल्म संगीत सुनवाते हैं।

जैसा आप जानते हैं, आज 19 मई को वर्ल्ड फेयर प्ले डे हर साल मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खेलों और दैनिक जीवन में ईमानदारी, समान एकजुटता और निष्पक्ष खेल की भावना को बढ़ावा देना है। तो आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे।

चक दे इंडिया। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाजें थी सुखविंदर सिंह और सलीम सुलेमान की। गीत को लिखा था जयदीप साहनी ने और धुन बनाई थी सलीम सुलेमान ने।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम था द ट्रेन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जोशीला फिल्म का गीत, गाया है किशोर कुमार ने।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना किशोर कुमार को। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम था जोशीला। अगला गीत किशोर कुमार की ही आवाज में, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं एस डी बर्मन, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता शारदा को फिल्म अराउंड द वर्ल्ड में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। दिन के 11 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी,
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे दीदी मनोज नामदेव।
0: कैसे हैं मनोज जी?
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया है दीदी, आपका आशीर्वाद है बंसी बारी कृपा से, बहुत बढ़िया है दीदी।
0: चलिए ये कृपा बनी रहे और आप आनंदित रहें। और आज क्या पसंद रहेगी, क्या सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी जी बिल्कुल दीदी, आज सुनवा मूवी का नाम है साजन।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: इसमें गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: ठीक है। हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
0: नमस्कार, परिचय दे दीजिए।
2: हाँ कैसी हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जय बजरंग रेडियो सोता तंग बस स्टैंड बंडा बिले लक्ष्मण को चाय वाले को चाय पी लो दीदी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाय पियेंगे, इलायची अच्छी से डालना, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, और चाय बना लो तो फिर उसमें थोड़ी बर्फ भी डाल देना।
2: बर्फ तो गड़बड़ हो जाएगा
0: काम। आज ठंडी चाय पियेंगे गर्मी में।
2: आम का पना पिलवा देंगे। अच्छा। आम का पना अच्छा रहता है, जैसे बेल का जूस अच्छा रहता है।
0: तो चलो आपको आपके पास में है तो हम तो आम का पना भी पी लेंगे और बेल का जूस भी पी लेंगे, जो आप पिलाओगे पी लेंगे। नहीं तो हम तो कह रहे हैं आपकी चाय में इलायची वाली में बर्फ डाल के वो भी पी लेंगे। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
2: आज सुनवा दी एक पिक्चर है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, गीत है साजन पिक्चर का।
0: ठीक है, आपने फोन किया इसके लिए धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मैं जवाहर सिंह ग्राम सहायपुर से चिकनंदोई जिला भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: फिल्म है मेरा गांव मेरा देश, उसका गाना है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: रश्मि दीदी को मेरा प्यार वाला नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आप तो दीदी बहुत दिन में बात हो रही है हमारी, आपकी दीदी।
0: हाँ, बहुत दिन बाद बात हो रही है। आप लोग याद कर
1: अरे
0: लेते हैं तो आ जाते हैं, नहीं याद करते हैं तो फिर नहीं आते हैं।
1: अरे नहीं साहब, नहीं हम तो याद दीदी बहुत करते हैं, पर लेकिन आप आती रही है, कहीं छुट्टी चली गई हो पता नहीं। हम तो ये सोचते हैं कहीं छुट्टी तो नहीं चली गई है।
0: अरे ना ना, हम कहाँ छुट्टी लेकर जाएंगे, हम तो बस आप सभी के बीच रहना चाहेंगे भाई।
1: अरे वाह साहब वाह, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके लिए।
0: जी
1: दीदी मैं आपका जाना पहचाना ब्रिजर रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ, गांव उस पार से दीदी।
0: जी जी स्वागत है कार्यक्रम में। और यादराम जी, आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: दीदी ऐसा है, देखिए अब हमारे जो है अधिक का महीना चल रहा है और
0: हाँ।
1: हमारे ब्रज क्षेत्र में परिक्रमा लग रही है, गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र में, 84 कोस में परिक्रमा करने
0: हाँ
1: श्रद्धालु आ रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए।
0: जी
1: तो दीदी अब हमारे ब्रज क्षेत्र में तो राधा और कृष्ण का ही सबसे ज्यादा महत्व है और उन्हीं के ऊपर मतलब हमारी नैया टिकी हुई है।
0: बिल्कुल।

0: जी
1: तो दीदी आप कैसी हो, हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है दीदी?
0: सब एकदम बढ़िया, आनंद मंगल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके लिए। तो दीदी हमें आप गाना सुनवा दीजिए, ब्रज क्षेत्र के आधार पर ब्रज भूमि फिल्म का ही सुनवा दीजिए।
0: चारों धामों से
1: ब्रज धाम के दर्शन
0: जी
1: कर लीजिए, आप
0: जी
1: भी करो दर्शन, मैं भी करूंगा दर्शन।
0: जी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: जी मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता में अशोक यादव बोल रहा हूँ, वरिंग से।
0: कैसे हैं अशोक जी?
1: दीदी हम तो बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसे और हमारी संपूर्ण आकाशवाणी टीम?
0: बिल्कुल सब बढ़िया, सब आनंद मंगल। गर्मी तो खूब पड़ रही है इस समय।
1: दीदी गर्मी बहुत है, अपने सभी श्रोताओं से कहते हैं कि गर्मी से अपना बचाव रखें और तरल और ठंडे पदार्थों का सेवन करें और धूप में कम से कम निकलें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये ध्यान आपको भी अपने लिए रखना है। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के।
0: कौन सा गीत?
1: मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: आदरणीय रश्मि दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया खंदौली से बोल रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है कार्यक्रम में। राजू जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी पिछले प्रोग्राम में हमसे चूक हुई थी कि हम आपसे बात नहीं कर पाए, आप आए थे प्रोग्राम में लेकिन किन्हीं कारणवश आपसे मुलाकात नहीं हो सकी फोन के माध्यम से। खैर आज सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिला है
0: जी।
1: और हम तो पहले भी कहते आए हैं और हमेशा जब तक आप कार्यक्रम में आती रहेंगी और आती रहे हैं, मैं तो ये कहेंगे
0: जी,
1: तो हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी कार्यक्रम करती हैं तब कार्यक्रम का मजा कुछ अलग और हटके ही हो जाता है।
0: ये तो आप सभी का प्यार है और आप सभी के प्यार के साथ ये कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है रोचक हो जाती है और आप सभी को सुनने में अच्छा लगता है। और बस ये आप लोगों का जो भाव है ये सदैव जुड़ा रहे और हम ऐसे ही अच्छे से कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें।
1: सही मायनों में अगर कहा जाए तो आपने श्रोताओं का दिल जीत रखा है इस कार्यक्रम को इस प्रकार से प्रस्तुत करके। इसीलिए तो आज जो गाना हम रखने वाले हैं
0: हाँ,
1: वो आवाज है महेंद्र कपूर साहब की
0: जी,
1: और फिल्म का नाम है कल की आवाज और गाने के बोल है दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आप। अब ये मेहरबानी जब दीदी की है, जब दीदी ने श्रोताओं का दिल जीत लिया है तो दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आपकी।
0: मेहरबानी आपकी भी इतना सारा प्यार देने के लिए, धन्यवाद आपका। और सुनिए
1: जी
0: पसंद का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रश्मि शर्मा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 पर होगी। प्रसारण का समय रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा। पिन कोड है 281003। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास प्रस्तुति वर्ल्ड फेयर प्ले डे पर आधारित। श्रोताओं, खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि खेल हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। खेल हमें अनुशासन, टीमवर्क, धैर्य, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण निष्पक्षता का संदेश देते हैं। इसी सोच को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड फेयर प्ले डे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीत से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से खेलना और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। फेयर प्ले का मतलब है नियमों का सम्मान करना, प्रतिद्वंदी का आदर करना, गलत तरीकों से बचना और हार जीत दोनों को सकारात्मक भावना से स्वीकार करना।

श्रोताओ, अभी आपने सुना जयदीप का लिखा गीत और सुलेमान का संगीत। आवाज़ें थीं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम था संजू। श्रोताओ, हम बात कर रहे थे खेल की। आज के दौर में प्रतियोगिता बहुत बढ़ चुकी है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो जीतने के साथ साथ इंसानियत भी बनाए रखे। जब कोई खिलाड़ी मैदान में गिरने वाले प्रतिद्वंदी को उठाता है, जब कोई टीम हारने के बाद भी मुस्कुराकर सामने वाली टीम को बधाई देता है, तब दिखाई देता है असली जीवन में खेल भावना। और खेल भावना ही नहीं, असली जिंदगी में भी आपको तरक्की उन्नति मिलने की भावना दिखाई देती है कि आप अपने जीवन का मैदान भी जीत चुके हैं।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं खेल की। खेल हमें यह भी सिखाते हैं कि हार अंत नहीं होती, हार हमें और मजबूत बनने का अवसर देती है। जीवन में भी कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। आज जरूरत है कि बच्चों और युवाओं को केवल जीतना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीतना सिखाएं, क्योंकि ट्रॉफी कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन अच्छा व्यवहार जीवन भर सम्मान दिलाता है।

कोरस में। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे फेयर प्ले केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही जरूरी है। स्कूल में ईमानदारी, कार्यालय में निष्पक्षता, समाज में समान व्यवहार और रिश्तों में विश्वास, ये सब फेयर प्ले की भावना को ही दर्शाते हैं। अगर हम अपने जीवन में निष्पक्षता को अपनाएं तो समाज और भी बेहतर बन सकता है। और अब समय हो गया है एक ऐसे गीत का जो मेहनत, संघर्ष और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओ, अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज़ में लक्ष्य फिल्म का ये गीत। आज सोशल मीडिया पर तेज प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कई बार लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन याद रखिए, सच्ची जीत वही होती है जो मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से हासिल की जाए। विश्व फेयर प्ले डे हमें यही प्रेरणा देता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सही मूल्यों को अपनाएं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। श्रोताओं, समापन से पहले सुनते हैं ऊर्जा और उत्साह से भरपूर ये अंतिम गीत। आप सुन रहे हैं सुखविंदर सिंह और सादाब फरीदी को। फिल्म का नाम है सुल्तान।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत गाने सुहाने का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

हर चीज ताजी अच्छी होती है, लेकिन सेवक, मित्र और चावल पुराने ही अच्छे होते हैं। संबंधों की यही सुंदरता है, नए सुख देते हैं और पुराने जीवन को स्थिरता और मिठास देते हैं। श्रोताओं, इसी तरह हमसे और रेडियो से संबंध बनाए रखें और जुड़े रहें। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। मैं आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष पेश करती हूँ। सबसे पहले कीजिए स्वीकार मेरा यानी दुर्गेश भास्कर का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में हमें संदेश मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नापकर निर्मला विशाल। मलकापुर से हमें संदेश लिख रहे हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष। कार्यक्रम में अगले संदेश करता है छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत। आप हैं महाराष्ट्र से राम गोंधली, वैष्णवी, उषा और युवराज गोंधली। मोताला महाराष्ट्र से हमें संदेश लिख भेजा है विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार ने। अगले संदेश करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बादवानी। मंजनू काटिल्ला से हमें संदेश लिख रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर। और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही। आप हैं संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ शौर्य, बघेरा दुर्ग से। सैयद अली हाशमी, गुलनाज, सलमा सैयद, अरहाम, मोहम्मद आलम, अजमेर शरीफ से। महाराष्ट्र से हमें संदेश लिख भेजा है भागवत डेढ़े पाटिल, लक्ष्मी देवी, समर्थ दादा, सानिका। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं गांधीनगर गुजरात से, सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा। आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी सादरा दिल्ली से तुलसी, मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान। अगले संदेश करता है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से महाराष्ट्र लिम पटेल, मुजादेह और नदीम। कार्यक्रम में अगला संदेश रेलवे रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबीरुल, बेगम शबनम, नजमा बेगम, भाभी सरिता। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अपना देश। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है आर डी बर्मन ने।

इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से। इसी गीत को सुनना चाहा था जुनेद मुजावर सबीहा मिखाइल जैनेव ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है दीवाना रेडियो लिस्नर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति गमरिया जमशेदपुर से विपिन स्वाति देव कुमार आर्य कुमार। आप हैं शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से कमला देवी अनाया महोबिया भयू बेबी लुसियान। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं चंडीगढ़ से सतीश जनेजा बिमला। बेंगलुरु से हमें संदेश लिखा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंद्रु संस्कृति और पौरुष। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े का संदेश मिला। फैसल इमाम मोहम्मद अफजल अकलम नफीसा प्रवीण

जोहानुल हुदा बिहार से। नई दिल्ली से हमें संदेश लिखा है साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह और मीता ने। आप है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी। सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण यादव छत्तीसगढ़ से। अगले संदेश करता है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव, अनीता और रमेश राव का संदेश मिला। झज्जर हरियाणा से रिट्टू भाटिया, बिट्टू का संदेश। कमल बालूजा मधु सागर, मंजनू कटिल्ला से। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही का संदेश मिला। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत, बसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता और पूनम। और आइए आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का ये कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है कामचोर।

इस गीत को सुनना चाहा था। धनौली तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयन बाबू ने इसी गीत की हमसे फरमाइश लिख भेजी थी। राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता, रवि, गौरव और इनके मित्रगण। छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार, सज्जीत, सर्वजीत, सुधांशु कुमार गुप्ता। अगले संदेश करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आप हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम, कोमल, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री। मास्टर विठल सुरो से सुषमा, परिधि, मायरा हमें लिख रहे हैं महाराष्ट्र से। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं कार्यक्रम में, मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्था मोहम्मद, पलक लोबना और यश। बंडिंग खेड़ा पंजाब से मिट्टू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का संदेश मिला। आप हैं राजनगर कांति निकेतन से कांति गुप्ता, कुशेश्वर, रुद्र कोमल, ऐशबाग बहादुर, लखनऊ से रानी गुप्ता, मुकेश और रश्मि नीलम। आप हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति, संजय कुमार। समस्ती बिहार से हमें संदेश लिख भेजे हैं कारी राय, कारी मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षक और जयश्री। आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी, अंकित कांगड़ा, रोहतक से। प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज ऋषि, कृष्णा घोड़ के पंडरपुर सिटी से। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं कार्यक्रम में, नरहन स्टेट से फुटानी चौक, ललन मिश्रा, नूतन, अमन, पारासर, बीबी आराध्या और लल्लू पंडित। पंजाब से हमें संदेश लिखा है लाल लचोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप ही की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज है गुलाम अली की, फिल्म का नाम है निकाह, शब्द रचना हसन कमल की है और इस गीत को संगीत से संवारा है रवि ने।

सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा ओ जाने जिगर। दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं, तेरा पीछा ना ना छोड़ू।

0: बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊ तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस को संपन्न करने की दुर्गेश भास्कर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। उससे पहले सुन लेते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट की अवधि के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। किसान भाइयों, खरीफ फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे गर्मियों में जुताई, उन्नत किस्मों के बीज, खाद की मात्रा एवं मिट्टी पानी की जांच आदि विषयों पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर अमर सिंह से। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम 6:15 से शाम 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं रमेश दयाल। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का पहला गीत इन्हीं के स्वर में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन से केंद्र। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीतों का। आज के कलाकार हैं रमेश रावत। और आइए आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रजलोक गीत रमेश रावत के स्वर में।

इस समय आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं रमेश रावत। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोकगीत रमेश रावत के ही स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार थे रमेश रावत। इसी गीत के साथ ब्रजलोक गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा जल संरक्षण के प्रभावी तरीके विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी महिला सशक्तिकरण विषय पर। इसी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी आरोग्य वार्ता, सर्वाइकल पेन कारण लक्षण और बचाव। वार्ताकार होंगे देवदत्त शर्मा और इनसे बातचीत करेंगी उषा पांडे। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा अपराह्न 1:45 पर और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत होगा अपराह्न 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात होगी नीलम संजीव रेड्डी जयंती विषय पर। इसके अलावा आज की बात होगी विश्व खेल मेला दिवस पर। इसके अलावा एक और बार आज की बात आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विशेष वार्ता भारत की जनगणना। वार्ताकार होंगे राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा से होगी ओपी सिंह की बातचीत।

फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का समय रहेगा संध्या 6:15 पर। आज का हेलो किसान वाणी कार्यक्रम होगा खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी विषय पर। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अमर सिंह। संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर। और ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भक्त कथा मणिदास माली की। कथाकार होंगे रमेश चंद्र। समय रहेगा संध्या 7:05 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे संध्या 7:31 पर। हमारे श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का रात्रि 8:00 और कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम News@9 का समय रहेगा रात्रि 9:00 और चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम मनी टॉक सुना जा सकेगा रात्रि 9:30 पर। और कार्यक्रम मंथन का समय रहेगा रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण का समय रहेगा रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आज के कलाकार होंगे वीजी जोग का वायलन।

वादन राग होगा जय जय बंती। इसके अलावा कलाकार होंगे मोहित कुमार का गिटार वादन राग होगा धुन पहाड़ी। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनिएगा समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मीनू अग्रवाल।

जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां तक FM 102.2 MHz पर वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को मीनू अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नारी शक्ति की। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में एकमात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्वों को संभालो, केवल एक ही दिन नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। यदि हम इन पंक्तियों को ठीक से समझें तो इनमें कितनी सच्चाई और विश्वास है। वास्तव में नारी के बिना किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो नारी वो शक्ति है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और बात करें महिला सशक्तिकरण की तो इसे बहुत सी आसान शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। इससे महिलाओं को शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं, परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं, समाज में उनके वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। पहले की बात करें तो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें ना जाने कब कैसे कहां किसी न किसी कारण से परेशान किया जाता रहा है। फिर भी उसने हार नहीं मानी, घर हो या बाहर या हो ससुराल, जितना हो सका उसने सभी अत्याचार व परेशानियों का सामना डटकर किया, क्योंकि धीरे धीरे उसे अपने अंदर की शक्ति समझ में आने लगी कि अब वो अपने ऊपर कोई भी हिंसा अपमान या अत्याचार सहन नहीं करेगी। वो सशक्त के साथ साथ शिक्षित भी हो रही है। जैसे कि पहले के समय में पुरानी सोच वाले लोग महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखते थे, उनका मानना था कि शादी के बाद उन्हें चूल्हा चौका या घर परिवार ही संभालना है। लेकिन अब हर एक नारी शिक्षित होना चाहती है। देखा जाए तो शिक्षा उनके लिए धीरे धीरे एक ऐसा हथियार बनी जिसने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई। दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत व लगन से सराहनीय कार्य को करके राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक सशक्त महिला पुरुष प्रधान समाज में भारत की नींव और मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही है, जो सच में काबिले तारीफ है। सही कहा गया है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का सशक्त और जागृत दोनों होना जरूरी है। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुरानी प्रथाओं को पूरी तरह से हटाकर आगे बढ़ना होगा, जिससे हमारा समाज भी आगे बढ़ सकेगा। कहते हैं मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिए, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
0: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
0: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
0: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, और यही धन यानी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिनका इलाज टाइम पर ना किया

0: जाए तो ये हमारे लिए घातक हो सकती हैं। इनमें से एक बीमारी जो आजकल ज़्यादातर सभी में देखने को मिल रही है वो है सर्वाइकल पेन। अब बात आती है ये बीमारी किस कारण से होती है, इसके लक्षण और बचाव क्या क्या होते हैं, तो इसकी अधिक जानकारी हमें देंगे डॉक्टर देवदत्त शर्मा आरोग्य क्रम में इस वार्ता के माध्यम से, और इनसे भेंट कर रही हैं उषा पांडे।
1: भागदौड़ भरी जिंदगी का फसाना कुछ यूं हुआ, हम रहे न हम दर्द का तराना बन गया। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास श्रोताओं इतना भी समय नहीं है कि वो अपना ख्याल रख सकें। भागदौड़ भरी जिंदगी में हासिल तो सब कुछ हो जाता है मगर कुछ पीछे छूट जाता है और वो है हमारा स्वास्थ्य। पहले तो छोटी मोटी चीज़ें लगी ही रहती थीं, जैसे घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल पेन है, लेकिन अब वो इतना बड़ा रूप ले रही हैं कि व्यक्ति परेशान हो चुका है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में कि ये सर्वाइकल पेन क्या है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि सर्वाइकल पेन लक्षण, कारण और उपाय, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर देवदत्त शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे
2: जी
1: कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार मैम
1: डॉक्टर साहब,
2: जी।
1: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह से आजकल लोग अच्छे खासे परेशान हैं, हमारी यूथ भी परेशान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी परेशान हैं सर्वाइकल पेन के कारण। तो ये सर्वाइकल पेन है क्या?
2: जी मैम, सर्वाइकल पेन आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है। ये
1: जी
2: आजकल बच्चों में या बूढ़ों में, नई जेनरेशन पुरानी जेनरेशन दोनों में ही ये देखने को मिल रहा है। तो आजकल क्या है, ये सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो इस पर अगर अब बात करें तो इसकी परेशानियाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, सिर में चक्कर आना, गर्दन दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, ये सारी परेशानियाँ इस सर्वाइकल पेन में आ रही हैं। और ये आजकल शहर में से गांव में भी पहुंच रही है,
1: जी
2: गांव से और जवान से बूढ़ों में और बूढ़ों से बच्चों तक सब जगह मिल रही है ये।
1: ये तो डॉक्टर साहब लक्षण हुआ, चक्कर आना
2: जी
1: और गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, नसों में दर्द, इस तरह का। लेकिन ये है क्या, ये इसके पीछे कारण क्या है, ये है क्या?
2: सर्वाइकल पेन की समस्या हड्डियों के दर्द से जुड़ी होती है,
1: जी
2: जिसमें गर्दन में दर्द या कंधे में दर्द होता है, जो हमारी गर्दन की वर्टीब्रा या घुटके बोल सकते हैं, उनमें बदलाव आ रहा है, उनमें बदलाव आ रहा है। और वो आ रहा है जैसे कि पोस्चर के लिए, पोस्चर आजकल लोगों का खराब हो चुका है। तो पोस्चर में जैसे कि मोबाइल सबसे इसमें मेन कारण मान सकते हैं।
1: पॉस्चर का मतलब डॉक्टर साहब?
2: पोस्चर का मतलब हो गया बॉडी को गलत तरीके में झुका के
1: मूवमेंट।
2: बैठना, गर्दन
1: जी
2: को ज्यादा झुका के आगे को बैठना और बहुत लंबे समय तक उसमें मोबाइल, जैसे मोबाइल चलाना या गर्दन झुका के लैपटॉप पे काम करना, तो उस वजह से जो हमारे घुटके हैं गर्दन के, उसमें बदलाव आ रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर वो ऐसा समझ लीजिए वो घिस रहे हैं या उनका पोस्चर चेंज हो रहा है। तो ये है मैम।
1: बैठने का तरीका यानी
2: हाँ
1: सही होना
2: जी
1: चाहिए।
2: हाँ, बैठने का तरीका बदल चुका है लोगों का, वो सही होना चाहिए। ये
1: और कोई कारण डॉक्टर साहब?
2: और इसमें मेन अब ये चल रहा है विटामिन D3 और एक कैल्शियम, दोनों ही लोगों में, बच्चों में या बूढ़ों में कम मिल रहा है, क्योंकि दूध की जगह लोग चाय का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। अब महिलाओं से मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे क्लिनिक पे आती हैं तो मैं पूछता हूँ क्या आप
1: जी
2: दूध पीती हैं, तो वो सीधे मना करती हैं, डॉक्टर साहब हमें पसंद नहीं है दूध, हमने पिया ही नहीं है शुरू से। तो क्या है आजकल ये दूध जो है, 1 गिलास डेली, बड़े बूढ़े बच्चों सबको 1 गिलास दूध तो लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम कम होगा, गर्दन या हड्डियों में कमजोरी आएगी, हड्डी में कमजोरी आने से गर्दन के जो पोस्चर होते हैं वो जल्दी चेंज हो जाते हैं, घिसावट आ जाती है, सर्वाइकल पेन के रूप में ये आगे बढ़ रहा है। जी मैम
1: भारी वजन के कारण भी कुछ दिक्कत
2: हाँ
1: आ सकती है।
2: हाँ एक कारण भारी वजन रखने से भी ये बढ़ रहा है, जैसे गांव में चारा बहुत ज़्यादा एक वेट के साथ में रख लेते हैं सिर पे, तो गांव में भी समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं इस पेन की। और ये मोबाइल वैसे मेन है इसका, मोबाइल पे ज़्यादा लोग फोकस दे रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं।

0: उनको काफी रोका जा रहा है, पर वो एक लत लग गई है मोबाइल की, तो वो दो दो तीन तीन घंटे लगातार गर्दन को झुका के फोन चला रहे हैं, उससे परेशानी ज्यादा आ रही है।
1: डॉक्टर साहब, चक्कर तो आता ही है इसमें, क्या उबकाई भी आती है?
0: हाँ, चक्कर के साथ उबकाई भी आ सकती है और दर्द तो रहता ही है। दर्द, गर्दन भारी रह सकती है, सिर भारी रह सकता है, आंखें भारी रह सकती हैं, इसमें आंखों से पानी भी आ सकता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं इस सर्वाइकल पेन की। मैम
1: शुरुआती पहचान क्या है डॉक्टर साहब, जब ये
0: जी,
1: कैसे पहचाने हम?
0: सर्वाइकल पेन को पहचानने के लिए गर्दन में दर्द अगर आपको हो रहा है, फर्स्ट स्टेज पे दर्द होगा, फिर सेकंड स्टेज पे आपको सिर भारी रहेगा, चक्कर आ सकते हैं, हाथ सुन्न रह सकते हैं, कंधों में जकड़न आ सकती है, गर्दन में जकड़न आ सकती है, ये शुरुआती सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं।
1: ये सिम्टम्स कितने दिन में नजर आते हैं, जैसे गर्दन से हाथ तक आना दर्द का, और उसके बाद चक्कर आना या उबकाई आना, आपने कहा कि आंखों में भी दर्द और जलन की शिकायत हो सकती है, तो ये सिम्टम्स एक साथ तो आते नहीं है डॉक्टर साहब, धीरे धीरे ही आते होंगे, तो लगभग कितने दिन में ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है?
0: ये मैम 1 महीने के अंदर में आ सकता है। अगर आपको 1 महीने बराबर पेन बन रहा है तो जकड़न और बढ़ती जाती है। अगर किसी जॉइंट में दर्द अगर 1 महीने हुआ है तो वहाँ की मांसपेशियाँ कमजोर होंगी, फिर जो स्टेज है उसकी और आगे बढ़ेगी, तो 1 महीने के बाद आपको ऐसा हो सकता है कि आपके कंधे भी जाम होना शुरू हो जाएं। कंधे जाम होंगे, उसके बाद नीचे हाथों में सुन्नपन भी आपको 2 महीने में आ सकता है। तो 1 से 2 महीने के सिम्टम्स में आप इसे पहचान सकते हैं कि आपकी परेशानी बढ़ रही है। जी
1: और
0: मैम,
1: धीरे धीरे क्या डॉक्टर साहब ये पैरों की तरफ भी जाता है, कमर और पैर की तरफ भी जाता है?
0: कमर की तरफ नहीं जाएगा ये, आपको गर्दन से सिर्फ हाथों में, और कमर की परेशानी अलग होती है, उसे लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन बोल सकते हैं, वो अलग है, होता गर्दन की जैसा ही है। जैसे गर्दन में बदलाव आते हैं, ऐसे ही कमर में भी बदलाव आते हैं, उसकी वजह से पैरों में आपका, कमर की वजह से जा सकता है, गर्दन से हाथों में ही आपको आएगा या कंधों में आएगा, ये हो सकता है, या आधी पीठ में आपको महसूस हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल के समय में खान पान बहुत गलत हो गया है,
0: जी
1: सही समय पे अच्छा खान पान नहीं ले रहा है, दिनचर्या उसकी बिगड़ी हुई है, क्या ये भी कारण हो सकता है?
0: जी मैम, ये भी कारण है, खान पान में बदलाव, समय से खाना ना खाना, गलत समय पर खाना खाना, तो स्ट्रेस लेना, ये सब सिम्टम्स आपके सर्वाइकल पेन को बढ़ा सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं, आपके पोस्चर को या फिर आपके जो पेन को आगे बढ़ा सकते हैं ये। जी
1: रात को सोते समय कहते हैं कि सर्वाइकल पेन अगर हो या
0: जी
1: ऐसी कोई समस्या हो या लक्षण दिखाई देता हो तो डॉक्टर तकिया लगाने को मना कर देते हैं और सोने का जो पोस्चर है वो चेंज कर देते हैं, तो डॉक्टर साहब इसके
0: जी
1: बारे में बताएं।
0: सर्वाइकल पेन में बहुत ही पतला फोम का तकिया लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएं, अगर आप सीधा लेटे हुए हैं तो तकिया नहीं लगाएं तो ठीक है, चलेगा। बाकी का करवट लेते हैं तो आप एक टावल रख सकते हैं हाथ के नीचे, हाथ को मोड़ के उसके ऊपर टावल रख के सो सकते हैं। अगर आपको हाथ में पेन आ रहा है तो आपको वो वाला हाथ नहीं लगाना जिसमें पेन आ रहा है, अगर आप बदल के दूसरा हाथ यूज करें और उसके सहारे सो सकते हैं। और सीधा किसी को लेटना है, अगर तकिया लगाना ही है तो एक टावल को रोल बना के गर्दन के नीचे लगा के सोएं, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा।
1: यानी जिस हाथ में परेशानी है
0: जी
1: उस हाथ से अपोजिट साइड में, अगर दाएं में परेशानी है तो बाएं
0: बाएं,
1: साइड से सोएं,
0: जी जी जी बाएं से सोएं,
1: दाएं पे प्रेशर ना
0: दाएं पे
1: डालें।
0: प्रेशर न जाए, जिस हाथ में आपको दर्द है तो उस हाथ को ना लगाएं।
1: डॉक्टर साहब, हमने आपसे जाना कि किस कारण से ये होता है और इसके लक्षणों के बारे में जाना, अब हम आपसे जानना चाहेंगे इसके उपाय के बारे में कि जब हमें पता चले तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
0: अगर आपको सर्वाइकल पेन जैसा फील हो रहा है, सर्वाइकल पेन लग रहा है, तो सबसे पहले अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट या जनरल फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर को सजेस्ट करें, जाके मिलें उनसे, बताएं अपने पेन के बारे में, तो वो कुछ पेन किलर मेडिसिन भी इसमें आप ले सकते हैं, या फिर आप फिजियोथेरेपी के कुछ सेशंस आप शुरुआत में ले लेंगे तो ये आपका लंबा बीमारी नहीं रहेगी, ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और जल्दी आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी

0: में मसल्स को रिलीज किया जाता है, जो जॉइंट की स्टिफनेस को कम किया जाता है, आपकी गर्दन की जो मोबिलिटी जकड़न रुकी हुई है उसे बढ़ाया जाता है। तो आप सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी जाके भी आप इसको दिखा सकते हैं जी
1: डॉक्टर
0: मैम।
1: साहब, फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज बताई जाती है और कराई जाती है?
0: हाँ जी मैम, अगर जिनको सिर्फ जकड़न और हल्का वल्का सर्वाइकल पेन स्टार्ट हुआ है तो वो सर्वाइकल एक्सरसाइज से ही रुक जाता है, बाकी का जिनको स्वेलिंग आ गई है या वर्टिब्रल चेंजेज आ गए हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो वहाँ हम मशीनों का इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज करके उस स्वेलिंग को इन्फ्लामेशन को हम कम करते हैं और साथ में सर्वाइकल ट्रैक्शन भी देते हैं। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो वहाँ पर एक गर्दन का खिंचाव होता है जो

0: चक्कर आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक गर्दन का खिंचाव होता है जो फिजियोथेरेपी सेंटरों पे मिलता है, सर्वाइकल ट्रैक्शन, तो उससे हम उन चक्करों को रोकते हैं और मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, गर्दन की मोबिलिटी को बढ़ाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए?
0: दिन में 2 बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, 2 से 3 बार। बाकी का जैसे कंधे उठाना या शोल्डर के मूवमेंट हैं, वो तो आप दिन में 3-4 बार जब भी याद आ जाए तब भी आप कहीं ऑफिस में या कहीं बैठे हों वहाँ भी कर सकते हैं।
1: इसका खाली पेट करने से कोई वो नहीं है
0: नहीं,
1: संबंध?
0: सर्वाइकल की एक्सरसाइजों को खाली पेट या भरे पेट से कोई दिक्कत नहीं है।
1: इसके लगभग कितने स्टेप होते हैं डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के?
0: 10-10 के रिपीटेशन आपको स्टार्टिंग से शुरू करने चाहिए, बाकी का 20-40 तक आप बढ़ा सकते हैं।
1: योगा किस हद तक कारगर है इसमें?
0: योगा आपको जैसे सर्वाइकल पेन स्टार्टिंग है तो योगा भी आप कर सकते हैं, इसमें गर्दन की स्ट्रेचिंग्स होती हैं योगा में, भुजंगासन होता है, चक्रासन होता है, ये आसन आपको सर्वाइकल पेन में रिलीफ दे देंगे स्टार्टिंग से ही।
1: डॉक्टर साहब, वॉक कर सकते हैं? वॉक से आराम मिलेगा?
0: हाँ, वॉक भी जरूरी है, वॉक करना पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद है क्योंकि आपकी बॉडी की मोबिलिटी को बढ़ाता है, जो स्टिफनेस को कम करता है, तो वॉक तो जरूरी है, वॉक आप कर सकते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल पेन 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड पे चल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, स्टिफनेस है, तो वहाँ पे वॉक करना ठीक नहीं है, वो थोड़े समय बाद अपना फिजियोथेरेपी सेशन लेने के या डॉक्टर को दिखाने के बाद चालू कर सकते हैं वॉक को।
1: सिकाई के बारे में बताया गया है डॉक्टर साहब, सिकाई ठंडा गर्म कैसी करनी चाहिए?
0: इसमें स्वेलिंग अगर बहुत पुरानी है तो इसमें आपको गर्म सिकाई ही फायदा करेगी क्योंकि गर्म सिकाई हमेशा जकड़न अकड़न को दूर करती है मांसपेशियों की, और जो ठंडी सिकाई हमें स्टार्टिंग में क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, बहुत इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग हुई है किसी चोट से, या तो वहाँ हमें बर्फ़ की सिकाई कर लेनी चाहिए।
1: सिकाई कितनी बार कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
0: सिकाई 1 बार में 10 मिनट की और उसके बाद दिन में 2 या 3 बार।
1: डॉक्टर साहब, मसाज के बारे में जानकारी दें कि मसाज का किस हद तक कारगर है इसमें मसाज?
0: मसाज इसमें हल्के हाथ से आप मसाज दे सकते हैं, कोई भी दर्द का तेल या तिली का तेल आप यूज करके इसमें मसाज दे सकते हैं, मांसपेशियों को रिलीज कर सकते हैं इसमें।
1: दिनचर्या कैसी होनी चाहिए डॉक्टर साहब, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि दिनचर्या बिगड़ने से इस तरह की परेशानी आ सकती है?
0: दिनचर्या हमारी सुबह जल्दी जगने से और शाम को जल्दी सोने तक ठीक रहती है, सुबह 5 बजे जगना और रात को 9 से 10 बजे सोना, और दिन में अपना टाइम से लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, ये सब टाइमिंग होनी चाहिए इसमें। ये नहीं है कि आप 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो और शाम को 4 बजे खा रहे हो, तो इससे भी बॉडी पे इफेक्ट आता है।
1: जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस बहुत आजकल व्यक्ति लेता है, तो स्ट्रेस का भी क्या इसमें रोल है
0: जी,
1: कुछ?
0: स्ट्रेस की वजह से भी आपका सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो सकता है।
1: एक तो कहा जाता है कि कम नींद लेने पर परेशानी होती है, लेकिन इसके बारे में ऐसा सुना गया है कि ज्यादा आराम करने से भी इस तरह की समस्या हो सकती है, ये बात सही है डॉक्टर साहब?
0: सामान्य बॉडी को एक 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा अगर आप लेट रहे हो या गलत पोस्चर में लेट रहे हो तो वो नुकसान करता ही है। अगर आपको कम नींद आ रही है वो भी नुकसान करता है, और ज़्यादा आप नींद ले रहे हो वो भी नुकसान करेगा आपको।
1: खान पान कैसा होना चाहिए ऐसे में?
0: खान पान में मैम देखो, हेल्दी फूड जैसे कि हो गए आजकल फलों का जो सीजन चल रहा है, ये सारे फल लेने
1: मौसम के
0: चाहिए।
1: अनुसार
0: हाँ,
1: फल?
0: मौसम के अनुसार जो भी फल चलते हैं वो सारे फल लेने चाहिए, और दही और दूध का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को, सभी को, और साथ ही साथ ये हेल्दी डाइट, गर्म भोजन, ताज़ा भोजन करना चाहिए, ना कि बासी भोजन करना चाहिए।
1: पानी
0: ये
1: का ज्यादा से ज्यादा
0: पानी का
1: प्रयोग करना
0: ज़्यादा सेवन,
1: चाहिए
0: कम से कम 3 से 4 लीटर हर व्यक्ति को पानी पीना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब। सर्वाइकल पेन के बारे में आपने जानकारी दी कि किस तरह से, किन कारणों से ये होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और आपने इसके जो बचाव हैं उसके बारे में बताया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने आरोग्य क्रम में सुनी भेंट वार्ता, सर्वाइकल पेन कारण लक्षण और बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवदत्त शर्मा और इनसे भेंट कर रही थी उषा पांडे। अब बात करते हैं अपनी दूसरी चर्चा की। अंजलि जैसे ही बाजार से आई सीधी फ्रिज की तरफ गई, क्योंकि उस

जोरों की प्याजो लगी थी। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, सारी बोतलें खाली पड़ी थी और किचन में भी एक बूंद पानी नहीं था। उसे जरूरी काम से जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी में पानी भरना ही भूल गई। प्यास के कारण उसका बुरा हाल था। वो थोड़ा सा पानी पड़ोस से ले आई, तब जाकर उसे चैन मिला। अब सोचिए, थोड़ी सी देर में पानी नहीं मिला तो अंजलि की हालत कैसी हो गई? और यदि आने वाले कल के लिए हमने पानी को नहीं बचाया या संरक्षण नहीं किया, तो हम सभी एक-एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। इतना सब जानते हुए, समझते हुए भी हम पानी को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पानी का संरक्षण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का केवल 3% हिस्सा ही पीने योग्य और मीठा है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योग और जलवायु परिवर्तन के कारण शुद्ध जल की भारी कमी हो रही है। जीवन का अस्तित्व बचाने के लिए जल का संरक्षण करें। जैसे कि छोटी छोटी जल की बचत से हम पानी को काफी हद तक बचा सकते हैं। जैसे छत के बारिश के पानी को पाइप के द्वारा भूमिगत टैंकों या गड्ढों में इकट्ठा करके सबसे अच्छा उपाय है। इससे न केवल पानी का भंडारण होता है, बल्कि भूजल का स्तर भी बढ़ता है। और जब जल संरक्षण से घर से भी किया जा सकता है, जैसे कि हम कपड़े या बर्तन धो रहे हों तो उतना ही पानी लें जितनी ज़रूरत है। फालतू का नल या नल चलाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हम घर की साफ सफाई करते समय या गाड़ी धोते समय, शेविंग आदि करते समय नल यूं ही बहने देते हैं, जिससे बहुत ही पानी व्यर्थ चला जाता है। और अब तो घरों में आरओ भी लगा होता है, जिससे पानी का 75% भाग बेकार चला जाता है। तो कोशिश करें कि जो पानी पाइप से निकल रहा है, आरओ का बेकार जा रहा है, वह बर्बाद ना हो, उसे पौधे या साफ सफाई के काम में ले सकते हैं। इस प्रकार और भी बहुत से तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। कहते हैं जल है तो कल है, तो इस आने वाले कल को पानी बचाकर अच्छा और सुरक्षित बनाएं। तो बहनों, ये तो थी हमारी चर्चा। अब जैसे कि गर्मियां चल रही हैं और इन गर्मियों में अपना बचाव करना भी बहुत जरूरी होता है, तो मैं कुछ ऐसे फेस पैक आपको बता रही हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। अब जैसे कि तरबूज तो खूब चल रहा है इस समय, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कटोरे में आधा कप तरबूजे का गूदा लें, इसमें एक चम्मच दही मिलाकर फेस पैक बना लें और इसे आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाएं। बाद में ठंडे पानी से धो लें, ये स्किन को तो ठंडा रखेगा ही, साथ में आपके चेहरे पे दाग धब्बे या मुहांसे भी हो रहे होंगे तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अब बात करें खीरे की, खीरा भी खूब आ रहा है इस समय, तो आपको क्या करना है, एक खीरे का गाढ़ा जूस बनाकर उसमें 3 छोटे चम्मच व एक चम 3 छोटे चम्मच चीनी और 1 चम्मच दही मिलाकर इसमें थोड़ी देर के लिए चेहरे पर मसाज करें, फिर इसे सूखने दें। 15 मिनट बाद इस फेस पैक को धीरे धीरे हटाकर ठंडे पानी से धो लें, मतलब नॉर्मल पानी से धो लें, तो आपके चेहरे में देखना अलग ही ग्लो आएगा। चंदन पैक, चंदन पाउडर में गुलाब जल मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं, सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। ये पैक ठंडक पहुंचाने के साथ साथ रंग भी निखारता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको इस गर्मी में बहुत राहत देंगे। तो अब चलते चलते मैं बस यही कहना चाहूंगी, मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो इन्हीं कुछ लाइनों के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मीनू अग्रवाल। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते।

आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को। फिल्म का नाम है गिरफ्तार। शब्द रचना इंदिवर की है और इस गीत को धुन से संवारा है वप्पी लहरी ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत है और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं।

0: सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.17 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी

0: तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी।

0: इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। किसान भाइयों, खरीफ फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, जैसे गर्मियों में जुताई, उन्नत किस्मों के बीज, खाद की मात्रा एवं मिट्टी पानी की जांच आदि विषयों पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह। हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412255975 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर अमर सिंह से। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम 6:15 से शाम 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर, आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड है 281003। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है तीसरी कसम। तीसरी कसम शब्द रचना शैलेंद्र की है और इस गीत को धुन से संवारा है RD बर्मन ने।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मोहब्बत से। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। इस गीत को लिखा है समीर ने और इस गीत को धुन से संवारा है रीमा राकेश नाथ ने।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे। आवाजें हैं अमीन सबरी और फरीद सबरी की। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों के फिल्म संगीत का सफर अब होता है यहीं पर संपन्न। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज भारत के छठे राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की जयंती है। ये जयंती हर साल 19 मई को मनाई जाती है। 1913 में जन्मे वे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति और एकमात्र ऐसे नेता थे जो निर्विरोध चुने गए। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को हुआ था और उनका निधन 1 जून 1996 को हुआ। भारतीय राजनीति के एक दिग्गज और अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश के विकास के वे प्रबल समर्थक थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के अनंत

जिले के इल्लूर गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, के आर्ट्स कॉलेज से पूरी की। युवावस्था में ही वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और जेल भी गए। आजादी के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों की शोभा बढ़ाई। 1956 में राज्य के गठन के बाद वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। वे दो बार 1967 और 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। महाराष्ट्र के राष्ट्रपति उन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी अपने निष्पक्ष, साहसी और शुचितापूर्ण राजनीतिक जीवन के लिए जाने जाते थे। एक अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आजीवन समर्पित रहे। उनकी जयंती के अवसर पर हर वर्ष देश के शीर्ष नेतृत्व जैसे भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष उन्हें संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में पुष्पांजलि अर्पित कर याद करते हैं। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के शानदार राजनीतिक सफर और उनके योगदान के बारे में बहुत अधिक क्या कहा जाए। वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ समर्पित किया।

0: और युवा साथियों, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं विशेष वार्ता भारत की जनगणना। विशेषज्ञ हैं राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा, और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार को कैसे पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कहाँ अस्पताल की आवश्यकता है, कहाँ सड़क की जरूरत है? तो इसका जवाब है जनगणना, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के हर व्यक्ति से विभिन्न तरह की जानकारियां जुटाई जाती हैं और ये जानकारियां योजनाएं बनाने में, देश के विकास में काफी सहायता करती हैं। और उत्तर प्रदेश में आगामी 22 मई से जनगणना शुरू हो रही है। आज इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं मथुरा क्षेत्र के जनगणना के नोडल अधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार त्यागी जी, और आपसे बात कर रहे हैं ओपी सिंह।
2: सर, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी मथुरा के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: तो ये जो कार्यक्रम हम जनगणना 2027 करने जा रहे हैं और डिजिटली ये पहली बार हो रहा है और ये काम लगभग शुरू भी हो चुका है कि सेल्फ नॉमिनेशन करके व्यक्ति कर सकता है, तो यहीं से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के पूरी उसके पीछे का जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है उसके कुछ उद्देश्यों पर आप प्रकाश डालें, और एक व्यक्ति को पहली बार डिजिटली जोड़ा गया है तो कैसे इसमें अपनी सहभागिता निभा सकता है, कैसे जुड़ सकता है, इस पर भी
3: बिल्कुल मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिसकी जनगणना जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और हमारी जनगणना के जो कार्य को दुनिया में एक बहुत बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक माना जाता है। इलेक्शन के कार्य रहते हैं लेकिन जनगणना का भी कार्य जो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होता है, ये 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई थी और ये जो अब हो रही है जनगणना 2027 ये 16वीं है और आजादी के पश्चात ये 8वीं है, और इससे पहले 2011 में हुई थी, 2011 के पश्चात 10 वर्ष पश्चात 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई थी, अब ये 2027 में हो रही है। जनगणना का इसलिए बहुत महत्व है कि ये हमारी बहुत विश्वसनीय मानी जाती है, इसके जो आंकड़े हैं चाहे मनुष्य से संबंधित हैं, प्रत्येक मनुष्य की इसमें गणना होती है, साथ साथ जो उनकी स्थिति है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, उनके मकानों की, मकानों में क्या स्थिति है, उन सब के जो आंकड़े हैं

0: वो हमारे देश के योजनाकारों को हमारे जो प्लानिंग होती है उसके लिए कहाँ कहाँ किस प्रकार हमको आगे प्लानिंग करनी है, शौचालयों की क्या स्थिति है, पानी पीने की क्या सप्लाई की स्थिति है, जो नालियों की स्थिति है वो क्या है, या जो शैक्षिक स्थिति है वो क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, बूढ़ों की स्थिति क्या है, इतने अच्छे आंकड़े इससे प्राप्त होते हैं। चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं चाहे प्राइवेट संस्था हैं, सबको इनके आंकड़े की बहुत अच्छी आवश्यकता रहती है,
1: जरूरत है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो लक्ष्य रखा है कि 2047 जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाए और जब हम एक विकसित राष्ट्र के तौर पे देखे जाएं, समझे जाएं, जाने जाएं या माने जाएं, तो उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों का भी बड़ा योगदान होगा।
0: बिल्कुल, इनका योगदान ये है कि एक तरह से ये गणना है, जनगणना, तो इसमें जो गणना होती है उसके आंकड़ों का बहुत महत्व है। और हमारी जो जनगणना है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी, उसके आंकड़े बड़े विश्वसनीय माने जाते हैं। इस बार ये थोड़ा सा हुआ है कि डिजिटली ये जनगणना होगी और इसमें जैसे प्रत्येक एरिया है, एक जोन बनाए गए हैं, उसके चार्ज अधिकारी होते हैं, उसमें ब्लॉक बनाए गए, वो तो जो एक ब्लॉक बनाए गए हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, मकान सूचीकरण ब्लॉक, तो वो लगभग 150 से 190 के लगभग उसमें मकान रखे गए हैं। जनगणना वास्तव में मकानों की गणना है, उसके स्वामित्व का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे कोई भी आदमी अपने मकान में भी रह सकता है, किराए के में भी रह सकता है, कैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन उसकी मकानों की हमको गणना करनी होती है और मकान में जो भी निवास कर रहे हैं मनुष्य उनकी गणना करनी होती है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, या जो भी स्थिति है। तो एक परिवार की का एक माना जाता है, और परिवार का मतलब है एक किचन, एक रसोई, एक रसोई जिसमें जो परिवार के लोग खाना खाते हैं, तो अगर एक से अधिक रसोई है तो दो परिवार माने जाते हैं। जो प्रगणक हैं वो 22 मई से आपके यहाँ पे आएंगे और वो आपको बताएंगे, उसमें 33 प्रश्न हैं, ये ऑनलाइन ही होगी, जो मोबाइल ऐप में वो भरा जाएगा, वो आपको दिखाएंगे जो आएंगे प्रगणक। अगर आप सेल्फ एनुमरेशन करना चाहते हैं, स्वयं गणना करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है, गणना है, मकानों की स्थिति क्या है, ये उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, ना उसमें आपका स्वामित्व पूछा जाता है, मालिकाना हक पूछा जाता है, किसका है, कैसा है, वो नहीं पूछा जाता। उसमें बस ये पूछा जाता है कि मकान की छत कैसी बनी है, पक्की है, कच्ची है, फर्श कैसा है, फर्श ईंटों का है, कच्चा है, मार्बल का है, और पानी की सप्लाई है, बिजली।
1: जैसे बहुत से लोग किरायों पर रह रहे हैं
0: जी,
1: या जैसे बहुत सारे सर्विस पे हैं, उनका रहने वाले मान लो कोई मथुरा का बासिंदा है, दिल्ली की सर्विस कर रहा है, या कोई दिल्ली का रहने वाला है, कहीं लखनऊ में काम कर रहा है, तो वहाँ जो किराए पे रह रहा है तो वो वहाँ रह के कराएगा उसको या यहाँ पे कराएगा?
0: नहीं, बिल्कुल, इसमें ये है कि ये गणना है, तो जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है, जहाँ पे निवास करता है, और निवास का मतलब माना जाता है कि जहाँ पे रात्रि विश्राम करता है, तो जैसे यहाँ पे रहता है लेकिन सर्विस करने किसी दूसरे शहर में जाता है, तो उसका निवास यही माना जाएगा, मथुरा में माना जाएगा,
1: मथुरा में माना जाएगा,
0: तो वो किराए पे भी हो सकता है।
1: हाँ, जहाँ का निवासी है वहाँ उसको जनगणना करानी है उसको।
0: बिल्कुल जी, जनगणना का जो ये प्रथम चरण स्टार्ट हो रहा है, ये 7 मई से स्टार्ट हो चुका है, 7 मई से 21 मई 2026 तक ये स्वयं गणना का ये समय है, 15 दिन का। तो स्वयं गणना में ये पहली बार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान की गणना स्वयं जो है उसकी सूचना अपने मोबाइल में फीड कर सकता है। तो इसका ऐप है, क्योंकि जो हमारे प्रगणक होंगे, एनुमरेटर होंगे, वो अपने मोबाइल से करेंगे, और जो व्यक्ति स्वयं अपने मकान की गणना स्वयं करना चाहता है वो अपने मोबाइल से करेगा
1: जी। तो एक तरह से जो प्रगणक है उनका काम आसान कर जाए।
0: हाँ, ये जो है पेपर विहीन, कागज विहीन, ये एक जनगणना
1: एक्सरसाइज,
0: और ये पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि
1: कागज नहीं लगाना,
0: कागज नहीं लगाना है। जैसे 2000 की जनगणना हुई थी उसमें बहुत ज्यादा कागज, अब सब कुछ ऐप पे है, मोबाइल पे है, इसका ऐप है, आपको अगर करना है तो आप उसमें खोलेंगे। ये मैं बता देता हूँ, ये SE.census.org.gov.in, यानी कि आप गूगल पे जाके अगर SE लिखेंगे, SE का मतलब है सेल्फ एनुमरेशन, तो ये उसके लिए

0: ये है जो जिसको स्वयं अपने मकान की जो है गणना करके उसको फीड करना है अपने ऐप पे। तो गूगल पे आप लिखेंगे SE तो तुरंत उसमें आ जाता है SE.census.org.gov.in, वो अपने आप आ जाएगा। उसको आप टच करेंगे, टच करके उसमें जो है वो ऐप ओपन हो जाता है और उसमें सबसे पहले जो प्रदेश का नाम पूछता है, आप उसमें उत्तर प्रदेश जो है उसमें सब कुछ सूची आती है। आपको टाइप जो है बहुत कम करना है, जैसे अपना नाम आपको टाइप करना, मोबाइल नंबर आपको उसमें टाइप
1: डालना
0: करना
1: है
0: है,
1: जी।
0: अपना ईमेल नंबर डालना है। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको टाइप करनी है,
1: जी
0: लेकिन बाकी जितने प्रश्न हैं उनके ऑप्शन आते हैं।
1: जी
0: जैसे मकान के संबंध में आएगा कि मकान का क्या उपयोग है, जैसे मकान आवासीय भी हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, कोई शैक्षिक संस्थान हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, ऐसी मकान कच्चा है, पक्का है, उसकी छत कैसी है, तो उसमें ऑप्शन आएंगे उस
1: मतलब जो
0: तरह के।
1: 33 प्रश्नों की संख्या है जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें घर
0: जी
1: का टाइप है, घर की स्थिति है,
0: जी
1: परिवार में रहने वाले लोगों के क्या किन किन चीज़ों
0: बिल्कुल
1: का उपयोग कर रहे हैं, उसमें किस तरह
0: बिल्कुल
1: का स्टेटस है, तो इन सब चीज़ों से एक व्यक्ति का रहन-सहन, उसके जीवन स्तर और
0: बिल्कुल
1: जो चीज़ें जिनसे हम आगे की भविष्य की योजनाएं बना रहे
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: वो सब इसके पीछे का उद्देश्य है।
0: इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं ये केवल आंकड़ों के लिए हैं, इनका कहीं वैसा उपयोग नहीं है कि कहीं पे इनका उपयोग किसी भी प्रकार से दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में किया जा सके। इसका जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है, और ना ही इसमें कोई आपको साक्ष्य प्रस्तुत
1: जी,
0: करना
1: मतलब
0: है।
1: आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो व्यक्तिगत रहेगी, आपके
0: व्यक्तिगत
1: लिए रहेगी
0: बिल्कुल,
1: और गोपनीय है,
0: वो गोपनीय
1: उस
0: है,
1: डाटा का को कोई पर्सनल
0: बिल्कुल
1: यूज नहीं कर पाएगा।
0: बिल्कुल कोई उसका पर्सनल यूज नहीं कर पाएगा। कहीं पर्सनल क्या उसका कहीं भी किस तरह से ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा निजी रूप में, उसके केवल सरकारी आंकड़े हैं, सरकार की योजनाएं बनाने के लिए और जो संस्थाएं हैं उनको उसका इस्तेमाल होता है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो सेल्फ एनुमिरेशन जो है वो एक ऐसी है कि उसमें आम जनता को भी इसमें जोड़ा गया है, जो जागरूक लोग हैं और सामान्य रूप से शिक्षित व्यक्ति हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, उसमें ऐप में जाकर अपने मकान की स्थिति फीड कर सकते हैं। उसमें गूगल से जो लोकेशन है वो भी ओपन हो जाती है
1: जी,
0: और उससे वो आपके मकान की लोकेशन ले लेगा,
1: हाँ
0: उस ऐप से फीड कर देगा, उसमें प्रश्न आते जाएंगे
1: हाँ
0: और प्रश्न का जो विवरण है, यानी कि किसी प्रश्न को अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो उसकी डिटेल भी दी गई है और उसके ऑप्शन दिए हैं प्रश्नों के, उनके ऑप्शंस को आपको टच करना है। जैसे कि फर्श पूछा गया है तो फर्श जो है किस प्रकार का है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, कच्चा है, पक्की ईंट का है या कोई टाइल्स का है, तो उसमें ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन को छूना है, टच करना है। और ये 33 प्रश्नों के पश्चात में सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट जो है टच करेंगे तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है सेल्फ एनुमरेशन का, स्वय गणना का, और वो उस सेल्फ एनुमरेशन का जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जब पूरा हो जाए तो उसमें आएगा, वो आपको रखना है अपने पास में, और जब प्रगणक आपके पास में आएगा तो उस नंबर को देना है, तो प्रगणक उस नंबर को अपने मोबाइल में ऐप में फीड करेगा तो वो अपने आप उसके मोबाइल में ओपन हो जाएगा और वो उसका सत्यापन करेगा,
1: जी, मतलब एक तरह से आपने जो काम किया उसको वेरिफिकेशन करके
0: वेरिफिकेशन
1: नेक्स्ट
0: करके।
1: फेज में उसको
0: बिल्कुल
1: आगे बढ़ा दिया जाएगा।
0: इसमें गणना, जनगणना में स्वयं अपनी भागीदारी करके आदमी को अच्छा लग सकता है और इसमें उस एक तरह से उसका योगदान भी है, और क्योंकि बहुत इजी है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसमें 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में
1: और
0: आपका
1: अपनी
0: फीड हो जाएगा।
1: जानकारी आपको चूंकि ठीक से पता है तो आप ठीक से उसमें फीड
0: बिल्कुल
1: कर सकते हैं और
0: बिल्कुल,
1: सिस्टम का और जो हमारी व्यवस्था है
0: और
1: उसके हाथ मजबूत कर
0: ये
1: सकते हैं।
0: ऐप इतना इजी बनाया गया है हैंडल करना, यूज करना, और प्रत्येक प्रश्न के संबंध में डिटेल भी दिया हुआ है, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसका विवरण दिया हुआ है, उसको पढ़ के भी उसमें कर
1: जी
0: सकते। इसमें ऐसा है ये दो स्टेप में है, दो चरणों में है। अभी जो पहला चरण स्टार्ट हुआ है 7 मई से और ये 20 जून तक रहेगा, इसमें केवल मकानों की गणना होगी, मकान सूचीकरण होगा, यानी कि मकान आपका कैसा बना है, कच्चा है, पक्का है, शौचालय कैसा है, इसमें केवल जो मुखिया का नाम दिया जाता है और परिवार के कितने सदस्य हैं उनका वो संख्या लिखी जाती है, बाकी जो मनुष्यों की जो गणना है या आदमियों के बारे में जो डिटेल जो जानकारी है, इसका जो दूसरा चरण होगा जो फरवरी 2027 में होगा। अभी इसका जो नाम है इस प्रथम चरण का वो मकान सूचीकरण एवं मकान गणना, यानी कि

0: इतने मकान हैं और मकान जो है कैसे बने हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं उनके अंदर है।
1: जाति गणना भी हो रही है क्या इसमें?
0: अभी जो ये प्रथम चरण है
1: हाँ,
0: इसमें नहीं है,
1: हाँ,
0: जो 2027 वाली आएगी उसमें होगा। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये है, इसमें ये पूछा जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि आपकी कैटेगरी एससी एसटी या ओबीसी में है
1: जी, जी।
0: तो उसमें तीन ऑप्शन है, यानी कि अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है या फिर अन्य में है, यानी कि तीन ही ऑप्शन है। तो उसमें केवल एससी की एक तरह से गणना है, एसटी की है और बाकी सब अन्य में आ रहा
1: अन्य
0: है।
1: में
0: ये जस्ट इसमें टच करना है तो टच करने से ये आ जाता है कि आप किस चीज में हैं,
1: किस वर्ग में है,
0: किस वर्ग में है।
1: जाति आपको नहीं है, वर्ग एक तरह से
0: बस
1: पूछा जाएगा
0: बस
1: और वो भी चूंकि बहुत सारी चीजों के लिए कैटेगराइजेशन पहले से हो रखा है, बहुत सारी सुविधाओं का, बहुत सारी योजनाओं का एक लाभार्थी वर्ग है तो
0: जी।
1: उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एससी एसटी और ओबीसी इस समय
0: जी।
1: तीन ही, ओबीसी नहीं बल्कि अन्य अदर,
0: जी
1: तो इस पे आपको टिक करना है और ये फिर आगे आपका चला जाएगा इसमें। तो श्रोताओं, आप थे श्री राकेश कुमार त्यागी जी, सहायक आयुक्त नगर निगम मथुरा क्षेत्र के, नोडल अधिकारी भी हैं, इस कार्य के जो जनगणना 2027 का चल रहा है जानकारी दे रहे थे। और आपको समझ में आ गया होगा, मेरी भी समझ में आ गया कि ये स्वामित्व का प्रश्न नहीं है, स्वामित्व की गणना नहीं है, मकान की है और मकान किस तरह का है, उसमें क्या सामान है, आपके जीवन स्तर कैसा है।
0: बस मैं लास्ट में एक अपील करना चाहूँ,
1: जी जी
0: मैं
1: बिल्कुल,
0: एक,
1: स्वागत है।
0: एक मेरा ये निवेदन है सभी से कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके अपने इसको सेल्फ एनुमरेशन के माध्यम से, स्वगणना के माध्यम से इसमें जुड़ें
1: जी
0: और अपना योगदान दें।
1: तो श्रोताओं, ये राष्ट्र का काम है, हमारे एक उत्तरदायित्व का काम है और राष्ट्र के निर्माण में हमारी सहभागिता निभाने का एक अवसर है, तो इस कार्य को उसी रूप में लें और इस कार्य में अगर आप जुड़ पाएंगे तो देश का और समाज का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज हमारे साथ सर आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: युवा साथियों, अभी आपने सुनी यह विशेष वार्ता भारत की जनगणना। विशेषज्ञ थे राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा, और इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
3: 19 मई

0: 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या पहली अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया, उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक, 9:45 पर कार्यक्रम होगा मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। यह हमारा फोन इन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरेंद्र सिंह और नीलमणि शर्मा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अमर सिंह। श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में इस विषय से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565 25 30 135।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा संध्या 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भक्त कथा मणिदास माली। कथाकार होंगे रमेश चंद्र।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8:00।

देश गान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी स्त्री 2।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग जयजयवंती में वायलिन वादन, वादक कलाकार होंगे वी जी जोग, और इसी में आप सुनेंगे मोहित कुमार का गिटार वादन। रात 11:00 होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को वीरेंद्र सिंह और
7: नीलमणि बहन की
6: राम राम।
7: वीरेंद्र भैया देखो कैसी गर्मी पड़ रही है।
6: गर्मी और बहुत पड़ रही है जी, समझ लो कि आग बरस रही है।
7: आग बरस रही है और ऐसे में देखो अपन तो परेशान है रहे हैं, अपने पशु पक्षी हैं और अपनी खेती पे भी जाको प्रभाव पड़ रहे
6: हो। क्यों ना पड़ रहा
7: है ना। तो अगर हम बात अपनी खेती कर रहे हैं, फसलन की कर रहे हैं, तो देखो खरीफ फसलन में खाद और उर्वरकन को विशेष महत्व हो गए है। भारत अपना एक कृषि प्रधान देश, हम सभी जाने हैं।
6: बिल्कुल जरूर
7: है ना। तो हमारे देश में खरीफ है, रबी है, जायद, तीन प्रकार की फसल उगाई जामे और खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जामे है।
6: बिल्कुल
7: है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली ये हमारी

0: जो है प्रमुख खरीफ फसलें हैं,
1: और का
0: है
1: और
0: ना।
1: देखो जैसे कि आज को हमारो जो विषय रखे हो वहां में एक शब्द आवे हो आदान।
0: हाँ
1: तो आदान को मतलब है कि भाई यहाँ में जो बीज खाद उर्वरक पानी कीटनाशक जो भी हैं
0: हाँ
1: ये सम्मिलित हों और हमारो किसान भैया उन्हें सही समय पे करे और खेती को जो है अपनी अच्छी उन्नतिशील बनाए
0: तो
1: रख।
0: बीरेन्द्र भैया देखो, एक जरूरी बात ये भी है, जैसे आपने कही है कि खरीफ फसलों की सबसे पहले अच्छे हाँ प्रमाणित बीज तो होने ही होने हैं, खाद को भी जो है उर्वरकन को भी विशेष महत्व हो गया है जहाँ में,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: ना। खेत में गोबर की सड़ी खाद है, कंपोस्ट खाद डाल देते हैं, माटी की उर्वरा शक्ति बढ़े,
1: और का पैदावार बढ़े।
0: हाँ पैदावार बढ़े,
1: और देखो जी ज्यादा उर्वरकन को प्रयोग हेरो जीव रुक जाए,
0: जीव रुक
1: ज्यादा
0: जाए,
1: खेती दिन रात खराब हो रही है वो
0: हाँ
1: खेती की जो है क्षमता बढ़ जाए ताकत बढ़ जाए
0: गुणवत्ता
1: बाद।
0: बढ़े बाकी, है ना। अब बात आवे कि खरीफ फसल जो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करे हैं, तो जाने खेत में जल प्रबंधन भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी मेड़बंदी करी जाए ऊंची अवैती
0: हाँ
1: और जो दूसरे खेत कुछ मान लो नाली ना नाली बनाई जाए अवई और
0: बिल्कुल
1: वह चौमासो लग जाए फिर काहे वो तो पानी पानी डोले भैया न
0: डोले
1: तो।
0: वो सब फसल बेकार हो जाएगी। तो खरीफ फसल की अच्छी पैदावार के लिए देखो खेत की तैयारी की जैसे हमने बात करी है बहुत ही जरूरी है, और वर्षा शुरू होते पहले खेत की जो है गहरी जुताई भी करनी जरूरी
1: बिल्कुल
0: है ना। फिर दूसरी बात आवे गोबर की खाद की, जैसे हमने बात करी कि माटी में मिला के वहां में डाल देनी चाहिए, और खरीफ मौसम में ज्यादा वर्षा हैवी के कारण खेत में पानी की जो निकालने की व्यवस्था भी बहुत ही
1: वो
0: जरूरी है,
1: जरूरी है नहीं तो पानी भरे हो रही है फसल खराब है
0: खराब
1: जाए।
0: है। यानी कहवे को अर्थ ये है कि हम यही कह सकते हैं कि खरीफ फसल की अच्छी उपज के लिए आदानन को संतुलित उपयोग और खेत की वैज्ञानिक तैयारी बहुत ही जरूरी है।
1: हाँ और तो जय मार तो आज को विषय हमने जय रखे हुए
0: बिल्कुल किसान
1: आज
0: भैया
1: हेलो
0: अनुकूल,
1: किसान वाणी में
0: हाँ
1: खरीफ फसल की आदान व्यवस्था एवं खेत
0: खेत की
1: की
0: तैयारी।
1: तैयारी या विषय पर आज हमारे संग हैं डॉक्टर अमर सिंह
0: बीरेन भैया
1: जो।
0: देखो आप डॉक्टर साहब तो हैं ही विशेषज्ञ हैं ही, पर अपने भैया को फोन नंबर भी बतावा जरूरी है,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कछु भैया अपने ऐसे हैं इनको नंबर ना पता, तो बेचारे बैठे रहे इंतजार में कि आज को कार्यक्रम तो मंगलवार को होवे पर नंबर हम पे ना है। तो
1: हाँ
0: भैया 25 30 135 हमारा फोन नंबर है, और मथुरा तिहार के श्रोता 0565 कोड लगा के
1: बिल्कुल।
0: हमें घर बैठे ही जो भी इनकी समस्या है इनको समाधान है
1: और
0: जाए
1: देखो
0: है।
1: अब तो जी मोबाइल ने सुनाई दे रहा हमारा
0: और का
1: एफएम।
0: खेतन में घूम अपने काम कर रहे हैं किसान भैया,
1: हाँ
0: वहाँ पे मोबाइल भी ने खोलो और
1: बिल्कुल
0: अपना नंबर लगाए और समस्या उनका जो समाधान पायो। तो
1: बिल्कुल
0: भैया हमारी फोन लाइन खुल चुकी है आपके अपने कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमर सिंह, खरीफ फसलन की आदान व्यवस्था और खेत की तैयारी पे आधारित है हमारा आज को ये कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम डॉक्टर साहब राम राम
0: राम
1: साहब
0: राम साहब, राम राम,
1: कार्यक्रम में स्वागत है।
0: बहुत
1: जैसे कि
0: बहुत
1: हमारी
0: धन्यवाद।
1: नीलमणि बहन बताई गई हैं कि भाई
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल
1: हमारी जो भैया हैं फोन को इंतजार करें कि भाई हम यह कार्यक्रम में शामिल हों और अपने प्रश्न कह के अपने समाधान करवाएं। तो सबसे पहले चर्चा यही बात पर रखेंगे कि भाई
0: बिल्कुल
1: खरीफ फसल की अब
0: बिल्कुल
1: कौन सी ऐसी
0: देखो
1: तैयारी जो करवे।
0: ये विशेष रूप से किसान भाइयों, अभी मई जून का महीना चल रहा है और ये करीब देखने को आता है, क्योंकि अभी अगर आप पिछले 15 20 साल से मौसम की जो इस तरह की जो एक तरह से जो चेंज हो रहा है
1: जी
0: उसको अगर आप देखो, तो इन दिनों में ये स्थिति है कि मुश्किल से मुश्किल आपको 5% क्षेत्रफल में भी फसलें नहीं खड़ी दिखाई देंगी, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा है कि
1: बिल्कुल
0: कोई भी उसकी व्यवस्था जो है ना, आप कितना ही पानी लगा लो कुछ भी कर लो लेकिन वातावरण तो नहीं बदल सकता। तो हमारे ब्रज प्रदेश के अंदर जहाँ पे इन दिनों में तमाम फसलें हुआ करती थी गर्मियों में भी, वो लगभग कम हो रही हैं। तो मई जून का जो महीना है जिनके समय समसामयिक के जो कार्यक्रम हैं उनमें विशेष रूप से दो चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे।
1: जी
0: एक तो ये है कि क्या हम इस समय हमारे पूरे साल भर की, क्योंकि कृषि का वर्ष जो हमारा जो शुरू होता है हमारा वो जुलाई से होता है, 1 जुलाई से लेके और 30 जून तक का रहेगा,
1: बिल्कुल
0: तो इसमें हम क्या प्लान करेंगे, उसमें क्या कौन कौन सी फसलें बोएंगे, उस हिसाब से हमको जरूरी है कि सबसे बड़ी जो आदान व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं आप लोग, उसमें सबसे बड़ी आदान व्यवस्था होती है आज के टाइम में उर्वरक और खादों की व्यवस्था,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि वो उर्वरक और खाद तो जान ही मान लो अगर वो नहीं है किसी में पर्याप्त नहीं है संतुलित नहीं है तो आपको पैदावार तो मिलेगी मिलेगी नहीं, उल्टे जो है गलत असर भी जमीन के ऊपर पड़ेगा
1: पड़े
0: वो,
1: वो
0: है ना।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कह रहे
0: एक
1: हैं।
0: तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस तरह से किसान भाई इस समय ये मालूम कर लें अपने खेत की कि क्या क्षमता है मेरे खेत में, और उस क्षमता को जांचने के लिए हम हमारे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं भाई मिट्टी का परीक्षण कराओ,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: बुवाई से पूर्व मिट्टी का परीक्षण होगा तो आपको पता लग जाएगा
1: और
0: कौन कौन
1: का
0: सी फसलें हम लेंगे, उनकी कौन कौन सी जो है ना मात्रा में हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, सूक्ष्म तत्व, तत्व, उनकी हमारे खेत में कितनी कमी है वो उससे पता लग जाएगी, तो हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। एक मेरा

0: जो है सुझाव ये रहेगा किसान भाइयों को इन दिनों में कि इतना तापमान पूरे साल में कभी नहीं होता ऐसा, और जितनी भी रोग और बीमारी और कीड़े हैं उनका मेन मकसद होता है फसल को नुकसान पहुंचाना।
1: बिल्कुल।
0: तो जब अगर ये तापमान इतना ज्यादा है कि इसका पूरा का पूरा फायदा हमारी जमीन में मिलना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: जो भी हमारे जमीन से जनित जमीन से पैदा होने वाली बीमारियां हैं।
1: डॉक्टर साहब बात हम जारी
0: जी,
1: रखेंगे
0: जी,
1: पहले
0: जी।
1: एक हमारे भैया लाइन पे उनको
0: अच्छा
1: बात
0: अच्छा अच्छा
1: हेलो किसान वाणी।
2: हेलो किसान वाणी।
0: हाँ सर।
1: राम राम जी। राम राम सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: नासिर खान बोल रहा हूँ जी, गाँव मलियारा तहसील कामा जिला डी से।
0: अच्छा अच्छा।
1: पूछो क्या प्रश्न है आज आपको?
2: जी सर, मैंने मतलब गोड़ी तो लगवा दी खेत में।
1: अच्छा।
2: लेकिन खाद नहीं डाला, मतलब गोबर का। आप पीछे डाल सकते हैं
0: क्या? देखिए ऐसा है कि गोबर का जो खाद है वो तो देखो खान साहब डाल नहीं सकते। गोबर खाद क्या है, इतना सोल्यूबल नहीं है, मतलब घुलनशील नहीं है पानी में। जो चीज़ घुलनशील नहीं होगी तो पेड़ को नहीं मिलेगी। लेकिन उसका ये थोड़ा सा ये मैं आपको एक राय दे दूं कि उसकी पूर्ति के लिए आप ये जो भी जैविक जो खाद आ रहे हैं ना हमारे पास में, जैविक जो खाद आते हैं जैसे PSB है, राइजोबियम या इस तरह के जो खाद हैं, या आजकल लिक्विड जो है ना, लिक्विड जो आ रहे हैं वो आपके NPK, और वो खड़ी फसलों पे उसका स्प्रे भी हो सकता है उस चीज़ को, या ये भी नहीं हो तो आप और कुछ नहीं हो तो बर्मी जो कंपोस्ट है उसको आप बगल उसके पेड़ के जैसे जो लाइन है ना उसके बीच में डलवा के और गुड़ाई करवा दो और फिर पानी लगवा दो, तो उसमें फिर भी काफ़ी मात्रा में आपका जो पोषक तत्व है वो पौधे को मिल जाएगा, लेकिन बिखेरने से नहीं मिलेगा। अगर आपने ऊपर ही बिखेर दिया तो 2 दिन में सूख जाएगा वो, तो
1: मिट्टी में मिल जाना चाहिए।
0: मिट्टी में मिल जाना चाहिए
2: ना सर, ऐसी है मतलब जैसे खाद डाल दिया फिर उसकी जोत करवा दें।
0: ये जोत करवा दोगे तो आप कह रहे हो ना कि मैंने गोभी लगा दी है।
2: हाँ गोभी तो लगा दी।
0: तो गोभी लगा दी फिर जुताई कैसे करोगे?
1: अब ना है पावेगी।
0: नहीं जुताई कैसे करोगे फिर बताओ, गोभी लगी हुई में कैसे करोगे? या तो आपके पास में इस तरह की कोई लाइन में बोई हुई हो गोभी और बीच में जाके नहीं आप जो है ना कुछ कोई छोटे यंत्र जो आते हैं ना अपने जो हो वगैरह आते हैं वो हैं उनसे आप कर सकते थे। अब तो खुरपी से जो है ना एक बार आप खुरपी निकलवा दो पूरे में, अभी तो छोटी छोटी होगी और ये डलवा दो। ठीक ठीक है जी जी।
2: मतलब मेरा ये कहना चाहता हूँ सारे श्रोताओं को आकाशवाणी मथुरा का मेरा सलाम पहुँचा देना।
0: बहुत बहुत आपके लिए भी और सभी लोगों के लिए जो श्रोता हैं हमारे सुन रहे किसान भाई, उन सब के लिए खान साहब का बहुत बहुत सलाम
1: जी।
0: ठीक है, तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि इस टेम्परेचर का फायदा हमको लेना चाहिए, मुझे प्रकृति ने बदलाव लाए तो, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे बहुत सारे और विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि बीमारियों के तो जो स्पोर्ट्स पड़े हुए हैं वो लगभग खत्म होंगे। लेकिन वो तापमान नीचे कम से कम जो है, जैसे हम 9 इंच की तो मान के चलते हैं, तो 9 भी, और जहां सब्जियां वगैरह ले रहे हो आप वहाँ थोड़ा सा और नीचे जाएंगे हम 60 सेंटीमीटर तक जाते हैं, और अगर आप अगर आने वाले समय में बगीचा लगाने की सोच रहे हैं तो कम से कम 1 मीटर तक आपको गहराई में
1: अच्छा।
0: आपका नमूना लेना चाहिए,
1: और
0: जो विशेष रूप से जो क्षारीय लवणीय पानी वाले जो इलाके हैं उनमें तो ये यहाँ तक सिफारिश की गई है भाई 2 मीटर तक आप लोग उसका नमूना लेंगे अलग अलग चीजों का।
1: तो एक भैया और लाइन
0: जी जी।
1: हेलो किसान वाणी।
0: हेलो। हाँ सर बोलिए।
3: डॉक्टर नमस्कार।
0: नमस्कार सर,
3: मैं मुकेश कुमार अतैनी भक्तपुर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा मुकेश जी बोलिए
3: जी। अब अरहर बोने की परहेज कर दिया, अरहर कौन सी है?
0: हाँ अरहर की ऐसा है मुकेश जी, एक तो थोड़ा सा ये देखो अभी परहे की है ना, अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक तापमान है, या तो आप जैसे अप्रैल में बुवाई हो जाती तो अब तक अरहर जो आपकी कम से कम जो है एक महीने की नहीं तो 15-20 दिन की हो, तीन सप्ताह की हो जाती।
1: बिल्कुल।
0: इन दिनों में आप देख रहे हो कि तापमान का अगले 3 दिन के लिए भी दे रखा है कि भाई विशेष गर्मी रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें क्या है, आपको जो अरहर की जो वैरायटी है विशेष रूप से अच्छी जो किस्में हैं उनको मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि बोगे तो जरूर आप क्यों, लेकिन एक तो
3: हमने पहले भी बोई थी वो
0: मारी गई नहीं, तो वो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ना अरहर में क्या है एक्चुअल में कि जो वैरायटियाँ बहुत अच्छी वैरायटियाँ हमारे पास पहले उपास हुआ करती थी 120 करके जो उत्तर प्रदेश जो है ना UPAS करके होती थी, लेकिन अभी उसका बीज लगभग लगभग खत्म सा हो गया, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जैसे मानक

0: ये एक, अगर आपको मानक मिल जाए ना, वो ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं, और उस आपका जो है ना जो पर्पज है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ही भी है ये जो गर्मी के प्रति।
1: बिल्कुल।
0: ये एक चीज़ आप ध्यान रखना कि बुवाई करने से पहले थोड़ा सा बीज को भिगो लेना, और भिगोने के बाद में ये कोशिश ये रहे हमारी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीधे सीधे जो है, और शाम के टाइम में बुवाई करनी है आपको, ये इन दिनों में ये एक चीज़ ध्यान रखना, शाम के टाइम की बुवाई हो। और एक ICPL जो है ना 87 के नाम से एक वैरायटी है, ICPL है 87 की है, और उसी की ये है ICPL 151। ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, और ये जो है थोड़ी सी अपने एरिया के लिए सिफारिश की गई वैरायटी है। खान
1: जी, तो
0: तो हम जो जिक्र कर रहे थे
1: जी
0: बीरेन जी,
1: जी जी
0: कि जैसे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं बीमारियों के, वो ज़्यादा से ज़्यादा 45, 43, 42 अगर टेम्परेचर आ जाता है सेल्सियस में, तो लगभग वो ख़त्म हो जाते हैं। तो किसान भाइयों को क्या चाहिए कि इस समय देखो, वो अगले आप जब तैयारी करोगे बरसात होने के बाद में, आपकी दो जुताई, तीन जुताई, और ये जो इस महीने की जो जुताई है गर्मी की, वो एक जुताई,
1: बिल्कुल
0: जिसका जो फायदा है वो उनकी तीन जुताइयों में उतना फायदा नहीं होगा जितना इसकी एक में होगा। क्योंकि ये एक जुताई अगर हम मोल्ड बोर्ड प्लाउ थे, जैसे MB प्लाउ कहते हैं जिसको, जो है
1: हाँ, गहरी
0: वो
1: जुताई वाले।
0: गहरी जुताई वाले जो हल होते हैं, हल जिनको कहते हैं,
1: हाँ हाँ
0: है ना, मोल्ड बोर्ड प्लाउ थे या डिस्क प्लाउ थे,
1: हाँ डिस्क
0: जो
1: प्लाउ।
0: बड़ी डिस्क आती है तो लगभग 10-12 इंच तक वो कटा कर देती है,
1: हाँ
0: और मोटे मोटे डेले खेत में अंदर बन जाते हैं। तो इस तरह का अगर हम जुताई करवा दें किसान भाई,
1: बिल्कुल
0: और उसको जो है फिर खुला छोड़ दें, और कम से जब तक बरसात नहीं आए वो खुला ही रहेगा। तो अगर आपने मान लो 12 इंच खोला है जमीन को इस तरह से, तो वो नीचे के 12 इंच तक और उसका टेम्परेचर का असर
1: हाँ
0: जाएगा। तो आप ये
1: बिल्कुल
0: मान के चलो, तो 2 फुट तक आपकी जो जमीन है
1: हाँ,
0: उसमें किसी तरह के कीड़ों
1: कीटाणु
0: का और बीमारियों का जो है जो
1: प्रकोप।
0: प्रकोप आने वाले समय में,
1: जी जी
0: तो आने वाले समय में
1: एक
0: हम
1: भैया ऑनलाइन पे।
0: लो
1: हेलो किसान वाणी,
0: जी।
2: वीरेंद्र भैया जी को और डॉक्टर साहब को मेरी राम राम।
1: राम
2: बहुत
1: राम
0: बहुत
1: साहब।
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम जी,
0: साहब,
1: हमारी
0: राम
1: नियमित
0: साहब।
1: श्रोता हैं। देखो जी, बहुत लगाव थे, बहुत बहुत ध्यान थे, हमारा कार्यक्रम सुने। अच्छा, तो
2: जनाब
1: कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद धन्यवाद सर।
1: हाँ जी
2: महोदय, प्रत्येक मंगलवार को बड़े व्यस्त रहने के, आज कोई नया विषय लेके आएंगे आप।
1: हाँ बिल्कुल, नयो ही विषय है, हर बार नयो ही विषय रखो
0: ये
1: जाए। पूछो, क्या पूछना चाह
2: अच्छा,
1: रहे हो?
2: मैं जानना चाहूं कि अच्छे उत्पादन हेतु अगर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से का बीज को चयन करो जाए, धान
0: जी
2: के को जाए, तो वो कौन सी प्रजाति होगी बढ़िया?
0: हाँ जी, आपने तो एक बहुत लंबा प्रश्न कर दिया
1: बिल्कुल
0: कि पहले तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आप आने वाले समय में खरीफ में कौन सी
1: फसल।
0: फसल लोगे। हैं
2: जी,
0: भाई,
2: धान
0: वैज्ञानिक
2: धान
0: तरीके, अभी मैं आपको बता दूं वैज्ञानिक तरीके में क्या है कि अब व्यवस्था, जाते मैनेजमेंट के हैं या प्रबंधन के हैं या व्यवस्था जो कहते हैं हम लोग, व्यवस्थाएं अगर हमने बुवाई से पहले, यानी हमारा जो शुरुआत है साल की वो होगी जुलाई में, तो उससे पहले हमने जितना प्रबंधन बढ़िया तरीके से कर लिया उतना ही हमको पैदावार अच्छी
1: अच्छी
0: मिलेगी,
1: मिलेगी।
0: और बिना बीमारी के, बिना कीड़ों वाली मिलेगी, और संतुलित पोषक व्यवस्था वाली मिलेगी।
1: बिल्कुल
0: तो एक तो आप जो है ना, मेरी ये सलाह है आपको कि वैरायटी के से पहले, वैरायटी तो तब आएगी जब बुवाई करोगे उस समय खरीदनी है, लेकिन उससे पहले आप दो काम जरूर कराओ। एक तो गहरी जुताई, चाहे वो डिस्क प्लाउ से करा दो या डिस्क हैरो से करा दो, है ना सर, मोल्ड बोर्ड प्लाउ से या डिस्क प्लाउ से करा दो, और एक जो है आपकी मिट्टी का जो नमूना है वो
1: हाँ
0: ले लो।
1: बिल्कुल
0: जैसे आप कह रहे थे कि भाई अच्छी पैदावार लेने के लिए कोई भी फसल आप लोगे ना, तो हर फसल के लिए वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म तत्व, उनकी मात्राएं सब पहले से निश्चित की हुई हैं, और कोई भी आपको, आप हमारा जो सुपरवाइजर तक होता है वो सब बता देगा उस चीज़ को। लेकिन आपके खेत में उनमें से कितनी मात्रा में उर्वरक पहले से उपलब्ध है, तत्व पहले से उपलब्ध है, ये जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप जो है मिट्टी का नमूना लोगे।
1: और फिर
0: तो
1: सुनो, कौन सी फसल की पूछना चाह रहे हो आप? जब डॉक्टर साहब बताएंगे कौन सी फसल की जानना चाह रहे हो, धान की या काय की?
2: हमें धान की फसल करनी है साहब, और जहाँ तक आप कह रहे हो ना
0: जी
2: कि
0: जी जी
2: खेत की
0: जी
2: बढ़िया जुताई, तो हमने जुतवाए के डाल दो, मट्टी भुनी रही है, बाकी जितने कीटाणु संक्रमण वो मर चुके हैं।
0: जी जी
2: अब
0: जो
2: दूसरी
0: जुताई
2: बात
0: का
2: ये
0: हैरो
2: कि
0: ते
2: आप
0: करी, हैरो ते या कल्टीवेटर ते?
2: हैरो कल्टीवेटर दोनों ही चलवाए साहब,
0: कल्टीवेटर की जुताई करके ही छोड़ दो, भले हैरो से तो थोड़ी सी मिट्टी और उल्टी वैसी होती है, छोटे छोटे कणों में हो जाती है, फूट जाती है।

0: पर इन दिनों की जुताई में अगर ढेला सा बन जाए ना, तो
1: हाँ
0: वो उसका तापमान बहुत नीचे तक जाएगा। अच्छा, नमूना लिया मिट्टी का?
1: मिट्टी का नमूना बिल्कुल जांच कराई है सर। हम जो अंधाधुंध उर्वरक डाल सका है उनमें कमी पाई गई है, अब इतना नहीं डाल सकते।
0: नहीं, यही तो आप जैसे किसानों की इसीलिए जरूरी है कि इस माध्यम से हमारे जो है ना प्रसार भारती के माध्यम से ये सब लोगों को पता लगे कि भाई किसानों की वाणी में दमदारी है।
1: बिल्कुल
0: जिन्होंने मिट्टी की जांच कराई उन्होंने ये पाया कि उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे कीमती, जो कई बार तो ये आपने देखी होगी, फास्फोरस जैसे जो DAP को हम कहें, SSP कहें, जो अवेलेबिलिटी ही नहीं रहती, मिलता भी नहीं है
1: हाँ
0: ना, ऐसे उर्वरकों का मतलब। और एक एक किलो अगर आप ध्यान से अगर वो लगाओगे, 1200-1400 का कट्टा आता है, और उसमें भी आपका मुश्किल से मुश्किल जो है ना 23 किलो फास्फोरस होता है, और उस हिसाब से हम देखते हैं तो 50-60 रुपए किलो तक हमारा जो है फास्फोरस पड़ता है साहब।
1: पहुंच जाए, सही कह रहे
0: और
1: हैं।
0: दूसरे उसके साथ जो दूसरी चीजें केमिकल जा रहे हैं जिनका गलत असर पड़ेगा वो नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल
0: तो आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब तो जो है ना, जो फसल आपको चाहिए उसकी वैरायटी के बारे में अच्छी वैरायटियां हम लोग आपको बता सकते हैं। बस यही करना है आपको कि बुवाई से पहले आपके खेत में कितनी मात्रा में पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता उस फसल को है उपलब्ध हैं, उनको घटाते हुए आप जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे।
1: हाँ, तो धान की पूछ रहे हैं कुछ
0: तो
1: दो चार।
0: धान में जैसे धान की तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई आजकल, तो जो है जैसे इसमें IET की जो है 8580 है, कस्तूरी है, बासमती 370 है, और आपकी जो है तरावरी बासमती के नाम से भी आई है, जो इसमें
1: अच्छा
0: खूब पानी के भरा है, कोई दिक्कत नहीं आती
1: जी
0: है,
1: जी
0: तरावरी बासमती है। और हमारे कहीं उधर जो हमारे सेंटर में राजस्थान में केवल हमारे बाड़ उसमें जो बांसवाड़ा में इस तरह की कुछ वैरायटी निकली हैं जिनमें माही है, सुगंधा है, PHB 31 है, पूसा
1: जी
0: सुगंधा है, पूसा की जो वैरायटी हमारी
1: हाँ,
0: कुछ
1: पूसा
0: पूसा
1: भी
0: से
1: है,
0: निकली हैं, पूसा
1: बिल्कुल
0: सुगंधा है, पूसा बासमती है 1500-9, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इम्प्रूव्ड पूसा बासमती भी आ गई है आजकल, तो
1: जी
0: इनको किसान भाई उपयोग में लेके और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगला
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखो
0: तो ये चीज़ें, इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि जिन्होंने देखो जैसे ये कह रहे थे बड़ा अच्छा काम है कि इन्होंने जुताई भी कर दी और मिट्टी की जांच भी करा ली,
1: बिल्कुल
0: लेकिन एक चीज़ और हमारे समझ में आती है, क्योंकि खरीफ में तो फिर जैसा भी हो जाता है, लेकिन रबी के लिए पानी की मात्रा कई बार बहुत ज़्यादा की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपका खेत लेवल है तो आपके पानी की मात्रा कम
1: ते काम चल
0: चाहिएगी, है
1: जाएगा।
0: सर? तो ये समय वो भी है कि आपको अपनी मेड़बंदी जो अभी जिक्र चल रहा था, आप लोग कह रहे
1: बिल्कुल
0: थे
1: जी जी
0: कि अब इस समय है ये कि खेतों की मेड़बंदी करना और लेवलिंग करना, ये दो काम होने से भी हमारी जो है जो आदान व्यवस्था है,
1: उपजे।
0: विशेष रूप
1: हाँ
0: से पानी की जो व्यवस्था है
1: बिल्कुल।
0: उसमें बहुत ज्यादा किफायत होगी।
1: एक भैया लाइन पे,
0: जी,
1: हेलो किसान वाणी, हेलो
0: हाँ साहब,
1: हेलो,
0: शायद कट गया उनका।
1: कट गए।
0: हाँ, तो ये जो लेवलिंग वाले जो
1: हाँ
0: काम है आजकल आपने देखे होंगे कि लेजर लेवलर आ गए हैं, है ना,
1: कंप्यूटर माँ जो बोले
0: कंप्यूटर
1: कहें।
0: माजर जिससे लेवलर, तो उसको उससे ये पाया गया कि जो आपकी एक सिंचाई का जो पानी हम अनलेवल्ड जमीन में लेते थे, जहां पे कहीं कहीं 6 इंची भर रहा है, कहीं 1-2 इंची पर पहुंचा है, कहीं 60 इंची भर गया, 8 इंची भर
1: हाँ
0: गया, तो
1: बिल्कुल
0: वो जो पानी है उस पानी को हम 3 सिंचाइयों तक, एक ही सिंचाई का पानी 3 सिंचाइयों में काम आ सकता है अगर
1: बिल्कुल
0: आपके खेत की लेवलिंग आपने
1: हाँ
0: लेवल्ड कर दिया है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी एक फायदा उससे सबसे बड़ा ये होता है, रबी में हमने देखा है कि एक ही गहराई पे बीज की बुवाई होती है और नमी की मात्रा एक जैसी रहेगी, क्योंकि आपने अगर लेवल एक जो परहेज जो करिए उसमें सब जगह एक जैसी नमी जाएगी, तो
1: बिल्कुल
0: निश्चित रूप से जो जर्मिनेशन है जिसको
1: हाँ
0: अंकुरण कहते हैं,
1: बिल्कुल
0: अंकुरण आपका बिल्कुल एक जैसा अंकुरण
1: बराबर
0: होगा
1: है,
0: तो आगे पूरी फसल जो
1: जरूर
0: है ना
1: डॉक्टर साहब।
0: एक
1: जैसे
0: फसल।
1: देखो हमने
0: जी
1: के गामन में किसान भैया हमारे जो है धान के काज पौध तैयार
0: जी
1: करें,
0: जी
1: क्यारी अगर ऊंची नीची रह गई तो वहीं जहां ऊंची रह गई वहीं जो है घास रह जाए,
0: बिल्कुल बकास
1: और
0: होगी,
1: जहां नीची रह गई वहीं
0: हाँ
1: पौधे जो है कमजोर पड़
0: कमजोर
1: जाए,
0: पड़ जाए, पीली पड़ जाएगी,
1: पीली पड़ जाए।
0: क्योंकि वहां देखो ज्यादा पानी भर गया और
1: हाँ
0: वहां पानी की पूर्ति नहीं हुई, तो
1: बस
0: ये जो अनलेवल जो बात है इसको
1: हाँ,
0: थोड़ा सा
1: तो
0: ध्यान
1: समतल जरूर कर लें हमारे किसान
0: समतल दें,
1: भैया
0: और विशेष रूप से धान में अभी जैसे नर्सरी बना रहे हो
1: जी।
0: किसान भाई, तो मेरा एक सुझाव ये है कि भले आप छोटी सी 100 स्क्वायर मीटर की जो है ना नर्सरी बनाओ, 100 स्क्वायर मीटर में करीब आपका 600 6 किलो के करीब धान का बीज लगेगा,
1: जी
0: और उसके लिए आपको पर लेबल ऐसा

0: कर दो कि
1: हाँ
0: उसके जो जो कल्ले निकले, जो
1: हाँ
0: धान हो गए, वो
1: हाँ
0: एक जैसी हाइट का हो
1: बिल्कुल
0: और एक जैसा होगा, तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार जो है ना आगे चल के अच्छी होगी।
1: एक भैया लाइन पे
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: हेलो किसान वाणी। हेलो
0: हाँ नमस्ते सर।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: जी राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं बसवा जिला दौसा से बोल रहा हूँ, पंचम लाल चतुर्वेदी।
1: अच्छा
0: जी जी
1: अच्छा बोलो
0: चतुर्वेदी
1: जी
0: सर।
1: चतुर्वेदी जी।
0: मैं सर ये पूछना चाहता था कि

0: मैं सर ये पूछना चाहता था कि अपने कोसी में कागजी नींबू के पेड़ लग सकते हैं क्या?
1: कोसी मतलब मथुरा कोसी की बात
0: छोटी
1: कर रहे हैं?
0: छोटी छोटी कोसी।
1: छोटी कोसी में लग सकते हैं क्या?
0: हाँ
1: देखिए, मैंने अभी ये जो जिक्र कर रहा था, मैं इस दो
0: जी
1: चीज़ें आप देख लो, कागजी नींबू के लगाने के लिए, नींबू वैसे तो रेजिस्टेंसी है, पौधे के अंदर आती है, और हमारे जितना भी वेयर का एरिया है, आप बसवा के हो ना,
0: हाँ जी
1: तो आपके आसपास जो है बांदीकुई में, और वहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो दौसा का बहुत बड़ा काम होता है, वहाँ पे वो बर्मी कंपोस्ट वगैरह भी वो लेते हैं। तो एक तो आप ध्यान ये रखना लगा रहे हो कि उसमें आपको बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ही उपयोग में लेनी है ना। दूसरे एक चीज़ एक देखवा लेना कि उसकी जो ज़मीन है, क्योंकि कोसी की, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जो पानी है ना, वो थोड़ा सा नमकीन है, जिसको आप खारा पानी
0: नहीं,
1: कह सकते हो,
0: हमारा हमारा पानी वहां का मीठा है एक्चुअली।
1: मीठा पानी है। तो उसकी जो एनालिसिस आप कराओगे ना, जब जांच
0: हाँ
1: कराओगे पानी की, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें घुलनशील जो लवण है, उनकी मात्रा कितनी कितनी कैसी कैसे है। क्योंकि बागीचा लगाने के से पहले, शर्मा जी मैं आपको बता दूं कि बागीचा कोई एक दिन की चीज़ तो है नहीं, और आपने लगाया और 4 साल बाद 5 साल बाद डिसीजन लो, तो एक तो सराउंडिंग्स में बगीचे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है।
0: बिल्कुल
1: आसपास बगीचे हैं क्या वहाँ पे?
0: नहीं, बगीचा लगा रखा है उन्होंने छोटा। वो
1: अच्छा, उसमें कोई
0: समय क्या है कि
1: टाइमली?
0: जवार नर्सरी थी अपने मथुरा की,
1: हाँ,
0: जवार हाट, तो
1: जी,
0: वहां से मैं पेड़ लाया था। तो वहां पेड़ लाने के बाद वो नींबू जो है अलग किस्म का निकला, जैसे
1: कागजी
0: कटुआ
1: नहीं
0: टाइप,
1: होगा, कागजी नहीं होगा,
0: कागजी नहीं
1: हाँ,
0: है,
1: कठोर टाइप
0: अब
1: का, मोटा छिलके वाला, और वैसा
0: मोटी
1: नहीं।
0: खाल। हाँ
1: हाँ,
0: मोटी।
1: समझ गया मैं आपकी बात। ऐसा है, देखो, नींबू का जो है ना, आपको, आप तो बसवा के रहने वाले हो,
0: हाँ बसों का रहने वाला
1: तो
0: हूँ, लेकिन हमारे
1: आप,
0: रिलेशन में है वहाँ,
1: जी,
0: तो उनके
1: मैं
0: यहाँ लगाना चाहता
1: आपको, आप उनकी ये मदद करो कि हमारी जो नारायण वाली नर्सरी है ना, यहाँ की अपनी मोती डूंगरी के पास ही जो है ना, उद्यान विभाग की, आप
0: जी।
1: अगर अलवर के ही तो हैं आप लोग,
0: हाँ हाँ
1: है ना,
0: हाँ
1: तो वहाँ अलवर में जैसे ही जाओगे, आपकी तरफ से हम लोग जब जाते हैं इधर से, तो पहले ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पड़ता है, हॉर्टिकल्चर का जो है ना, लेफ्ट हैंड पे,
0: हाँ
1: और
0: ये सरस
1: सारस के
0: नर्सरी
1: बिल्कुल
0: दूर है,
1: सामने,
0: हाँ
1: सरस के सामने जो
0: सामने ही
1: है।
0: है, और वहाँ मेरी बात हो भी गई। तो
1: जी,
0: दिक्कत ये है सर, वहाँ जो पौधे मैं चाहता था वो अवेलेबल ही नहीं मिले। एक तो
1: अच्छा,
0: थाई एप्पल बेर के लिए पूछा था, तो
1: हाँ,
0: वो थाई एप्पल बेर नहीं मिला
1: थाई
0: वहाँ।
1: नहीं मिलेगा, सही कह रहे हो आप,
0: हाँ
1: थाई एप्पल बेर वहाँ नहीं अवेलेबल नहीं
0: बस
1: होगा उसके लिए आपको। अच्छा, नींबू के तो आपको जो है ना, हमारे इस पे भी मिल सकते हैं, दौसा वाली जो कृषि
0: नहीं,
1: विज्ञान केंद्र है ना, उस
0: नींबू
1: पे
0: तो
1: भी।
0: सर मैंने यहाँ अपने लगा रखा है पेड़,
1: अच्छा,
0: और
1: उसमें से ले लिए
0: अब
1: होंगे,
0: उसमें से बीज लेके मैंने तैयार किए खुद के पौधे।
1: बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, वो नींबू तो हमेशा होता ही इसी से ही है,
0: हाँ
1: सीड से ही
0: नहीं,
1: तैयार
0: दिक्कत
1: होता
0: क्या
1: है।
0: आ रही है सर कि जैसे अपन नर्सरी से पेड़ ले आते हैं ना, तो
1: जी,
0: वहाँ वो अच्छा बता के दे देते हैं,
1: नहीं
0: उसका
1: नहीं
0: मसाला।
1: वो ये पेड़ों में यही तो है, अभी जो है कितने लोग बाहर से जो है ना, सारा वो आंवला और वो ला रहे हैं, किसी का बहुत अच्छा वैरायटी निकल रही है, बड़ा फल आ रहा है, किसी में बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं, अब वो
2: और
1: पता लगता है 4 साल 5 साल बाद जाके, अब उस
2: इसमें
1: समय
2: से
1: बड़ा।
2: वे बागवानी की जब चर्चा करेंगे
1: हाँ,
2: तो
1: तो
2: और बात
1: उसमें थोड़ा
2: करेंगे।
1: सा आपकी डिटेल जो है ना,
2: हाँ
1: और
2: अभी
1: बागवानी, आप हॉर्टिकल्चर के जो है ना, जो भी जॉइंट डायरेक्टर वगैरह हैं, उनसे थोड़ा सा इस बारे में संपर्क करोगे, तो आपको वो छूट वाला जो है ना, वो मेथड मिल जाएगा।
2: हाँ, तो
1: ठीक
2: विशेष
1: ठीक
2: करके तो हम किसान भाइयों ने
1: जी
2: बताएं
1: जी
2: कि खरीफ की फसल
1: इस
2: के
1: खरीफ की
2: संबंध
1: फसल का जो
2: जो
1: आदान
2: अभी की
1: व्यवस्था
2: तैयारी
1: है,
2: चल
1: उसके
2: रही है,
1: लिए जो है
2: हाँ
1: एक्चुअल
2: फिर
1: में,
2: भी उनको एक प्रश्न हो तो
1: हाँ, नहीं
2: वो
1: नहीं
2: समाधान कर दो। तो डॉक्टर साहब अब देखो ज़्यादा समय ना है, पर अब देखो चलते चलते कुछ बात
1: देखो,
2: अपने किसान भाइयों ने।
1: मैं थोड़ा सा ये
2: हाँ
1: ब्रीफ कर दूं कि भाई किसान भाइयों,
2: जी
1: आने वाली जो समय है, उसमें आपकी फसल की 50% सफलता इस बात पर निर्भर करती है
2: जी
1: कि आपने उसकी जो है गर्मी की जुताई करा दी, आपने मिट्टी का नमूना ले लिया,
2: बिल्कुल,
1: आपने पोषक तत्वों की मात्रा ले ली,
2: और
1: आपने जमीन का लेवलिंग करा
2: समतल कर
1: दिया,
2: दी
1: मेड़बंदी कर दी,
2: बिल्कुल
1: आप ये मानिए कि 50% आपका पूरा साल का प्रोग्राम सफल हो गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके बाद में रही अच्छी वैरायटियों की बात, तो जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर, जैसे वैसे थोड़ा सा मेरा सुझाव ये भी है कि जैसे ब्रज प्रदेश में हमारे में या तो ढेंचा बोए देंगे, या बाजरा बो देंगे, है ना, या ज्वार बोएंगे तो चरी के लिए बोएंगे केवल, है ना, तो इनसे थोड़ा सा हटके, क्योंकि जो जहाँ थोड़ी ऊंची जगह हैं वहाँ पे कुछ कैश क्रॉप भी आप बोना शुरू करो,
2: हाँ जैसे कि
1: जैसे विशेष
2: मूंग
1: रूप
2: है।
1: से मूंग है, तिल है,
2: बिल्कुल
1: आपकी जो है ना ग्वार है विशेष रूप
2: हाँ
1: से,
2: हाँ
1: जिसको कि
2: हाँ
1: बहुत ज्यादा पानी की
2: बिना ही
1: आवश्यकता,
2: पानी है जाए
1: बिना पानी की बहुत कम आवश्यकता होती
2: और
1: है,
2: का
1: और इतने अच्छे भाव मिलते हैं, तो
2: बहुत
1: निश्चित
2: जरूरी।
1: रूप से इस खेती को जो है एग्रीकल्चर

0: वो जो है आप केवल जो है पेट भरा सौदा नहीं, इसको जो है थोड़ा सा कॉमर्शियल हमको अब
1: और
0: करना
1: डॉक्टर साहब
0: पड़ेगा।
1: आपने कितनी अच्छी बात कही, फिर जाते फसल चक्र बन जाए
0: फसल चक्र भी बनेगा, आपकी
1: हैं,
0: मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहेगी और
1: बनेगी
0: आपको एक नया जो है कैश पैसा भी मिलेगा
1: मिलेगा।
0: निश्चित रूप से। जो ट्रेडिशनल फसल हम करते चले आ रहे हैं, पारंपरिक बाजरा, उसके बाद फिर गेहूं, फिर बाजरा, फिर गेहूं, तो इससे क्या है एक लेवल तक ही आपकी उर्वरा शक्ति काम आ रही है मिट्टी की,
1: बिल्कुल
0: नीचे का बिल्कुल भी काम नहीं आता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें,
1: जी।
0: अच्छी वेरायटियों का सिलेक्शन करें। तिल की बहुत अच्छी वेरायटी आ गई है, RT 46 है, प्रताप है, आपकी जो है ना 125 है RT की, जो हमारे जोधपुर से निकली है विशेष रूप से, 127 है, 346 है, 351 है। तो इन वैरायटियों का उपयोग आप इसमें जो है
1: तो डॉक्टर साहब
0: तिल
1: को
0: में
1: बीज जो है कितनी मात्रा में बोया जाए?
0: आप 2.5 किलो बीज जो है पूरे हेक्टर के लिए सफिशियंट
1: अच्छा
0: होता
1: अच्छा
0: है, बिल्कुल जो है
1: ढाई
0: ना ढाई
1: किलो
0: किलो बीज चाहिए इसका। और आपको मूंग का 15 से 20 किलो के बीज चाहिए, और
1: जी।
0: मूंग में भी बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी SL जो है ना 688 जो 68 वाली जो वेरायटी है वो आ चुकी हैं। तो
1: जी
0: मूंग है, गंगा मूंग है, MUM 2 है। तो इस चीज को आप लोग दौड़ा था जा सकते हो इसमें रूप में, क्योंकि इसमें कैश क्रॉप भी है और दलहन भी है, सबसे
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात यह है
1: जी जी
0: जिसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
1: हाँ
0: पिछली खेतियों में यही हो रहा है, पिछले 20-25 साल आप देखोगे कि ऑर्गेनिक जो तत्व है, ऑर्गेनिक जो कार्बनिक तत्व है, उसकी दिनों दिन मात्रा कम होती
1: कम
0: जा
1: होती
0: रही
1: जा रही
0: है,
1: है
0: और
1: बिल्कुल
0: हाई टेम्परेचर पर कार्बनिक तत्व जलता है जमीन
1: जलता
0: में
1: है
0: और उसकी
1: बिल्कुल।
0: पूर्ति कहीं से होती नहीं है। तो फिर कैसे जो है ना फसल आपकी, आप भले ही उर्वरक डालते रहोगे
1: हाँ
0: उससे आपकी पूर्ति नहीं होगी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इन चीजों को थोड़ा किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी
1: तो भाई
0: पैदावार
1: नीलमणि
0: आप ले
1: बहन जी
0: सकते
1: आ
0: हो।
1: गई हैं अब देखो
0: जी
1: जी।
0: बीरेन भैया, देखो लगातार फोन आ रहे हैं और अपने भैया की बहुत समस्या है, पर
1: हाँ
0: क्योंकि हमें समय को भी ध्यान रखना है,
1: जरूर
0: तो
1: जरूर
0: भैया अगले मंगलवार आपसे फिर भेंट होगी और नई जो नए विषय हैं इनके संग। आज का जो विषय होता है खरीफ फसलन की आदान व्यवस्था और खेत की तैयारी पर आधारित हो, विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह।
1: बिल्कुल
0: तो बीरेन भैया समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को दे में विराम,
1: विराम
0: सब बहन भैया को
1: हूँ।
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

हरिहरन और साथियों के स्वर में अभी आपने ये पारंपरिक भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम, या कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में भक्त कथा मणिदास माली, कथाकार हैं रमेश चंद्र।
1: भैया भारत देश हमारो संत महात्मन की पुण्य भूमि रही है, जहाँ में अनेक अनेक संत भई हैं और जाई श्रृंखला में एक भक्त भई हैं, भक्त मणिदास माली। आज उन्हीं को चरित्र हम पढ़ भी जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ धाम में मणिदास नाम को एक माली रहो करतो। वो फूल माला बेच के जो कछु मिल जातो, बाई में ते ही अपने परिवार को पालन पोषण करो करते, और बाई में ते ही साधु ब्राह्मणन की सेवा आदि करो करते, तथा दीन दुखीन को दान करो करते। मणिदास पढ़ो लिखो नाय हतु, पर सच्ची शिक्षा बाने प्राप्त कर लीनी कि दीन दुखी प्राणी पे दया करनी चाहिए और दुष्कर्मन को त्याग के भगवान को भजन करना चाहिए। और सांची पूछे तो यही जीवन को परम उद्देश्य है कि दूसरे इनकी सेवा करें। जे जन्म दूसरे इनकी सेवा में व्यतीत होवे और जेई ते दू पर हित्ते ही आदमी अपनो जन्म सार्थक कर सके। तुलसीदास जी ने जेई बात रामचरितमानस में कही है कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कछु समय के बाद मणिदास की पत्नी और पुत्रन को एक एक करके परलोकवास है गयो। जो मायावद संसारी लोग हैं वे धन संपत्ति और परिवार को नाश हैवे पे दुखी होते हैं और भगवान को कोसते हैं।

मणिदास ने ऐसो नहीं मानो, मणिदास ने तो जाकू भगवान की कृपा ही मानो कि भगवान ने मुँह पे कृपा करी है। उनने सोचो कि प्रभु मेरे कितने दयालु हैं, उनने मोकू सब ओर से मुक्त कर दियो। मेरो मन पत्नी पुत्र को अपनो मान के उनके मोह में फंसो रहे तो श्री हर ने कृपा करके मेरो कल्याण करवे के काजे अपनी वस्तु वापिस ले लेंगे। जामे दुखी का बात, पत्नी उनकी पुत्र उनके सभी उनको है, सवे भूम गोपाल की जो कछु है जा संसार में सब प्रभु को ही है, तो जामे दुख मानवे की कोई बात ना है। जा विचारधारा ते मणिदास सोचवे लगे और बलकम वो तो प्रसन्न हैवे लगे कि मैं मोह रूपी मदराते मतवालो है के अपने सरसे कर्तव्य को भूल तो ही जा रहे हो। अब अपने जीवन को प्रत्येक क्षण भगवान के सुमरण में ही लगाऊंगो जो मानव योनि को सार्थक करेगो। भजन ते मार्थन जीवन सावन सफल है वह, क्योंकि जहाँ मानव जीवन को परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है। मानव जन्म बड़े भाग्य ते मिलतो है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। मनुष्य सांसारिक कार्यों में फंस के इस मानव योनि के महत्व को भूल जातो है। वो जिना जानत कि जे 84 लाख योनि के बाद मिली है और सब योनि तो भोग योनि है, जे योनि कर्म योनि है जा में आज इंसान कर्म कर सके, कर्म करवे को मौको मिलो है और जा मौके को अगर खो दो तो फिर आदमी के पास कछु ना रहे तो सिवाय पछतावे के। कि जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत नंदक मंद मती आतम हन गति जाए। तो भैया जा मानव योनि को मैं सार्थक करूँगो और भगवान को भजन करूँगो। तो मणिदास अब साधु के बीच में अपनो पूरो जीवन बितावे लगो। हाथन में करताल लेके प्रातःकाल ही स्नान आदि करके श्री जगन्नाथ जी के द्वार पे आए के कीर्तन प्रारंभ कर दे तो कबू कबू प्रेम में उन्मत है के नाच भी लग जा तो मंदिर के द्वार खुल जावे पे भीतर जाए के श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुण स्तंभ के पीछे खड़े है के देर तक अपलक दर्शन करत रह तो और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन कर भी लग तो। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की शुद्ध ना रहती, कबू तो नृत्य करतो, कबू खड़ो ही रहतो, कबू गातो, कबू रोवतो, कबू उपस्थिति करवे लग जातो और कबू प्रणाम करतो तो कबू जय जय कार करतो तो कबू भूम पे लेट जातो। यानी के भक्ति में पूरी तरह सराबोर है के भगवान के आगे वो जी लीला करत रहतो। बाकी शरीर में अश्रु स्वेद कंप रोमांच आदि आठों भावन को उदय है जातो। बाई समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में रोज पुराण की कथा हो करती। कथा में पंडित जी कोई अद्भुत प्रसंग बताए रहे। इतने में ही राम कृष्ण गोविंद हरी की उच्च ध्वनि करतो भयो मणिदास वहां आए पहुंचो। वो उन्मत है के नाम ध्वनि करतो भयो नाच भी लगो। कथावाचक को जा प्रकार नाच वो अच्छो नहीं लगो, परंतु मणिदास तो अपनी ही ध्वन में मस्त है। उन्हें पतो नहीं मोते कोई कछु कहा कह रो है, जाको बुरो मानना है कि भलो मानने है, वो मस्त है अपनी धुन में। ताते बाकू पतो ही नहीं चलो कि कोई क्या कहेगो मोते। पंडित जी और श्रोता बाकू मने कर रहे हैं लेकिन वो सुनी ना रही। अंत में पंडित जी के निर्देशानुसार श्रोतन ने बाकी पिटाई कर दी। जब बाकू होश आयो तो बड़ो ही दुख मानो बाने। मणिदास ने सोचो कि जब प्रभु के सामने ही कथा कहवे बारे और सुनवे बारे मोकू मारते तो कथा में मैं क्यों जाऊं, मेरो कहा काम कथा में, मैं कथा में हरगिज ना जाऊंगो, बाई दनाते बाने कथा में जावो बंद कर दियो। मणिदास रूठ के एक मठ में ही पड़ो रहो, मंदिर नहीं गयो, पट बंद है गई। पुरी नरेश ने बाई रात को सपने में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे हैं कि तू कैसो राजा है, तो को पतो ना है कि मेरो परम भक्त मणिदास मंदिर में रोज करताल बजाए के नृत्य करत।

0: बापू तेरे कथावाचक ओ श्रोतन ने पीट्यो है, ओ मंदिर ते बाहर निकाल दियो है, ताते वह भूखो प्यासो मठ में ही पर्यो है, तू स्वयं जा और बापू संतुष्ट कर। आज ते मेरे मंदिर में कोई कथा ना होगी, यहाँ तो कीर्तनी होय करेगो। उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखो कि सहसा कोट कोट सूर्यन के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गयो है, स्वयं श्री जगन्नाथ जी प्रकट है के बाके सिर पे हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा मणिदास तू भूखो क्यों है, देख तू भूखो रहेगो तो मैं भूखो रहूँगो, तो मोए अगर भूखो ना रखना चाहत तो तू भोजन करण कर, उठ तू जल्दी ते भोजन कर। भगवान इतनी कह के अंतर ध्यान है गे, मणिदास ने देखो कि महाप्रसाद को थार सामने ही रखो है, बाको रोष दूर है गयो, बाको क्रोध दूर है गयो, फिर बाने प्रसाद ग्रहण कियो। इधर राजा की नींद टूटी, घोड़ा पे सवार है के पूरी नरेश स्वयं जांच करवे के काजे मंदिर पहुंचो, पतो लगाए के मठ में मणिदास के पास गयो। मणिदास में अभिमान तो रहो ही ना, वह राजी है गयो। राजा ने बाको आदर सत्कार कियो, बली भांत बाकू समझायो और सम्मान दियो, जाकू देख के सभी लोग हतप्रत रह गए कि जे तो वास्तव में बड़ो सच्चो भक्त है। करताल ले के मणिदास स्तुत करतो भयो, श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नाचवे लगो, पहले की तरह नाचवे लगो, गावे लगो, लोटवे लगो और नेत्रंते आंसू बहवे लगे। बाई दिनाते मंदिर में कथा को बाँचवो बंद है गयो और तभी ते कथा बाई मंदिर प्रांगण में स्थित श्री लक्ष्मी मंदिर में हैवी लगी। मणिदास जीवन भर वहाँ कीर्तन करतो रहो, अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के काजें वे उनके दिव्य धाम में पधार गए।
1: अब आपने ये भक्त कथा सुनी, मणिदास माली, कथाकार है रमेश चंद्र, और अब यही के संग ही आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25:30 पर फोन करके हमें दे सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोश कोड फोन नंबर से पहले अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा पिन कोड 281003। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा

0: क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
2: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
1: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
4: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बरात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी का

0: कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी तानिया और उनके परिवारीजन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला और विशाल नोहानकर, जोहरीवाड़ा पैठण से चांद मामू, फुरकान शेख, जाकिया मोरवे, गुरफान शेख और खुशी, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अकिता जोशी और उनके मित्रगणों और परिवारीजन, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा और ईशांत देवांगन, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जिया हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, तालुका नेवासा कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, मोताला से विजय सुरलकर, रतलमारा सुरलकर, आरती गोहरी, ओम कुमार सुरलकर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास बाधवानी, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गभिया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद

पुरी और जयपाल यादव। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा। गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। गांव नोगांव से सीताराम, रेखा, सलोनी, रोशनी और इनके माता पिता। आप हैं बघेरा दुर से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। गांव गोपक की नगरिया से मिट्ठा लाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकेता और इनके माता पिता। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवारीजन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए साजन फिल्म का गीत एस पी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक के स्वर में। गीत समीर का है, संगीत निर्देशक हैं नदीम श्रवण।

साजन फिल्म का गीत अभी आपने एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक के स्वर में सुना। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और उनके परिवारीजन, मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति शीर सागर, संजय कुमार चौहान और उनके मित्रगण और परिवारीजन, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल बाठे, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राया, चेतन मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुर विधान खुराना, आमेताज, मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कृणाल मेहरा, मजनूगढ़ टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, बोरसरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजनगर कांति निकेतन से रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, सलमा असद और अरहम, मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू, आप हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद और तरुण यादव, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी टिंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, घोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुट्टी भगत। आइए सुनते हैं आप सबके लिए मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी को, फिल्म का नाम है हम, शब्दकार अनंत बख्शी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे मोहम्मद अजीज़ और शोभा जोशी, फिल्म थी हम। अब आप सुनेंगे जावेद अली और श्रेया घोषाल को, फिल्म का नाम है खिलाड़ी 786, गीत शब्बीर अहमद का है, संगीत निर्देशक हैं हिमेश रेशमिया। पसंद भेजने वाले श्रोता हैं गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके माता पिता। गांव कुमोदवन से रमेश चंद्रसेन, सुनील, रचना गब्बर और उनके परिवारीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शुभांश, चुन्ना और इनके माता पिता। भाभी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, वैष्णवी, पूनम और युवराज। गडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र।

महाराष्ट्रचे लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्नील, रक्षता, रियांश और उनके परिवारीजन। श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और परमला बंछोर। नाज मंजिल मैसोल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और उनके मित्रगण और परिवारीजन। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक, आयुषी श्रीवास। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानू गोलागोपाल, माहेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश और उनके परिवारीजन। अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा, अक्षय रुद्रा और आमिर का परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सबके लिए खिलाड़ी 786 फिल्म का यह गीत।

ये थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथी। फिल्म थी कुली नंबर वन। गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे आनंद मिलिंद। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कौशल, नीति सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह।

जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, वाणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, हैदराबाद से दोरनाला बालाजी, रेणुका बद्री, हिरणी लोकेश और साई कृपा, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम, आशीष, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, साइमीरा अजमीन गुड़िया, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष। और श्रोता, उसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में बिदाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की ही शब्द रचना, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक स्वर मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम कर्ज़।

ये थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर। फिल्म थी शेषनाग। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है स्त्री 2। पहले सुनिए इस फिल्म में मधुवंती बागची और दिव्या कुमार को।

अभी आपने मधुबंती बागची दिव्या कुमार और साथियों को सुना, और आइए सुनते हैं इसी फिल्म में पवन सिंह, दिव्या कुमार और सिमरन चौधरी को।

ये थे पवन सिंह, दिव्या कुमार और सिमरन चौधरी। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म है स्त्री टू। अरे सुनते हैं इसी फिल्म में विशाल मिश्रा की आवाज में गाया ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए

शिल्पा राव, वरुण जैन और साथियों की आवाजों में अभी आपने एक ही सुना। इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी स्त्री 2। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे।

0: भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार

किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानी मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर

0: भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE.

0: year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
2: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी,

ये थे किशोर कुमार और साथी फिल्म थी शालीमार, संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का था। और अब सुनते हैं कमर जलाल आबादी की रचना, संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी, गायक स्वर मुकेश के, फिल्म का नाम है उपकार।

ये थे मोहम्मद रफ़ी, फिल्म थी सरगम, शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
1: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में और 40% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो
0: जी।
1: और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
0: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
1: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, इन ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पे सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
0: शिशिर जी, भी आपने जेम की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, एमएसएमई संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
1: आपने जो तीन खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TREDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि एमएसएमई जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10 की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी। इसका फायदा क्या है और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है और इन एमएसएमई को वैश्विक मंच पर अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
0: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक

0: 못한
1: नमस्कार. मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे. हमारे

0: प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और एमएसएमई को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त है। और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलके $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
0: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
2: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर ये हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड एसएससी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी। अब 1,60,00,000 है और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में, और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं
0: आता, आसानी होती है।
2: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7-7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
0: तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
2: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है
0: जी।
2: अगर आप एक महिला उद्यमी है तो स्टैंडअप की स्कीम है जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो

0: जारी रहेगी।
1: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़कर के हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है, तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
0: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से यह पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का।
1: जी
0: अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो
1: जी
0: अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं। अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास हैं जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
0: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दें। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है, उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है, दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहाँ पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते हैं तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं, अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं, और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% MSME का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण
1: मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम

0: हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़ करके खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं,
2: जी,
1: लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
2: प्रतियोगिताओं में। ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेंड तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिया में, जैसे मूसाखाड़ बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरुजी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
1: कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ ना कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कोई कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है, एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है
2: जी।
1: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं, तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है
2: जी।
1: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी है उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में।
2: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था

0: उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौर उस अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहाँ हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्सलाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं। कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा, जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक थे उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं, एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है, इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था, और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरई गांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमारो भी चिरई गांव का ही है, ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे, और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया, और अर्जुन पुरस्कार जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ, चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में एक गांव है डबरिया, उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर, पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं मैं करूं, और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, यही बगल पचराव गांव की रहने वाली है, और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र यही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये छठवां स्थान प्राप्त किया, जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी, बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला, और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारे जगह मेडल, और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का, उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी,
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है, लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
0: जी बिल्कुल, तो बढ़ाने की आवश्यकता
1: वो
0: है।
1: जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का खास करके खेलों में वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे गांव जाते थे दौड़ने, बल्ले आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है, पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो खेलो

0: के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम, भारत की 80% जनता गांव में रहती। अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है, और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर के अपेक्षा कि गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे इसको लीजिए, पोल वॉल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी कितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करे। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर, और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, निकल करके आएँ और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नन्हे सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPED MPED डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले अरे वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैसा है वही हमारा प्रोफेशन हो गया है।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
3: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
4: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण

0: द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती है। वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कहते हैं एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
0: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो वो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घोड़ सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से थपकी देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चों से पहले समझ जाए, ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनिंग में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉल्ट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
1: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, चूंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों जय हिंद।
2: जय हिंद।
1: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से है वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय गाजीपुर से।
5: मैं आरती सोनमती से।
6: मैं सेजल सेवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव जो की जनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह बाबतपुर से।
10: मैं रीचा यादव बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल आयर से।
12: प्रशिष्टि मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव जौनपुर से।
14: पलक यादव चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर फिरोज आवाज।
1: तो बच्चों जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का,
17: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहते तो पढ़ लेते, फिर उसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते, वर्कआउट के बाद 8 बजे फिर नाश्ता करते,
18: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
19: 10 बजे तक।
1: तो बच्चों मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
20: मेरा नाम खुशी पटेल है। मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए। फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बीएचयू का, फिर यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्टल में हो गया 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी आप क्या खेलती हैं?
20: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा। प्रशिष्टि आप क्या खेलती हैं?
21: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
21: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ और सर के अंडर हमने बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं, हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं।
1: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए। इन्हें बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
0: मुश्किल नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है और ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजीव जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
0: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम। अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है।

0: रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए सारी ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है?
0: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
1: खेल के दौरान।
0: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है। जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना है अगर सामान चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं, तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा, श्रोताओं, बातचीत के इस सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
0: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
0: मैडम, ये बता देंगे, एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल के बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
0: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
0: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है, ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
0: जी हाँ, बच्चे, मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास, 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
0: मैम, पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेन्यू तैयार है, वही इनको दिया जाता है, उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेन्यू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे, अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके, हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जंपर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत

0: भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
1: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर आईएएस वीसीएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
0: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं। एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जंपर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है।
1: मैम बहुत अच्छा है आगे। क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
0: एक अकेला ही काफी है।
1: और शुरुआत हो गई है, अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे। अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग आर्चरी रेसलिंग एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है। और हर एक गाँव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में। जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलो कूदो हो गए खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलो कूदो हो गए तो लाजवाब। तो खेल का फ्यूचर अच्छा है मैम। अभी ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
0: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से। साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
1: हाँ मैम बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद शक्ति है। तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, और देश का प्रतिनिधित्व भी हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
0: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किया गया और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जयजयवंती में वीजी जोग का वायलिन वादन।

उसके बाद आप सुनेंगे गिटार पर बजाई धुन पहाड़ी। वादक कलाकार होंगे मोहित कुमार। कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं वायलन वादन राग जयजयवंती में। वादक कलाकार हैं वीजी जोग।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने गिटार पर धुन पहाड़ी सुनी। वादक कलाकार थे मोहित कुमार। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की

0: ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी